मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शक संवत 1948 के वैशाख माह की 26वीं तिथि तदनुसार शनिवार दिनांक 16 मई 2026 है। इस समय प्रातः के 5:56 और 48 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब हम हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेंसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में 3रा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात UAE की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, LPG आपूर्ति, AI सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट UG परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में

0: शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपनी मातृभूमि को नमन करते हैं और आपको सुना रहे हैं ये देशगान समूह स्वर में।

अभी आपने सुना देश गान समो स्वर में, और अब लीजिए सुनिए अनूप जलोटा की आवाज में ये भक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। अब लीजिए सुनिए साईं भजन अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

0: भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना ये राम भजन। और इसी के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब यहीं समाप्त होता है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम विचार बिंदु में आज का आलेख। विषय है व्यवहारिकता। संकलन और वाचन स्वर है पौलोमी हरि का।
1: मनुष्य के जीवन में ज्ञान, बुद्धि और अनुभव का जितना महत्व है, उतना ही महत्व व्यवहारिकता का भी है। केवल पुस्तकीय ज्ञान जीवन को सफल नहीं बना सकता, बल्कि उस ज्ञान को सही समय और सही परिस्थिति में उपयोग करने की कला ही व्यवहारिकता कहलाती है। व्यवहारिकता व्यक्ति को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को समझने और उनसे उचित ढंग से निपटने की क्षमता प्रदान करती है। यह गुण मनुष्य को केवल समझदार ही नहीं बल्कि सफल और प्रिय भी बनाता है। व्यावहारिकता का अर्थ है परिस्थिति के अनुसार सोचने, समझने।

0: और कार्य करने की क्षमता। जीवन में अनेक बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां केवल भावनाओं या आदर्शों से काम नहीं चलता, वहां व्यावहारिक सोच की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक भावुक होकर निर्णय लेता है तो वह कई बार स्वयं को कठिनाइयों में डाल सकता है। वहीं एक व्यावहारिक व्यक्ति भावनाओं और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाकर चलता है। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। यहाँ केवल सिद्धांतों की बातें करने वाला व्यक्ति पीछे रह जाता है, जबकि व्यावहारिक सोच रखने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है। नौकरी, व्यापार, शिक्षा, राजनीति या सामाजिक जीवन, हर क्षेत्र में व्यावहारिकता की आवश्यकता होती है। एक विद्यार्थी यदि केवल किताबें पढ़े लेकिन जीवन की वास्तविकताओं को ना समझे तो वह अपने ज्ञान का उचित उपयोग नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार एक व्यापारी को केवल ईमानदारी ही नहीं बल्कि ग्राहकों की आवश्यकता और बाजार की स्थिति को समझने की व्यावहारिक बुद्धि भी होनी चाहिए। व्यावहारिकता का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपने सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों को ही त्याग दे। सच्ची व्यावहारिकता वही है जिसमें आदर्श और वास्तविकता का संतुलन बना रहे। यदि कोई व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए व्यावहारिक बनने का प्रयास करे तो वह चतुर तो कहलाएगा परंतु सम्मानित नहीं होगा। इसलिए व्यावहारिकता के साथ संवेदनशीलता और नैतिकता भी होनी चाहिए। परिवार और समाज में व्यावहारिकता का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझते हुए परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करता है वह सबका प्रिय बन जाता है। कई बार रिश्तों को बचाने के लिए कठोर शब्दों के स्थान पर मधुर व्यवहार की आवश्यकता होती है। एक व्यावहारिक व्यक्ति जानता है कि कब क्या बोलना चाहिए और किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना उचित होगा। यही गुण उसे समाज में सम्मान दिलाता है। व्यावहारिकता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति को समस्याओं से घबराने नहीं देता। व्यावहारिक व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर समाधान खोजने का प्रयास करता है। वह केवल कल्पनाओं में नहीं जीता बल्कि वास्तविकता को भी स्वीकार कर आगे बढ़ता है। ऐसे लोग जीवन में असफलताओं से टूटते नहीं बल्कि उनसे सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। आज के समय में युवा पीढ़ी के लिए व्यावहारिकता अत्यंत आवश्यक है। केवल बड़े सपने देखना पर्याप्त नहीं है बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए योजना, धैर्य और व्यावहारिक दृष्टिकोण भी चाहिए। यदि व्यक्ति को अपने लक्ष्य के साथ साथ परिस्थितियों का सही आकलन हो तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अंततः कहा जा सकता है कि व्यावहारिकता जीवन को संतुलित और सफल बनाने का महत्वपूर्ण गुण है। यह मनुष्य को वास्तविकता से जोड़ती है और उसे हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। आदर्शों के साथ व्यावहारिकता का मेल ही जीवन को सुंदर और सार्थक बनाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में व्यावहारिकता को अपनाना चाहिए ताकि वह स्वयं भी सुखी रहे और समाज के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सके।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु में आज का आलेख। विषय था व्यवहारिकता। संकलन और वाचन स्वर था पौलोमी हरि का। प्रातः के 6:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस का गायन। मुख्य गायन स्वर है राजेंद्र काचरू के और संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

एक तनु नामक छद्म रूपधारी मुनि और सुअर रूप में प्रकट होने वाले राक्षस कालकेतु के मायावी षड्यंत्र के फलस्वरूप राजा प्रताप भानु ने भोजन के लिए 100,000 ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। राजा के पुरोहित रसोइये के रूप में स्वयं कपटी मुनि ने वेदों में वर्णित 6 रस

मांसों से युक्त चार प्रकार का भोजन बनाया, जिसमें नाना पशुओं के अतिरिक्त ब्राह्मणों का मांस पकाया गया था। ज्यों ही राजा भोजन परोसने लगा कि गंभीर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, यह भोजन मत खाओ, इसको खाने से बड़ी हानि होगी, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। ये सुनकर स्तंभित ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हुए और राजा को शाप दिया कि एक वर्ष के भीतर वह परिवार सहित राक्षस हो जाएगा। किंतु तभी फिर से आकाश से सुंदर वाणी घोषित हुई कि इसमें राजा का कोई दोष नहीं था, वह स्वयं तो निर्दोष था। यह सुनकर सभी ब्राह्मण चकित रह गए।

0: गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस का गायन अभी आप सुन रहे थे। मुख्य गायन स्वर थे राजेंद्र काचरुके और संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। प्रातः के 6:45 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती की बात में सामयिक सुझाव। जानकारी का विषय है नाशपाती की खेती।
1: भारत में शीतोष्ण फल में सेब के बाद नाशपाती का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है। बृहद जलवायु व मृदा अनुकूलता के कारण यह शीतोष्ण के अलावा समशीतोष्ण जलवायु में भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। नाशपाती की खेती छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ क्षेत्र जैसे बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा के पहाड़ी क्षेत्रों में भी वर्षों से हो रही है। बलरामपुर के शंकरगढ़ में कुसमी विकासखंड में इसकी खेती की प्रबल संभावनाएँ हैं। बलरामपुर के चांगरो गांव में 25 वर्षों से नाशपाती की खेती हो रही है। कुसमी के नटवरपुर उद्यान नर्सरी में 10 एकड़ में नाशपाती का बगीचा विकसित किया जा

0: चुका है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के कुसमी एवं शंकरगढ़ विकासखंड की जलवायु नाशपाती की समशीतोष्ण प्रजातियों के लिए काफ़ी उपयुक्त है। जिले के डीपाडी, चांगरो, अयारी, जोकापाट, लहसुनपाट, सामरीपाट, कुसमी, जिगनिया आदि क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता युक्त नाशपाती का उत्पादन किया जा सकता है। विगत कई वर्षों से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय व कृषि विज्ञान केंद्र बलरामपुर द्वारा प्रशिक्षण देकर किसानों को समय पर नाशपाती के पौधों को खाद, उर्वरक प्रबंधन एवं अन्य तकनीकी जानकारी देकर नाशपाती की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नाशपाती की प्रमुख प्रजातियों में मध्यम निम्न पहाड़ी व घाटी क्षेत्रों के लिए पत्थरनख, कैफर, चाइना नाशपाती, गोला लिकोंटे प्रजाति अनुशंसित की गई हैं। नाशपाती में साकुर डाली के रूप में सामान्यतः कैथ व सियरा के पौधे उपयोग में लाए जाते हैं। पंजाब में जंगली नाशपाती के जड़ शकर भी साकुर डाली के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। उत्तर भारत के मैदानी भागों में पत्थरनख प्रजाति कलम भी पौधे परिवर्तन साकुर डाली के रूप में प्रयोग में लाए जा रहे हैं। अच्छी फसल वाले नाशपाती वृक्ष के नए वृद्धि वाले प्रदोह से साकुर डाली तैयार किया जाता है। इन प्ररोहों को वृक्ष से अलग करके इसे 100 हार्मोन से उपचारित किया जाता है और 24 घंटे के लिए नम बालू में रखकर इसे उपचारित किया जाता है। इसके पश्चात इन्हें नर्सरी में रोप दिया जाता है। इसके बाद में बडिंग या ग्राफ्टिंग किया जाता है। नाशपाती के पौधों में सामान्यतः अप्रैल सितंबर के मध्य टी बडिंग या दिसंबर जनवरी में जिह्वा ग्राफ्टिंग किया जाता है। नाशपाती की जलवायु अनुकूलता बृहद है। इसकी खेती 26 डिग्री से 45 डिग्री तापमान पर किया जा सकता है। नाशपाती के अधिकांश प्रजातियों को 1200 घंटे के लगभग 7 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान उसकी चिलिंग आवश्यकता पूरी करने के लिए आवश्यक होती है, जबकि कुछ प्रजातियां जैसे पत्थरनख को मात्र 150 घंटे की चिलिंग तापमान की आवश्यकता होती है। यह प्रजाति छत्तीसगढ़ में अपनाने के लिए काफ़ी उत्तम है। इसके अलावा मध्यम चिलिंग आवश्यकता वाली कुछ अन्य किस्में हैं, जिसमें जी कोंटे, कैफर, प्लाइन एप्पल, हुड, गोला प्रजाति भी यहाँ ली जा सकती है। ये प्रजातियाँ ग्रीष्मकाल में उच्च ताप व गर्म हवा को भी सहन कर सकती हैं। नाशपाती का उत्पादन गहरी उचित जल निकासी वाली उपजाऊ मध्यम संरचना वाली तुलनात्मक रूप से अधिक क्ले वाली मृदाओं में अच्छा होता है। यह गीली जमीन के लिए तुलनात्मक रूप से सहनशील है, जबकि यह सूखे की स्थिति को सहन नहीं कर सकती। यह भारी व अधिक जल भराव एवं कम मृदाओं में भी अच्छी तरह हो सकती है। पौधे लगाने के तुरंत बाद पौधों के चारों ओर थाला बना देना चाहिए और पानी देना चाहिए। पौधे के तने के पास मिट्टी ऊंची रखनी चाहिए ताकि तना पानी के संपर्क में ना आ सके। खाद उर्वरक की बात करें तो 10 वर्ष के पौधे में 60 से 100 किलोग्राम गोबर खाद, 700 ग्राम नाइट्रोजन, 350 ग्राम फास्फोरस, 700 ग्राम पोटास प्रति पौधा डालना चाहिए। गोबर खाद, फास्फोरस और पोटास दिसंबर के पहले डालना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा फल लगने के तुरंत बाद देना चाहिए। जिंक और आयरन की कमी होने पर इसकी निर्धारित मात्रा जिंक सल्फेट अप्रैल माह में देना चाहिए। इस समय पौधे लगाने का समय है। किसान भाई इस समय नाशपाती के पौधे लगा सकते हैं ताकि इसका अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात में सामयिक सुझाव। जानकारी का विषय था नाशपाती की खेती। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी कार्यक्रम विवरण में।

0: सुबह 7 बजे लोक गीतों के कार्यक्रम गूंजे जंगल में आप सुनिएगा देवारी लाल और साथियों के स्वर में सरगुजिया लोक गीत, हीरा चंद पटेल और साथियों के स्वर में भोजपुरी लोक गीत और गुलाब सिंह पैकरा और साथियों के स्वर में छत्तीसगढ़ी लोक गीत। सुबह 7:15 पर चंद गज़लों के कार्यक्रम सुगम संगीत में सुनिएगा चंद गज़लें। सुबह 7:30 पर जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा प्रस्तुत किया जाएगा। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 9 बजे कार्यक्रम बातों बातों में का अनुप्रसारण आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से किया जाएगा। सुबह 9:15 पर बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन आप सुनेंगे। सुबह 10 बजे आप सुनिएगा तापमान की सूचना। सुबह 11:05 पर कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण किया जाएगा। दिन में 12 बजे सुनिएगा मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सब रंग। दिन में 12:30 पर कार्यक्रम कव्वालियाँ में आप सुनिएगा कुछ कव्वाली जफर हुसैन खां बदाउनी और साथियों के स्वर में। दिन में 1:05 पर कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण किया जाएगा। दिन में 1:10 पर शहरी महिलाओं के कार्यक्रम घर आंगन में आप सुनेंगे क्रम बातचीत में तकनीक के साथ कौशल ज्ञान है जरूरी और कार्यस्थल पर सतर्कता जरूरी इन विषयों पर सामयिक चर्चा क्रम शक्ति अभिव्यक्ति और क्रम व्यंजन विधियां और कुछ गीत संगीत आप सुनेंगे। दिन में 1:40 पर कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण किया जाएगा। दोपहर 2:30 पर आप सुनिएगा गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा। हमारी तीसरी सभा में शाम 5 बजे हम आपको सुनाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। शाम 5:30 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी में युवा साथी आज सुनेंगे क्रम युवा सोच और क्रम एक ही फिल्म से का प्रसारण किया जाएगा। शाम 6:05 पर कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे। शाम 7:20 पर ग्रामीण श्रोता और किसान भाई सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल। इसमें सामयिक चर्चा में आप सुनेंगे शांति सह अस्तित्व और संवाद से वैश्विक स्थिरता का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय शांतिपूर्ण सह अस्तित्व दिवस राष्ट्रीय डेयरी योजना। इसमें आप सुनेंगे दूध उत्पादन से ग्रामीण समृद्धि इन विषयों पर बातचीत। शाम 7:30 पर क्रम किसान वाड़ी का प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब हम संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात देशस्य अल्पकालावधिकां यात्रां संपूर्य यूरोप देशैः सह भारतस्य सामरिक आर्थिक संबंधान् प्रगाढतरं कर्तुं पञ्चराष्ट्राणां भ्रमणस्य द्वितीये चरणे गतरात्रौ नीदरलैंड देशं प्राप्तवान्। एम्स्टर्डम इति विमानस्थानके डच देशस्य विदेशमन्त्रिणा टॉम बेरेंडसन इत्यनेन श्रीमोदिनः स्वागतं कृतम्। इतः पूर्वं सः आबुधाबीनगरे यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह चर्चां कृतवान् आसीत्। डच देशस्य हेग नगरे भारतीय प्रवासिनः सांस्कृतिक संगीत प्रदर्शनैः प्रधानमन्त्रिणः भव्यतया स्वागतं कृतवन्तः। डच सैनिकाः अपि तम् औपचारिक रूपेण अभिनन्दितवन्तः। भ्रमणावधौ प्रधानमन्त्री मोदी डच देशस्य प्रधानमन्त्रिणा रॉब

अभी आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए गुलाब सिंह पैकरा और साथियों के स्वर में छत्तीसगढ़ी ददरिया गीत।

अभी आपने सुना गुलाब सिंह पैकरा और साथियों के स्वर में छत्तीसगढ़ी ददरिया लोकगीत। इसी के साथ आज का लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:15 होने वाले हैं। अब प्रस्तुत है चंद गज़लों का कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम के शुरुआत में सुनिए रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ में ये गज़ल। इसे हमने लिया है गालिब गज़ल्स एल्बम से। शायर हैं गालिब।

भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ में कतिल राजस्थानी की लिखी यह गज़ल, इसे हमने लिया है शामे गज़ल्स एल्बम से। तेरे आने की खबर से ये दिल मुस्कुराने लगा, सूना पड़ा था जो मौसम फिर से गुनगुनाने लगा। सुना है तुम आने वाले हो, दिल ने फिर से सपने सजाने शुरू कर दिए। तेरे आने की आहट क्या मिली, घर का हर कोना महक उठा। कई दिनों बाद ये खुशी मिली है, तेरे आने की खबर जो मिली है।

0: अभी आप सुन रहे थे भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ में ये गज़ल, और इसी के साथ आज का चंद गज़लों का कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: स्वागत है श्रोताओं आप सभी का आज के सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा में। आज के अंक में आपके साथ मैं हूँ विजय कुमार। जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ प्रतिदिन शाम 5 आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। ये कार्यक्रम FM रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फ़ोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुँच

है ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोठ। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए हमर हाथी हमर गोठ, जहाँ हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये पहला गीत, गीता दत्त और मन्ना डे की आवाज़ में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

सुशासन तिहार 2026 16 मई को अंबिकापुर के बड़ादमाली में 21 ग्राम पंचायतों के लिए जन समस्या निवारण शिविर का होगा आयोजन। सुशासन तिहार 2026 अंतर्गत 16 मई को विकासखंड अंबिकापुर के शिविर स्थल बड़ादमाली पंचायत भवन के पास में शिविर लगेगा। इसमें 21 ग्राम पंचायतों मोतीपुर, नवापारा खुर्द, भालूकछार, नानदमाली, बड़ादमाली, बरगवां, कलगसा, ससकालो, बरगई, नवानगर, खजूरी, पंपापुर, नवापारा कला, रकेली, कुनिया कला, अड़ची, कर्रा, सोनबरसा, टपरकेला, पौड़ी कला, कुम्हरता के ग्रामीण अपने मांगों और शिकायतों संबंधी आवेदन कर सकते हैं। शिविर प्रभारी अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अंबिकापुर एवं सहायक प्रभारी अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अंबिकापुर होंगे। आपको बता दें कि शासन के निर्देशानुसार जन शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने तथा आम जनता को सुगम, पारदर्शी और त्वरित रूप से सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सुशासन तिहार 2026 अंतर्गत 10 जून तक जिले में शिविर आयोजित होंगे। जिला स्तरीय रोजगार मेला 20 मई को अंबिकापुर में होगी आयोजित। उप संचालक रोजगार ने बताया कि जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र अंबिकापुर के द्वारा 20 मई 2026 को प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न क्षेत्र के निजी नियोजकों, विभिन्न तकनीकी और गैर तकनीकी के लगभग 722 पदों पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित रहेंगे। जिला स्तरीय रोजगार मेला के लिए सरगुजा संभाग के समस्त शिक्षित युवाओं को रोजगार मेला में सहभागिता के लिए ऑनलाइन पोर्टल और छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप पर अपना रोजगार पंजीयन, रोजगार मेले हेतु पंजीयन दोनों ही आवश्यक है। इसलिए ऐसे आवेदक जिन्होंने ऑनलाइन पोर्टल ई रोजगार पर अपना पंजीयन नहीं करवाया है, वे विभागीय पोर्टल पर अपना पंजीयन करवा सकते हैं। जिले के इच्छुक ऐसे समस्त आवेदक जो रोजगार मेला में भाग लेना चाहते हैं, अपने साथ शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज के फोटो के साथ 20 मई 2026 को प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र गंगापुर अंबिकापुर में आयोजित जिला स्तरीय रोजगार मेला में उपस्थित होकर रोजगार के अवसर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिला स्तरीय रोजगार मेला पूर्णतः निःशुल्क है। नियुक्ति की शर्तों के लिए नियोजक स्वयं जिम्मेदार होंगे। कार्यालय की भूमिका इस पर पूरी प्रक्रिया में सिर्फ सुविधा प्रदाता के रूप में होगी। और इन सूचनाओं के बाद अब हम आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुनाते हैं। फिल्म का नाम है छलिया। आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, गीतकार हैं कमर जलालाबादी और संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी।

नगर पालिक निगम अंबिकापुर में ऋण मेले का हुआ आयोजन। मोर मकान मोर आस के हितग्राहियों को ऋण प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और बैंकिंग संबंधी दी गई जानकारी। नगर पालिक निगम अंबिकापुर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक मोर मकान मोर आस अंतर्गत सुभाष नगर स्थित आवासों का आवंटन किया गया था। इसके लिए गुरुवार को ऋण मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में योजना अंतर्गत आवंटित 244 हितग्राहियों और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। ऋण मेला आयोजन का मुख्य उद्देश्य हितग्राहियों और बैंकों के मध्य समन्वय स्थापित करना और हितग्राही अंशदान की राशि जमा करने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाना रहा। कार्यक्रम के माध्यम से हितग्राहियों को ऋण प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और बैंकिंग संबंधी जानकारी प्रदान की गई। नगर पालिक निगम के अधिकारियों ने उपस्थित हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने के लिए प्रेरित किया और समय पर आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने की अपील की। बैंकों के प्रतिनिधियों द्वारा हितग्राहियों की समस्याओं का समाधान करते हुए ऋण स्वीकृति और अंशदान जमा प्रक्रिया संबंधी जानकारी दी गई। नगरपालिक निगम अंबिकापुर द्वारा आयोजित इस ऋण मेले से हितग्राहियों को आवास निर्माण प्रक्रिया में आवश्यक वित्तीय सहयोग प्राप्त करने में सुविधा होगी और प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल क्रियान्वयन को गति मिलेगी। कार्यक्रम में सहायक नोडल अधिकारी CLTC सोशल, CLTC सिविल, लिपिक बैंक और हाउसिंग फाइनेंस के प्रतिनिधि और हितग्राही उपस्थित रहे। और अब लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म दो उस्ताद का गीत। गीतकार हैं कमर जलालाबादी और संगीतकार हैं OP नैयर।

श्रोताओं, अब हम आपको बता दें एमसीबी जिला से प्राप्त सूचनाएं। जिला प्रशासन का सख्त निर्देश, सिर्फ वाहनों को ही मिलेगा पेट्रोल डीजल, अवैध खरीद बिक्री पर होगी कड़ी कार्रवाई। जिले में ईंधन की जमाखोरी को रोकने और सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। अपर कलेक्टर के द्वारा जारी इस आदेश के तहत जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल पंप संचालक केवल वाहनों में ही डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति करेंगे। किसी भी स्थिति में खुले बर्तनों, जरिकेन या अवैध रूप से ईंधन देने पर पाबंदी रहेगी। एम्बुलेंस, शासकीय वाहनों और सुरक्षा बलों के वाहनों के लिए ईंधन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इन आवश्यक सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी पंपों को पर्याप्त रिजर्व स्टॉक रखना अनिवार्य होगा। सभी पेट्रोल पंप संचालकों को अपने दैनिक स्टॉक की जानकारी अनिवार्य रूप से जिला कार्यालय की खाद्य शाखा को भेजनी होगी। यदि किसी पंप पर प्रतिदिन के औसत बिक्री के अनुसार 2 दिन से कम का स्टॉक बचता है तो इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन को देनी होगी। नए स्टॉक के लिए लोड बुक किए जाने की जानकारी भी लगातार खाद्य शाखा को देना अनिवार्य किया गया है।

प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में जिले में ईंधन और रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। जिला प्रशासन गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के अवैध कारोबार पर पैनी नज़र रख रहा है। यदि कोई भी संचालक या व्यक्ति ईंधन की कालाबाजारी, अवैध भंडारण या नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और संबंधित नियंत्रण आदेशों के तहत बेहद कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब हम आपको बता दें बलरामपुर जिला से प्राप्त सूचनाएं। सुशासन तिहार में हो रहा त्वरित समाधान, शिविर में कमली का आयुष्मान कार्ड बनने से मिला राहत। सुशासन तिहार के तहत जिले भर में लगाए जा रहे जनसमस्या निवारण शिविरों में आम जन की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया जा रहा है। इन शिविरों में ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं और संबंधित विभागों द्वारा त्वरित कार्रवाई कर समाधान दिया जा रहा है। किसी का राशन कार्ड बन रहा है तो किसी को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और इन सूचनाओं के बाद अब लीजिए सुनिए मुकेश की आवाज़ में फिल्म दिल ही तो है का ये गीत। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत है रोशन का।

स्वास्थ्य शिविर आयोजित। बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण सुधार के लिए लइका घर योजना के अंतर्गत विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। विकासखंड बलरामपुर में चिन्हांकित बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और उपचार के लिए चरणबद्ध तरीके से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित लइका घर अंतर्गत 132 बच्चों का चिन्हांकन किया गया है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक पस्ता एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डूमरखोला में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कुल 77 बच्चों का जांच और उपचार किया गया। शिविर के दौरान 11 गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया गया। साथ ही 4 जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित और 2 टीबी संदिग्ध बच्चों की भी पहचान की गई। अन्य बीमारियों से पीड़ित 3 बच्चों को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। शिविर में उपस्थित बच्चों को आवश्यक दवाइयों का भी वितरण किया गया। आगामी दिवसों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज में शिविर आयोजित किया जाएगा, जहां 48 चिन्हांकित बच्चों के उपचार की व्यवस्था की गई है। और इस सूचना के बाद अब लीजिए सुनिए महेंद्र कपूर की आवाज़ में फिल्म हमराज का गीत। गीतकार हैं साहिर और संगीतकार हैं रवि।

0: और इसी गीत के साथ ही आज का सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा अब यहीं समाप्त होता है।
1: संपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
0: सुबह के 8 बजने वाले हैं, अब हम समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
4: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को

0: मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और एलपीजी भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने एलपीजी पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। ओर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी

0: एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
1: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रूपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महाआवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि 2 लाख बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov

0: IN और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोक सत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है, साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: श्रोताओं नमस्कार। डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, इसे बरकरार रखना बहुत ही आवश्यक होता है। स्वस्थ रहने पर ही हमारा समस्त जीवन अच्छे से हम बिता सकते हैं, और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि हमें अपनी दैनिक क्रियाकलापों पर संयम रखना चाहिए। खाने पीने, अपने सोने जागने जैसे महत्वपूर्ण कामों के लिए हमें सजग रहना चाहिए। श्रोताओं, बीमारी से बचने के भी कई तरीके होते हैं और सरकार द्वारा इस हेतु कई प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लाभ आम जनों को भी मिलते हैं। और श्रोताओं, इसी में से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है राष्ट्रीय आयुष मिशन, जो भारत सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आज हम राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सुनील दास, जो संयुक्त संचालक है आयुष विभाग छत्तीसगढ़ शासन में। तो डॉक्टर सुनील दास जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद, नमस्कार।
0: तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये राष्ट्रीय आयुष मिशन क्या है और इसका क्या उद्देश्य है।
1: राष्ट्रीय आयुष मिशन भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्यो

0: होम्योपैथी, इसके माध्यम से जो है व्यक्तियों को समग्र स्वास्थ्य कैसे उपलब्ध हो सके, यह कार्य राष्ट्रीय आयुष मिशन के माध्यम से किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ समन्वय कर संपूर्ण स्वास्थ्य जो है मनुष्य मात्र को उपलब्ध कराना, यह इसका उद्देश्य है। इसके कई सारे घटक हैं। इसके अंतर्गत जो है आयुष सेवाओं का विकास करना, आयुष शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, आयुष की दवाओं में गुणवत्ता नियंत्रण और इन सब के प्रचार प्रसार का कार्य इस आयुष मिशन के माध्यम से किया जाता है।
1: जी जी, तो डॉक्टर साहब जब हम राष्ट्रीय आयुष मिशन की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चिकित्सा पद्धति आती हैं?
0: इसके अंतर्गत आयुष की पूरी चिकित्सा पद्धतियाँ आती हैं। आयुष मतलब आयुर्वेद, वाई फॉर यूनानी,
1: जी
0: वाई फॉर योग, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एस फॉर सुवारिकबा और होम्योपैथी, ये चिकित्सा पद्धतियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। इन चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से लोगों को संपूर्ण समग्र स्वास्थ्य प्रदान करना ये आयुष मिशन का कार्य है।
1: जी जी, तो डॉक्टर साहब छत्तीसगढ़ में इस मिशन से स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में क्या लाभ लोगों को मिल पा रहा है?
0: इसके माध्यम से लोगों को बहुत सारे लाभ प्राप्त हो रहे हैं। जैसे आयुष मिशन के द्वारा कुछ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स प्रारंभ किए गए हैं
1: जी,
0: लोक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है सुप्रजा।
1: जी
0: सुप्रजा जैसे सर्वविदित है कि जब बच्चा माता के गर्भ में आता है तब से ही उसके संस्कार प्रारंभ होते हैं, और हमारे महर्षियों के द्वारा यह निर्देश दिया गया है, आधुनिक विज्ञान ने भी इस बात को सिद्ध किया हुआ है कि माता के गर्भ में जब कोई भ्रूण पल रहा है उसको अच्छे वातावरण देना, अच्छे संस्कार देना और अच्छी शिक्षा देना, इसके माध्यम से जो है वह जब गर्भ परिपक्व होता है तो गर्भ में जो पल रहा होता है शिशु उसका भी उसी प्रकार से विकास गर्भ से ही प्रारंभ होता है। ये एक सुप्रजा का कार्यक्रम।
1: जी
0: आगे ऑस्टियोआर्थराइटिस मस्कुलोस्केलेटल डिजीज ऐसा एक प्रोग्राम है
1: जी,
0: जिसके अंतर्गत जो है ऐसे मैं कहूँगा कि पूरी आबादी में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होंगे 70-80 से 90% जिनको कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई दर्द ना हुआ हो, कोई पीड़ा ना हुई हो
1: जी।
0: और ख़ास करके हमारे भारतीय परंपरा में तो ये माना जाता है कि 60 के बाद शरीर में वात का जो है प्रकोप होना शुरू होता है, वात हो गया, वात रोग हो गया है, ये सामान्य बोलचाल की भाषा में हम सब जानते सुनते हैं
1: जी जी।
0: तो उसके रोकथाम के लिए, चिकित्सा के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एक आयुर्विद्या का कार्यक्रम है, उस आयुर्विद्या के कार्यक्रम में 4 स्तर उसका बनाया गया है
1: जी,
0: प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, उच्चतर माध्यमिक स्तर
1: जी।
0: तो उस अलग अलग स्तर के लिए अलग अलग विषय वस्तु तैयार किए गए हैं, और जो विद्यार्थी हैं उनके मन में प्रकृति के प्रति लगाव, अपनी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से उनका परिचय, ताकि आगे चल करके वो बच्चे जो है अपने आगामी जीवन के लक्ष्य के रूप में आयुर्वेद को स्वीकारें, आयुर्वेद के पाठ्यक्रम को वह जो है सहज रूप से अपनाएँ और समाज में आकर के समाज को समग्र स्वास्थ्य देने के लिए कार्य करें, ऐसा एक आयुर्विद्या का यह कार्यक्रम संचालित होता है
1: जी जी।
0: NPCDCS है जो जीवन पद्धति जन्य रोगों की रोकथाम और उसकी चिकित्सा
1: जी,
0: यह भी आयुर्वेद के माध्यम से बहुत अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि आज के इस भागदौड़ के जीवन में व्यक्ति शुद्ध आहार से वंचित होता जा रहा है
1: जी।
0: भौतिकता जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, उत्पादकता बढ़ाने के पीछे जो है कृषक खेतों में अनावश्यक रासायनिक खाद, कीटनाशक, इन सब औषधि का छिड़काव कर जब फसल का उत्पादन किया जा रहा है तो उस फसल में भी वह कीटनाशक और उस प्रकार के वो जो सारी चीज़ें उस फसल में भी आ रही हैं, तो व्यक्ति जो है वह स्वाभाविक रूप से कई ऐसे असाध्य रोगों की ओर अग्रसर हो रहा है। उसका रोकथाम का उपाय भी जो है यह NPCDCS कार्यक्रम के माध्यम से करने का ये आयुष मिशन के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है
1: जी जी। तो डॉक्टर साहब ये NPCDCS कार्यक्रम का जो पूर्ण रूप क्या है?
0: नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, डायबिटीज एंड स्ट्रोक, एन फॉर नेशनल, पी फॉर प्रोग्राम, एंड सी फॉर कैंसर, डी फॉर डायबिटीज, एस फॉर स्ट्रोक एंड एसिडिटीज।
1: तो डॉक्टर साहब, हम देखें कि हमारी अनियमित दिनचर्या और जो आजकल मिलावटी खान पान है, इसका काफ़ी असर पड़ता है स्वास्थ्य पर, और इस तरह की बीमारी जो NPCDCS में आपने बताया, इससे वो व्यक्ति ग्रसित हो जाते हैं। तो इसके लिए जो

0: कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो इसके अंतर्गत इन इन बीमारियों के लिए क्या कार्य किए जाते हैं?
1: एक तो इन बीमारियों के लिए शास्त्र में जैसे निर्देश दिया गया है, महर्षि चरक कहते हैं कि तत्र मात्रा सी, व्यक्ति को मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आहार अपि पुनरग्नि वाला पेक्षिणी, अर्थात आपको जैसा भूख हो उसके अनुसार भोजन करना चाहिए। ऋतुचर्या के बारे में बताते हैं। अभी ग्रीष्म का ऋतु है, स्वाभाविक रूप से बाहर की गर्मी जो है बहुत तेज, बाहर का तापमान बहुत तेज बढ़ा हुआ है, तो आपके अंदर का तापमान स्वयं में जो है शांत है। तो आप अगर अभी के समय में गरिष्ठ भोजन लेंगे, गुरु आहार लेंगे, तो निश्चित ही जो है आपका आहार पचेगा नहीं, क्योंकि आपकी अग्नि उतनी प्रबल नहीं है और आपका आहार नहीं पचेगा, तो आपका आहार जो है फिर आम दोष में परिवर्तित हो जाएगा। और आम दोष जो होता है वह सभी रोगों का उत्पत्ति का कारण, ऐसा हमारे आयुर्वेद के मनुष्यों ने और हमारे भारतीय परंपरा में भी, लोक जीवन में भी यह बात जो है स्वीकार्य है, सर्वमान्य है कि इस भोजन जब नहीं पचता है तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो ये आम जनों में ये है। तो एक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये बीमारियां जो है मुख्य रूप से आहार और अभिहार, निद्रा सही तरीके से नहीं होना, मन में अनावश्यक तनाव रखना, इन सब कारणों से ये बीमारियां होती हैं। और इसका उपचार आधुनिक चिकित्सा शास्त्र कहता है कि इसका उपचार है ही नहीं, इसका सिर्फ जो है दवाई खा करके इसको मैनेज किया जा सकता है। किंतु अगर आयुर्वेदी आहार विहार लेकर के, आयुर्वेद वैद्य के परामर्श को मानकर अगर कोई चलता है, तो निश्चित रूप से जो है इस रोग से वह मुक्त हो सकता है।
0: जी जी जी, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल लेंगे और चाहेंगे कि आपकी पसंद का हमें गीत सुने।
1: चलो दिल धार चलो, चांद के पार चलो।
0: तो आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील दास जी, जो संयुक्त संचालक है आयुष विभाग छत्तीसगढ़ शासन में। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम राष्ट्रीय आयुष मिशन की बात करते हैं तो इसमें स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का क्या महत्व होता है?
1: आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, स्वास्थ्य कल्याण केंद्र जो है इसका बहुत महत्व है
0: जी।
1: आयुर्वेद कहता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम् आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की हम पूर्ण रक्षा करेंगे
0: जी,
1: उसके उपरांत अगर वह व्याधिग्रस्त होता है तो उसका उपचार करेंगे
0: जी जी।
1: तो यह जो स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र हैं, जिसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष ऐसा हम कहते हैं, और हमारे प्रदेश में 400 केंद्र संचालित हैं
0: जी।
1: उन केंद्रों से हम प्रतिदिन
0: जी
1: योग की शिक्षा देते हैं, उसके बाद आयुर्वेद रस रसायन का प्रयोग कैसे करना है इसके शिक्षा देते हैं, दिनचर्या ऋतुचर्या आहारचर्या इसके शिक्षा हमारे वैद्य जो वहाँ पर पदस्थ हैं वे देते हैं। और ये प्रयास यह है कि एक ग्रामीण जनता जहाँ पर हमारा औषधालय है वह पूर्ण आरोग्य को प्राप्त हो और वहाँ पर कोई भी रोगग्रस्त ना हो
0: जी,
1: ऐसा आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष का जो है यह प्रयास है और यह उसका उद्देश्य भी है
0: जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, जब हम आयुष मिशन की बात करते हैं तो इसमें कितने घटक हो सकते हैं?
1: आयुष मिशन के घटक, जैसे आयुष मिशन क्या है बताए, उस समय ही मैंने बताया आयुष मिशन में सर्विसेज है प्रमुख रूप से, सेवाएं
0: जी,
1: शिक्षा
0: जी,
1: आयुष सर्विसेज को जो है बढ़ावा देना, आयुष की शिक्षा को गुणवत्ता युक्त करना
0: जी,
1: और इसके और जो भी घटक छूट जाते हैं उसके लिए उसमें जो फ्लेक्सी पुल का भी है उसके अंतर्गत जो है और अन्य घटकों को समाहित करके हम भारत सरकार को प्रेषित करके भारत सरकार से इसके लिए हम सहायता प्राप्त करते हैं
0: जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, जब हम राष्ट्रीय आयुष मिशन की बात करते हैं तो इसमें आयुर्वेद एक बहुत महत्वपूर्ण इसका अंग है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आयुर्वेद का क्या महत्व है? और जब हम देखते हैं बच्चों के संदर्भ में तो इसमें कुछ स्वर्ण प्राशन जैसी जो है महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
1: स्वर्ण प्राशन ऐसा है, स्वर्ण को जो है मेधा बुद्धि और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। उस स्वर्ण का जब हम प्राशन करवाते हैं या उस स्वर्ण को घृत और मधु के साथ में जब हम पुष्य नक्षत्र के समय एक तत्काल जन्म लिए हुए बच्चे से 14 साल तक के बच्चे को जब उसका उपयोग कराते हैं तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि, उसकी कांति, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसमें सब में पर्याप्त वृद्धि होती है और वह एक स्वस्थ बालक जो होता है, स्वस्थ शिशु जो होता है, वो धीरे धीरे धीरे धीरे एक स्वस्थ नागरिक के रूप में परिणत होता है और वह उसके जीवन में रोगग्रस्तता जो है नहीं के बराबर होती है
0: जी।
1: और यह स्वर्ण प्राशन का कार्यक्रम जो है प्रत्येक माह के पुष्य नक्षत्र में हमारे आयुर्वेदिक महाविद्यालय रायपुर एवं आयुर्वेदिक महाविद्यालय बिलासपुर में संचालित है और जिसको जनता का जो है बहुत ही ज़्यादा उनका विश्वास प्राप्त हो चुका है। हजारों लोग उस दिन जो है स्वर्ण प्राशन के लिए अपने बच्चों के साथ हमारे चिकित्सालयों में उपस्थित होते हैं
0: जी जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, जब हम स्वस्थ रहने की बात करते हैं और आयुष मिशन की बात करते हैं तो योग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और हम हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, तो आयुष मिशन के अंतर्गत योग का क्या महत्व है?
1: जैसे कि आयुष मिशन के अंतर्गत हम सभी भारतीय पद्धतियों को शामिल करते हुए एक समग्र स्वास्थ्य की बात करते हैं और इसमें योग तो है ही है, बहुत महत्वपूर्ण अंग घटक है उसका योग जो है। और प्रत्येक आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो हमारे यहाँ 400 संचालित हैं हमारे छत्तीसगढ़ में
0: जी,
1: उन 400 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हमने योग प्रशिक्षक रखा हुआ है और एक योग प्रशिक्षक, प्रत्येक योग प्रशिक्षक को हमने 32 घंटे के योग के सत्र लेने के लिए उनके लिए वह समय सारणी तय करके उन्हें दिया हुआ है। साथ ही योग वेलनेस सेंटर भी हमारे इस प्रदेश के अंदर में संचालित हैं। उस योग वेलनेस सेंटर के माध्यम से प्रत्येक दिन योग का अभ्यास तो करना ही है, साथ ही योग के षटक्रिया को भी लोगों के बीच में

0: हम एक लाभकारी और लोकप्रिय बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जिससे सामान्य सी समस्या बड़ी विकराल रूप न ले और जो समस्या प्रारंभ हुई है तत्काल हमारे आयुर्वेद और योग के माध्यम से उसका समाधान हो सके। इसलिए योग बहुत बड़ा इसमें उसकी योग की बहुत बड़ी भूमिका है।
1: तो डॉक्टर साहब, जब हम रोगों की बात करते हैं तो आयुर्वेद जो है इससे बचने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एक पद्धति मानी जाती है। तो कुछ रोग ऐसे होते हैं जो असाध्य होते हैं, जिनका इलाज किया गया है लेकिन जो है व्यक्ति काफ़ी अंत समय में और गंभीर समय में डॉक्टर के पास पहुंचा है, उस समय रोगी के बचने की या जीवित रहने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो उसके लिए आयुर्वेद में एक पैलिएटिव केयर का जो विकल्प दिया जाता है, तो इसका क्या महत्व होता है?
0: पैलिएटिव केयर, देखिए, प्रशामक उपचार, ऐसे रोगी जो बिस्तर में बंध गए हैं, घर में बंध गए हैं और न उनकी रोग ठीक होने की संभावना है और न तत्काल उनके कहना चाहिए कि मृत्यु की संभावना है, तो उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए, उन्हें मानसिक शांति के लिए यह जो प्रशामक उपचार जिसे पैलिएटिव केयर कह रहे हैं, इसकी भी प्रावधान हमारे आयुष मिशन के अंतर्गत किया गया है
1: जी।
0: इसके तहत हमारे चिकित्सक जो है, अभी हमारे रायपुर और बिलासपुर आयुर्वेद महाविद्यालय जो हैं इसके नोडल हैं और उनके माध्यम से यह कार्यक्रम जमीनी स्तर पर चल रहा है
1: जी,
0: जिसमें हमारे चिकित्सक ऐसे रोगियों का चिन्हांकन करते हैं जो कि बिस्तर पर बंध गए हैं और घर में बंध गए हैं और ऐसे असाध्य रोगों से ग्रसित हो गए हैं जिसका रोग तो ठीक होना ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारे चिकित्सक उनके घर जा कर के उस रोगी के साथ, परिवार के लोगों के साथ संवाद करते हैं, उनके साथ समन्वय करते हैं और परिवार वालों को भी जो है उस रोगी के प्रति उनके मन में सदैव एक ऐसा प्रेम का भाव बना रहे और रोगी को भी यह आश्वस्त करते हैं कि भाई आपका रोग जो है वह ठीक होगा नहीं होगा ये नहीं कह सकते, किंतु आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप कभी न कभी हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। ऐसा उनके साथ संवाद करके रोगी को और परिवार को आश्वस्त करते हैं और उनको एक दूसरे के प्रति, जैसे रोगी के प्रति परिवार के सदस्य यदि नहीं करेंगे तो वो रोगी और परेशानी आएगा उसको, तो दोनों के बीच भी सामंजस्य, हमारे चिकित्सक उनके परिवार के साथ, रोगी के साथ सामंजस्य रख करके इस कार्यक्रम को अच्छे से चला रहे हैं ताकि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसे एक सुखपूर्वक मृत्यु मिले और वह शांत होकर के इस दुनिया से जाए, ऐसा इसका उद्देश्य है।
1: जी जी जी जी, ये बहुत अच्छी जानकारी है डॉक्टर सुनीता जी। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले चाहेंगे आपकी पसंद का एक और गीत हम सुने।
0: तेरे चेहरे में वो जादू है, जाना होता है क्यों तेरी ओर चला, मैं ये गीत सुनना चाहता हूँ।
1: जी जी जी, तो आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत।

0: श्रोता, इस गीत की पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर सुनील दास जी से, जो संयुक्त संचालक है आयुष विभाग छत्तीसगढ़ में। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और हम अब आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद के हिसाब से हम रोगों से ग्रसित ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए।
1: रोगों से ग्रसित ना हो इसके लिए ही आयुर्वेद है
0: जी।
1: तो आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हर व्यक्ति से यह प्रार्थना करता हूँ कि वह हमारे स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, आयुष औषधालय में, और हमारे चिकित्सक से परामर्श लें, स्वस्थ रहने का परामर्श लें। रोगों का उपचार तो हम करते ही हैं, किंतु हमारा आयुर्वेद स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण बोला हुआ है, तो हम आजीवन स्वस्थ कैसे रहें
0: जी।
1: उसके लिए महर्षि चरक हैं, महर्षि सुश्रुत हैं, महर्षि वाग्भट हैं, ये बृहत्त्रयी जो महर्षि हैं, इन्होंने कई सारे हमें निर्देश दिए हुए हैं। एक निर्देश तो जैसे मैंने बताया, आहार को लेकर ही, क्योंकि इस यह आहार ही हमारे शरीर के लिए औषधि है, यह आहार ही हमारे शरीर के लिए विष है। तो इस आहार का हम किस प्रकार भक्षण करें, कौन से ऋतु में कैसा आहार खाएं। जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, इस ग्रीष्म ऋतु में यदि हम बहुत भारी भोजन करेंगे, जो पचने में बहुत विलम्ब हो, तो उससे निश्चित रूप से हमें व्याधि होगा ही होगा
0: जी, जी।
1: जैसे ये सर्वविदित है कि ग्रीष्म ऋतु जाता है, प्रावृत ऋतु जब आता है, हल्की सी बारिश होती है, तो आप देखिएगा कि लोग जो है बहुत से बीमार पड़ते हैं
0: जी।
1: तो क्या वह बीमार पड़ने की घटना एक दिन में होती है?
0: जी जी
1: नहीं
0: जी।
1: वह बीमार पड़ने की घटना जो है उसके पूर्व के 2-3 माह से प्रारंभ होती है
0: जी।
1: जब व्यक्ति अपने मुख के स्वाद के लिए अपनी जिह्वा लोलुपता के कारण से जो उसे नहीं खाना चाहिए या उसके मात्रा से ज्यादा मात्रा पूर्वक खाना चाहिए, मात्रा का उल्लंघन कर जाता है। अब ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में आप मद्यपान करेंगे, ग्रीष्म ऋतु में मद्यपान तो निषेध ही है। ग्रीष्म ऋतु के समय में बहुत कहना चाहिए कि कड़ा व्यायाम, यह भी निषेध है। और ग्रीष्म ऋतु के समय में हल्का तरल भोजन लेना, और कहीं पर भी हम ग्रीष्म में अपने कार्य के कारण से कहीं पर भी हम जब प्रस्थान करते हैं, कहीं जाते हैं, सिर पर गमछा होना चाहिए, और गर्मी से बचाव के सभी उपाय करके हमें जाना चाहिए। पर्याप्त जो है पानी पीते रहना चाहिए, शरीर में पसीना बहुत होता है तो उसे नमक की कमी ना हो, यह ध्यान में रखते हुए इसका भी उपयोग करना चाहिए। प्रातःकाल जो है आयुर्वेद ने ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही उपयोगी माना है
0: जी।

0: सूर्योदय के 1 से 1.5 घंटा पूर्व जागरण, और साथ ही जागरण करने के उपरांत जो है आप एक अच्छे शौच के उपरांत आप अपने शरीर के लिए कुछ समय दें। योग है, प्राणायाम है, व्यायाम है, सूर्य नमस्कार है, ये सबको अपने अपने शरीर के हिसाब से, अपने अपने सुविधाजनक हिसाब से यह सभी प्रकार का कार्य व्यायाम इन्हें करना चाहिए। व्यायाम से जो है शरीर का दृढ़ीकरण कहा गया है आयुर्वेद के अंदर में, व्यायाम से जो है आपके रूप और आपके कांति में निखार आती है ये कहा गया है, और व्यायाम जो होता है वो अग्निवर्धक होता है
1: जी,
0: अर्थात हमारी अग्नि प्रदीप्त होती है और उसके बाद जब हम आहार करते हैं तो वह समग्र रूप से पचता है, और समग्र रूप से पचा हुआ आहार जो है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण करता है
1: जी,
0: जिससे हमारे शरीर में न रक्त की कमी होती है, न हमारे शरीर का अस्थि क्षय होता है, न हमारे शरीर का मांस क्षय होता है, और हम एक बलिष्ठ और सुंदर रूपमान और एक शक्तिशाली और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में इस जीवन का आनंद ले सकते हैं।
1: जी जी जी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आज आपने राष्ट्रीय आयुष मिशन और आयुर्वेद से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं इसके बारे में जो जानकारी दी वो बेहद ही खास और महत्वपूर्ण थी, और हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता डॉक्टर साहब की कही गई बातों का पूरा ध्यान रखें और बीमार ना हो इसके लिए कार्यक्रम में आज जैसा बताया गया है इस प्रकार की खान पान और इस प्रकार की दिनचर्या को अपनाने की कोशिश करें। और डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आप आए और हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
1: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में आप सुन रहे थे राष्ट्रीय आयुष मिशन और बीमारियों से सुरक्षा पर छत्तीसगढ़ आयुष विभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर सुनील दास से रमाशंकर की बातचीत। मीडिया व्यूअर एफएम बैंक पर आकाशवाणी का यह रायपुर केंद्र है। 9 बजे हैं, प्रस्तुत है समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में। इसमें आइए सुनते हैं गर्मी के मौसम में लू से बचाव और सावधानी पर डॉक्टर विमल किशोर राय से ली गई भेंट वार्ता। प्रस्तुत करता है विकल्प रंजन शुक्ला।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं राहुल सिन्हा। श्रोताओं, प्रदेश में मौसम का मिजाज पिछले करीब एक हफ्ते में बदला है। हालांकि भीषण गर्मी का दौर फिर से शुरू होने वाला है। ऐसे मौसम में लापरवाही स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है। तेज धूप, गर्म हवाएं और बढ़ता तापमान लोगों को डिहाइड्रेशन, उल्टी दस्त, चक्कर आना, सरदर्द, बुखार और लू जैसी गंभीर समस्याओं की चपेट में ला सकता है। खासकर बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बाहर काम करने वाले लोग इस मौसम में अधिक जोखिम में रहते हैं। लू लगने के मामलों में हर साल बढ़ोतरी देखी जाती है, लेकिन सही जानकारी और समय पर सावधानी बरतकर इससे बचा जा सकता है। आखिर लू लगने के प्रमुख लक्षण क्या है, किन परिस्थितियों में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, गर्मी के दिनों में खान पान कैसा हो, शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए क्या उपाय अपनाए जाएं और धूप में निकलते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए, इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के एकीकृत रोग निगरानी परियोजना के रायपुर जिलाधिकारी डॉक्टर विमल किशोर राय जी। श्रोताओं, हम डॉक्टर राय से गर्मी से बचाओ, लू के लक्षण और स्वस्थ रहने के जरूरी उपायों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रदेश में गर्मी बढ़ती जा रही है, हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए?
2: देखिए, गर्मी अब सिर्फ मौसम नहीं है बल्कि स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है शरीर को कभी भी डिहाइड्रेट

0: ना होने देना, मतलब शरीर में पानी की कमी ना होने देना। साथ ही सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचना चाहिए। ढीले सूती कपड़े पहनना चाहिए, हल्के रंग के कपड़े पहने। घर के अंदर पंखा, कूलर, एसी का इस्तेमाल करें, लेकिन अचानक ठंड से गर्म में ना जाएं, ये शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पानी, नींबू पानी, छाछ, लस्सी पानी और नारियल पानी का हमेशा सेवन करते रहना है। और पुरानी बीमारियों के जितने भी मरीज हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग और किडनी से संबंधित रोगों के जो मरीज हैं, समय समय पर दवा लेते रहें और अपने डॉक्टर से लगातार संपर्क बनाए रखें।
1: डॉक्टर साहब, ये हीट वेव जिसे लू भी कहते हैं, और सामान्य गर्मी में क्या फ़र्क होता है, किस तरीके से ये आमजन को प्रभावित करती है?
0: देखिए, सामान्य गर्मी में वातावरण का तापमान बढ़ जाता है, लेकिन इसे शरीर सहन कर लेता है। हीट वेव की कंडीशन तब मानी जाती है जब मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा हो जाए, या पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा हो जाए। यह स्थिति कम से कम 2 या 3 दिन तक लगातार बनी रहे तो उस स्थिति को हम हीट वेव की स्थिति कहते हैं। हीट वेव में शरीर का तापमान नियंत्रित करने की क्षमता बहुत तेज़ी से कम हो जाती है, खतरा कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए इन मामलों में हमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है।
1: हीट स्ट्रोक अगर लग जाए, लू जिसे कहते हैं, जो लू लग जाए, तो ये पहले बात तो ये कैसे पता चले कि अभी जो व्यक्ति है उसे लू लग चुकी है, और उससे किस तरीके से बचाव किया जाए?
0: देखिए, लू लगने के शुरुआती जो संकेत होते हैं उसमें व्यक्ति को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी लगती है, उल्टी जैसा लगता है, सिर में दर्द होता है, मांसपेशियों में ऐंठन होती है, पसीना आता है, और साथ ही व्यक्ति को बहुत ज़्यादा थकान लगती है। यह तो प्रारंभिक और मॉडरेट कंडीशन होती है, लेकिन एक मेडिकल इमरजेंसी हीट स्ट्रोक कहते हैं। यह एक खतरनाक स्थिति होती है, इसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चला जाता है, पसीना आना बंद हो जाता है, और जो मरीज बेहोश होने लगता है, कन्फ्यूज़न की स्थिति आ जाती है
1: जी।
0: हो सकता है मरीज को दौरे पड़ जाएं और चिड़चिड़ापन, बेहोशी तक की स्थिति आ सकती है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, हमें इसमें विशेष एहतियात बरतना होता है और तत्काल इलाज की आवश्यकता होती है।
1: क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जो लोग बाहर काम करने के लिए अक्सर जाते हैं, उन्हें किन बातों का ख्याल रखना होता है?
0: देखिए, जो लोग घर से बाहर काम करने के लिए अक्सर जाते हैं, उन्हें लू से बचने के लिए तमाम सावधानियों का ध्यान रखना होगा। सुबह 8 बजे से पहले या शाम 5 बजे के बाद उन्हें अपने कार्य को करने की प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही सफ़ेद हल्के रंग के टोपी, गमछा का प्रयोग करना चाहिए, सिर को ढककर रखना चाहिए, और हर एक घंटे में लगभग 10 से 15 मिनट का उन्हें आराम करना चाहिए, छाया में रहना चाहिए। साथ ही पानी की बोतल और ORS साथ में रखना चाहिए। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात एक और है कि व्यक्ति को अकेले काम नहीं करना चाहिए, साथ में मिलकर काम करना चाहिए, ताकि यदि कोई इमरजेंसी आ जाए तो तत्काल सहयोग मिल सके
1: जी। मौसम चाहे कोई भी हो, डॉक्टर साहब, बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए थोड़ी सी अलग बातों का ख्याल रखना होता है, और किन किन बातों का खास ध्यान गर्मी के मौसम में बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए रखना हो?
0: जी हाँ, आपने सही कहा, बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों को दिन में बाहर खेलने जाने से रोकना चाहिए, वो धूप में न खेलें। साथ ही उन्हें इंडोर गेम खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनके कपड़े सूती कपड़े होने चाहिए, ढीले ढाले हवादार कपड़े पहनाने चाहिए, बार बार पानी पिलाना चाहिए, ऐसा न हो कि केवल प्यास लगने पर ही पानी पीना है, बिना प्यास लगे भी उन्हें समय समय पर पानी देते रहना है, डिहाइड्रेशन के लक्षण देखते रहना है, जैसे कम पेशाब का होना, होंठ सूख जाना, त्वचा का शुष्क होना, इन परिस्थितियों में विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही बुज़ुर्गों के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश होते हैं, बुज़ुर्गों को अकेले नहीं छोड़ना है, उन्हें समय पर दवाइयाँ देना है, कमरे को ठंडा रखना है, रोजाना शरीर का तापमान चेक करना है, यदि किसी भी तरह की समस्या आती है तो तत्काल अपने डॉक्टर से संपर्क करना है
1: जी। पानी के अलावा डिहाइड्रेशन कम करने के लिए और किस तरीके के आहार लेना चाहिए, क्या पेय पदार्थ लेना चाहिए?
0: देखिए, पानी के अतिरिक्त जो पेय पदार्थ लाभदायक होते हैं और जिन्हें प्रेफरेंस देना चाहिए, उसमें नारियल का पानी लिया जा सकता है, छाछ या मठा सबसे अच्छा पेय माना जाता है, नींबू पानी लें, शहद नमक का सेवन किया जा सकता है, ORS दिया जा सकता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक और चाय और कॉफ़ी लेने से बचना चाहिए, ये नुकसानदायक साबित हो सकता है
1: जी। खान पान की बात चल रही है डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने बताया कि किन किन पेय पदार्थों को पीना चाहिए, किन्हें नहीं लेना चाहिए, लेकिन खाने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरीके का खाना गर्मी के मौसम में ध्यान देना चाहिए व्यक्ति को खाने के लिए?
0: जी हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। खाने

0: पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। गर्मी के दिनों में सादा भोजन का सेवन करना चाहिए। सादी भोजन में दाल, चावल, दही और सलाद का सेवन करना स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। सब्जियों में लौकी, तोरई, परवल, पालक, टमाटर का सेवन किया जा सकता है। फल में गर्मी में मिलने वाले फल तरबूज, खरबूज, ककड़ी, संतरा, आम का सेवन किया जा सकता है। खाना आपका हल्का होना चाहिए, कम मसालेदार होना चाहिए और रात का खाना हल्का रहना चाहिए। साथ ही तला भुना मसालेदार स्ट्रीट फूड खाने से बचना चाहिए।
1: क्योंकि खान पान की ही बात चल रही है डॉक्टर साहब, बीते दिनों हमने देखा कि प्रदेश में कुछ स्थानों पर फूड पॉइजनिंग की घटनाएं सामने आई, लोग बीमार हुए। तो पहली बात तो यह कि फूड पॉइजनिंग हुआ है, ये कैसे हम पता करेंगे, कैसे पता चलेगा कि फूड पॉइजनिंग हुआ है? दूसरा ये कि इस तरह के मामले अक्सर गर्मी के मौसम में क्यों बढ़ जाते हैं?
0: देखिए, फूड पॉइजनिंग में गर्मी के दिनों में फूड पॉइजनिंग के केसेस बढ़ जाते हैं, अस्पताल में इनके मरीज ज़्यादा आते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि या तो भोजन दूषित हो या बासी भोजन का सेवन किया गया हो। इन परिस्थितियों में फूड पॉइजनिंग के केसेस आते हैं, क्योंकि गर्मी में बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत जल्दी होता है। यदि खाना बासी है, बाहर रखा हुआ है, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। साथ ही दूध, मांस, मछली, मिठाइयाँ, ये सभी खाद्य पदार्थ बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमेशा ताज़ा भोजन का ही सेवन किया जाए।
1: जी, कौन कौन सी बीमारियाँ जो हैं गर्मी के मौसम में तेज़ी से फैलती हैं?
0: गर्मी के मौसम में बहुत सारी बीमारियाँ बहुत ही तेज़ी से फैलती हैं, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे डायरिया, फूड पॉइजनिंग, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, क्योंकि मच्छरों की भी संख्या बढ़ जाती है। साथ ही गर्मी से संबंधित बीमारियां, हीट रिलेटेड इलनेस, साथ में कई मरीजों को पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होने लगता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की कंडीशन में पानी की कमी हो जाती है और पेशाब कम हो जाता है, तो इसकी वजह से उनके पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और स्किन इन्फेक्शन भी इन दिनों काफ़ी बढ़ जाते हैं, यदि मरीज फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट इस सीजन में ज़्यादा आने लगते हैं।
1: जी, मौसम बहुत लगातार अभी पिछले कुछ दिनों में बदला है, सुबह धूप और शाम को बारिश हो जा रही है, ऐसी परिस्थितियों में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
0: देखिए, सुबह धूप और शाम को बारिश हो रही है, ये बदलता हुआ मौसम में हमें बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इन दिनों सुबह शाम जब पानी गिरने का समय बताया जा रहा है, इन समय हमें अपने साथ छाता, रेनकोट हमेशा रखना चाहिए, ताकि हम भीगने से बचें। और सपोज़ यदि भीग जाते हैं, तो भीगे हुए कपड़े में हमें ज़्यादा देर नहीं रहना है, इससे फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ अचानक ठंडा गर्म होने से भी बचना चाहिए। शाम को मच्छर से बचाव जरूर करना चाहिए।
1: अब प्रशासन की ओर से जो दिशा निर्देश हैं डॉक्टर साहब, उसके बारे में बात करते हैं। प्रशासन किन किन बातों का निर्देश देता है, और साथ ही क्या क्या व्यवस्थाएं जो हैं आम लोगों के लिए, जो गर्मी से बचाव के लिए जो शासन की जिम्मेदारी है वो दी जाती है, क्या क्या सुविधाएं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध होती हैं?
0: शासन स्तर पर गर्मी से बचाव के लिए, हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। हमारे जितने भी स्वास्थ्य संस्थाएँ हैं, सभी संस्थानों में लू से बचाव के सारे संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, और मरीजों को ORS काउंटर बनाकर उन्हें ORS प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ ही यदि मरीज कोई गंभीर स्थिति में पहुंच रहा है, हीट स्ट्रोक का मरीज है, गंभीर है, तो उसे तत्काल जिला अस्पताल भेजकर उसके इलाज की संपूर्ण व्यवस्था की गई है।
1: आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम को बहुत सारे हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, अगर वो बीमार पड़ रहे हैं या उनमें किसी तरीके के लक्षण आ रहे हैं, तो उन्हें त्वरित तौर पर सबसे पहले क्या करना होगा?
0: देखिए, त्वरित तौर पर यदि किसी भी लू लगने के लक्षण लग रहे हैं, तो प्रारंभिक अवस्था में तो घर में ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उन्हें तत्काल किसी छाँव में ठंडे स्थान पर लिटा दिया जाए, उनके बदन को गीले कपड़े से पोछा जाए और ORS का घोल पिलाया जाए। इन परिस्थितियों में सामान्य अवस्था तो कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन यदि मरीज बेहोश होने लगे, उसकी स्थिति ज़्यादा गंभीर होने लगे, तो तत्काल 108 नंबर पर फ़ोन करके जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर मरीज को हमें तत्काल पहुँचाना है, ताकि उसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
1: कहाँ कहाँ मिल सकती है ये स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य केंद्रों में, किन किन स्वास्थ्य केंद्रों में, किन किन जगहों पर किस तरह की व्यवस्थाएं शासन की ओर से की जाती हैं?
0: हमारे प्रदेश के समस्त स्वास्थ्य केंद्रों में जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, हमर क्लिनिक, सभी जगहों पर गर्मी और लू से बचाव के सारे संसाधन उपलब्ध हैं।
1: डॉक्टर साहब, गर्मी के दिनों में क्या सिर्फ पानी पीना पर्याप्त है, और डिहाइड्रेशन के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना होता है?
0: नहीं, केवल प्यास लगने पर ही पानी पीना अपने आप में पर्याप्त नहीं माना

0: जाता है, क्योंकि प्यास लगना डिहाइड्रेशन का एक लेट साइन है, देर से आने वाला संकेत है। डिहाइड्रेशन के संकेत होते हैं गहरे पीले रंग का पेशाब होना, कम पेशाब का आना, सूखे होंठ, मुंह का सूखापन, थकान, चिड़चिड़ापन, सिर में दर्द होना, त्वचा का सूखना। और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए रोजाना कम से कम 3.5 से 4.5 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, काफ़ी जानकारी हमारे श्रोताओं को मिली है। अंत में आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे, क्या ज़रूरी सलाह देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
0: मैं सभी श्रोताओं को यह संदेश देना चाहूँगा कि गर्मी से हमें लड़ना नहीं है, गर्मी के साथ जीना सीखिए। पानी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाइए, शरीर की बातें सुनिए। थकान, चक्कर, कम पेशाब, ये सारी चेतावनियाँ हैं, इन्हें हमें गंभीरता से लेना चाहिए। साथ ही समाज में बुजुर्गों, बच्चों और मजदूर वर्ग का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई लक्षण दिखे तो तत्काल 108 पर कॉल करें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।
1: डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के रायपुर जिला निगरानी अधिकारी डॉक्टर विमल किशोर राय से ली गई भेंटवार्ता। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।

0: बातों बातों में इस कार्यक्रम में आपने सुना गर्मी के मौसम में लू से बचाव और सावधानी पर डॉक्टर विमल किशोर राय से ली गई भेंट वार्ता। प्रस्तुतकर्ता थे विकल्प रंजन शुक्ला। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह। इसके बाद कार्यक्रम बातों बातों में इन दोनों कार्यक्रमों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9:15 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

स्वागत है श्रोताओं आप सभी का आज की बातों और गीतों के कार्यक्रम गुंजन में। आज आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त विजय। स्वीकार कीजिए मेरा अभिवादन, नमस्कार। साथियों, तेजी से बदलते मौसम और बढ़ते प्रदूषण के बीच आज कई बीमारियां हमारे जीवन के लिए चुनौती बनती जा रही हैं। उन्हीं में से एक है डेंगू, जो एक खतरनाक मच्छर जनित बीमारी है। और साथियों, हर वर्ष हजारों लोग इस बीमारी की चपेट में आते हैं। जागरूकता की कमी और साफ सफाई में लापरवाही इसके फैलने का सबसे बड़ा कारण बनती है। इसी उद्देश्य से हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक किया जा सके और उन्हें बचाव के उपायों की जानकारी दी जा सके। साथियों, ये दिवस हमें याद दिलाता है कि थोड़ी सी सावधानी और स्वच्छता अपनाकर हम इस बीमारी से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। डेंगू केवल स्वास्थ्य की समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता की भी परीक्षा है दोस्तों। जब पूरा समाज मिलकर स्वच्छ वातावरण बनाने का संकल्प लेता है, तभी डेंगू जैसी बीमारियों पर नियंत्रण संभव हो पाता है। बातें आगे और करेंगे। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये पहला गीत साधना सरगम की आवाज़ में।

0: अभी आपने सुना साधना सरगम की आवाज़ में फिल्म विश्वात्मा का गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे विजू शाह।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: साथियों, आज है राष्ट्रीय डेंगू दिवस और हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। डेंगू एक वायरल बीमारी है जो एडीज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से फैलती है। साथियों, ये मच्छर सांप और रुके हुए पानी में पनपता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि गंदगी में ही मच्छर पैदा होते हैं, लेकिन डेंगू फैलाने वाला मच्छर साफ पानी में अधिक तेज़ी से बढ़ता है। साथियों, घरों में रखे कूलर, गमले, पुराने टायर, बाल्टी, टूटे बर्तन और छत पर जमा पानी इसके पनपने की सबसे बड़ी जगह बन जाते हैं। ये मच्छर दिन के समय काटता है, इसलिए दिन में भी सावधानी रखना हमें बहुत ज़रूरी होता है। साथियों, डेंगू के लक्षण सामान्य रूप से बुखार जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन समय रहते पहचान न हो तो ये गंभीर रूप ले सकता है। तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर और जोड़ों में दर्द, आँखों के पीछे दर्द, कमजोरी, उल्टी और शरीर पर लाल चकत्ते इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। कई बार प्लेटलेट्स तेज़ी से कम होने लगते हैं, जिससे मरीज की स्थिति गंभीर हो सकती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह लेना और जाँच करवाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। साथियों, और अब लीजिए सुनिए फिल्म मनोकामना का गीत बप्पी लहरी की आवाज़ में। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं बप्पी लहरी।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, अगर दुनिया में प्रकाश न होता तो क्या होता? न सूरज की सुनहरी किरणें होती, न चांदनी रात की शीतलता, न दीपक की लौ और न ही चेहरे पर मुस्कान की चमक। चारों ओर केवल अंधकार होता। इसलिए कहा गया है कि प्रकाश केवल देखने का माध्यम नहीं बल्कि जीवन का आधार है। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो केवल धरती को रोशन नहीं करता बल्कि मन में नई उम्मीदें भी जगाता है। और सुबह की पहली किरण जैसे कहती है, हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। यही संदेश अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी देता है। और साथियों, ये दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की शुरुआत यूनेस्को द्वारा की गई थी। इस दिन का उद्देश्य लोगों को ये बताना है कि प्रकाश और प्रकाश आधारित तकनीकें हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा, संचार, ऊर्जा और पर्यावरण, हर क्षेत्र में प्रकाश की अहम भूमिका है। साथियों, हमारे भारतीय जीवन में भी प्रकाश का बहुत गहरा महत्व है। दीपावली का त्यौहार हो, मंदिरों में आरती हो या किसी शुभ कार्य की शुरुआत, दीप जलाना शुभ माना जाता है क्योंकि प्रकाश को ज्ञान, सत्य और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। बातें आगे और करेंगे, अब लीजिए सुनिए फिल्म जानम समझा करो का ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं अनु मलिक।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: दोस्तों, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सूरज की रोशनी के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं, जिससे पूरी प्रकृति का संतुलन बना रहता है। सुबह की धूप हमारे शरीर को ऊर्जा देती है और विटामिन डी प्रदान करती है। यही कारण है कि बुजुर्ग लोग अक्सर कहते हैं, सुबह की धूप अमृत समान होती है। लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। मोबाइल और कंप्यूटर की कृत्रिम रोशनी ने हमें सूरज की असली रोशनी से दूर कर दिया है। देर रात तक स्क्रीन देखते रहने से आँखों और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है दोस्तों। इसलिए ज़रूरी है कि हम प्राकृतिक प्रकाश के महत्व को समझें और प्रकृति के करीब रहें। दोस्तों, अगर हम इतिहास की ओर देखें तो पाएंगे कि मानव सभ्यता का विकास भी प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ है। पहले लोग आग जलाकर अंधेरा दूर करते थे, फिर दिए आए, लालटेन आई, बिजली आई और अब LED और सोलर लाइट का दौर है। विज्ञान ने प्रकाश को केवल रोशनी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे तकनीक का आधार बना दिया। आज इंटरनेट की दुनिया भी प्रकाश पर आधारित है। फाइबर ऑप्टिक तकनीक में प्रकाश की मदद से सूचनाएं हजारों किलोमीटर दूर तक भेजी जाती हैं। मोबाइल नेटवर्क, TV प्रसारण और मेडिकल उपकरण सब में प्रकाश की भूमिका महत्वपूर्ण है। लेजर तकनीक ने चिकित्सा और उद्योग में क्रांति ला दी है। आँखों के ऑपरेशन से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों तक हर जगह लेजर का उपयोग हो रहा है दोस्तों। और दोस्तों, प्रकाश केवल बाहर का अंधेरा नहीं मिटाता, बल्कि मन का अंधकार भी दूर करता है। जब कोई इंसान निराश होता है और उसे कोई उम्मीद की किरण दिखाई देती है तो उसका जीवन बदल जाता है। एक अच्छा शब्द, एक मुस्कान, एक सहयोग, ये भी जीवन के प्रकाश ही हैं। हमारे समाज में शिक्षक भी प्रकाश की तरह होते हैं। वो ज्ञान का दीप जलाकर बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनाते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों के जीवन में रोशनी भरते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। और बातें आगे और करेंगे, फिलहाल लीजिए सुनिए उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में समीर का लिखा गीत, निखिल विनय के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम है मुस्कान। तो लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
1: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
0: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
1: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
0: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 0777423006000। नंबर एक बार फिर 0777423006000।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
3: बेबी को बेस पसंद है।
4: इंस्टा फरमाइश
1: आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपनी पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।

0: आकाशवाणी के 90 वर्षों के गौरवशाली प्रसारण के जश्न में शामिल होने आइए 23 मई को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट पर। आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब मिलकर करेंगे वॉकथन।
1: तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी।
0: चलिए बनाएं एक मिसाल अपनी प्यारी संबंधों की। शामिल होइए आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ 23 मई 2026 को।
2: चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में।
0: आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब करेंगे वॉक और साथ चलते चलते ढेर सारी बातें भी 23 मई 2026 को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट से शुरू करेंगे हम सब मिलकर वॉकथन। हमें रहेगा आपका इंतजार, आइएगा जरूर।
3: चलते चलते चलते चलते
4: दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। और इन संदेशों से पहले हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के बारे में। साथियों, आज पूरी दुनिया ऊर्जा संकट का सामना कर रही है। बिजली की बढ़ती खपत पर्यावरण पर असर डाल रही है, ऐसे में ऊर्जा संरक्षण बहुत ज़रूरी हो गया है। हमें अनावश्यक बिजली खर्च से बचना चाहिए। कमरे से बाहर निकलते समय लाइट और पंखे बंद करना छोटी बात लग सकती है, लेकिन ये छोटी आदतें बड़ी बदलाव ला सकती है। दोस्तों, LED बल्ब और सौर ऊर्जा आज समय की ज़रूरत बन चुके हैं।

ये बिजली बचाने के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रख, और गांव में सोलर लाइट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिससे दूर दराज इलाकों में भी उजाला पहुंच रहा है। प्रकाश का संबंध उम्मीद से भी है। जब किसी गरीब के घर पहली बार बिजली पहुंचती है तो केवल बल्ब नहीं जलता बल्कि सपने भी रोशन होते हैं। बच्चे रात में पढ़ पाते हैं, महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं और परिवार के जीवन में नई खुशियां आती हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हमें ये संदेश देता है कि जैसे एक छोटा सा दीपक अंधेरे को मिटा सकता है, वैसे ही एक सकारात्मक सोच समाज में बदलाव ला सकती है। अगर हर व्यक्ति अपने भीतर प्रेम, करुणा और ज्ञान का दीप जलाए तो दुनिया और भी सुंदर बन सकती है। दोस्तों, तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस पर हम ये संकल्प लें कि हम अपने जीवन में सकारात्मकता का दीप जलाएंगे, ऊर्जा की बचत करेंगे, प्रकृति का सम्मान करेंगे और दूसरों के जीवन में भी खुशियों की रोशनी फैलाएंगे। अंधेरा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक उसे चुनौती दे सकता है। इसलिए हमेशा उम्मीद का दीप जलाए रखिए और इसी सुंदर संदेश और मधुर गीतों के साथ आज का गुंजन कार्यक्रम से मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।

0: प्रादेशिक समाचार,
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को बस्तर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। छत्तीसगढ़ के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 18 से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाएगा और छत्तीसगढ़ में द्वीपती योजना के तहत गांवों में सोलर दीदी तैयार की जाएंगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 19 मई को बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री श्री साय ने कल मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बस्तर में इस राष्ट्रीय स्तर की बैठक का आयोजन प्रदेश के लिए गौरव की बात है। छत्तीसगढ़ के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य शासन 18 से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाएगा। ये अभियान प्रदेश के 8000 से अधिक गांवों में संचालित होगा। आदिम जाति विकास विभाग के इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़े गांवों को शामिल किया गया है। रायपुर जिले को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पोषण और पेयजल योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को ऊर्जा क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2026 से 2031 तक की अवधि के लिए द्वीपती योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत गांवों में सोलर दीदी तैयार की जाएंगी, जिन्हें सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना, संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये महिलाएं सोलर मिल, कोल्ड स्टोरेज और सिंचाई जैसी ऊर्जा सुविधाओं का संचालन करेंगी। योजना में क्लस्टर लेवल फेडरेशन को महिला ऊर्जा सहकारी समितियों के रूप में विकसित किया जाएगा। महासमुंद और बस्तर के कुछ समूह पहले ही विक्रेता के रूप में पंजीकृत हो चुके हैं। बस्तर संभाग में नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो जाने के बाद अब विभिन्न जिलों में माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए डंप को बरामद करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसके लिए सुरक्षा बलों द्वारा सतत रूप से अभियान चलाया जा रहा है। कांकेर जिले में इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए डंप से 50 से अधिक हथियार तथा गोला बारूद बरामद किया है। इसमें SLR 303 राइफल, सिंगल शॉट देसी गन, BGL लॉन्चर, भरमार बंदूक, देशी कट्टा और कुकर बम सहित विभिन्न हथियार शामिल हैं। जगदलपुर में कल डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए क्षमता विकास कार्यशाला आयोजित की। बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में बस्तर संभाग के लगभग 180 ग्रामीण डाक सेवकों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए महानिदेशक डाक सेवाएं जितेंद्र गुप्ता ने कहा कि ग्रामीण डाक सेवक दूरस्थ क्षेत्रों में डाक, बैंकिंग, बीमा और सामाजिक सुरक्षा सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा

रहे हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। सर्वोच्च न्यायालय ने ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कारपूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने कल वर्चुअल माध्यम से मनेन्द्रगढ़ में कुटुंब न्यायालय के नए भवन और जनकपुर में न्यायिक कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कल कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के बैगा बहुल ग्राम सिंघारी में विशेष पिछड़ी जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 50 सीटर छात्रावास भवन का भूमि पूजन किया। रायपुर ग्रामीण पुलिस ने विधानसभा थाना क्षेत्र में 620 लीटर डीजल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। और आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को बस्तर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। छत्तीसगढ़ के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 18 से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाएगा और छत्तीसगढ़ में द्वीप्ति योजना के तहत गांवों में सोलर दीदी तैयार की जाएंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। अब हम आपको बता दें मौसम की जानकारी। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अंबिकापुर नगर का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान वर्षा 9.0 मिलीमीटर मापी गई। मौसम की जानकारी समाप्त हुई। अब हम आपको बता दें हमारे आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। कार्यक्रम विवरण में

अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने। सुबह 11:05 पर कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण किया जाएगा। दिन में 12 बजे सुनिएगा मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सब रंग। दिन में 12:30 पर कार्यक्रम कव्वालियाँ में आप सुनिएगा कुछ कव्वाली जफर हुसैन खां बदाउनी और साथियों के स्वर में। दिन में 1:05 पर कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं। दिन में 1:10 पर शहरी महिलाओं के कार्यक्रम घर आंगन में आप सुनेंगे क्रम बातचीत में तकनीक के साथ कौशल ज्ञान है जरूरी और कार्यस्थल पर सतर्कता जरूरी इन विषयों पर सामयिक चर्चा। क्रम शक्ति अभिव्यक्ति क्रम व्यंजन विधियां और गीत संगीत। दिन में 1:40 पर ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण किया जाएगा। दोपहर 2:30 पर आप सुनिएगा गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा। हमारी तीसरी सभा में शाम 5 बजे आप सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। शाम 5:05 पर गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या का प्रसारण किया जाएगा। शाम 5:30 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी में युवा साथी आज सुनेंगे क्रम युवा सोच क्रम एक ही फिल्म से। शाम 6:05 पर कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण किया जाएगा। शाम 6:20 पर लोक गीतों के कार्यक्रम गोधूली में हम आपको सुनाएंगे हीरा चंद पटेल और साथियों के स्वर में भोजपुरी लोकगीत और देवारी लाल और साथियों के स्वर में

गुजिया लोक गीत। शाम 7:20 पर ग्रामीण और किसान भाई सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल। इसमें सामयिक चर्चा में आप सुनेंगे शांति सह अस्तित्व और संवाद से वैश्विक स्थिरता का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय शांतिपूर्ण सह अस्तित्व दिवस, राष्ट्रीय डेयरी योजना, दूध उत्पादन से ग्रामीण समृद्धि, इन विषयों पर बातचीत। शाम 7:30 पर क्रम किसानवाणी का प्रसारण किया जाएगा। इसमें आप सुनेंगे पशुओं में दूध उत्पादन पर गर्मी का असर व समाधान और प्रधानमंत्री धान्य कृषि योजना, इस विषय पर बातचीत। रात 8:00 सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश का प्रसारण समय होगा। रात 9:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत में सुनिएगा कुछ फिल्मी गीत। रात 9:30 पर अखिल भारतीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती और रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, ये दोनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। तो श्रोताओं, ये तो थे हमारे आज के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए नए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए अंकित तिवारी की आवाज़ में।

0: Ayşe?
1: कार्यक्रम नए तराने का ये पहला गीत अभी आपने सुना अंकित तिवारी की आवाज़ में। फिल्म का नाम था एक विलेन। गीतकार थे मनोज मुंतशिर और संगीतकार थे अंकित तिवारी। और अब लीजिए सुनिए अमाल मलिक की आवाज़ में मनोज मुंतशिर का लिखा गीत। अमाल मलिक का संगीत है और फिल्म का नाम है साइना।

0: राम राम हो विष्णु भैया।
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया बिनु भैया, ए दे आगु तो ए दे वर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं।
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ये दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि यदि सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही।
1: हे
0: तो महु तो सुनू भाई ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज़ पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे

0: भी 100.2 मेगा हर्ट्स में भी एलाहदे सुन सकत है।
1: हाँ, अबे तो शुरू होएगी सा है।
0: हाँ, तो नागा तो देखी भाई, अब माहू सुन हूँ आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम, खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाणी।

फिल्म बैंड बाजा बारात का गीत अब लीजिए सुनिए श्रेया घोषाल की आवाज़ में। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है सलीम सुलेमान का।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
3: अब लीजिए सुनिए शब्बीर अहमद का लिखा गीत, मोहित चौहान और तुलसी कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है जिला गाजियाबाद, संगीत है अमजद नदीम का।

A.R. रहमान की आवाज़ में अब हम आपको सुना रहे हैं फिल्म हाईवे का गीत। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार हैं A.R. रहमान।

0: रेखा जल्दी रेडियो लगा, मंगलवार है, घर आंगन मेल में मेरी चिट्ठी आने वाली है।
1: अरे पर दीदी मुझे तो फोन पर बात करनी थी, क्या आज फोन नहीं लगेगा?
2: अरे नहीं रेखा, फोन के लिए शनिवार सुबह 10:30 पर नंबर मिलाना है। फोन इन का प्रसारण तो रविवार दोपहर 1:10 पर ही होगा। आज मंगलवार को सिर्फ पत्र और ईमेल वाला मेल ही आएगा।
0: पर आरती रेडियो ठीक से सेट तो कर दे।
2: रेडियो एकदम सही सेट है, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: अच्छा और फोन नंबर क्या है?
2: नंबर है 231-917 और 231-918। कोड लगाओ 07774। और पत्रों के लिए ईमेल याद है ना? gharanganair@gmail.com।
3: समझ गए, मंगलवार को मेल और रविवार को फोन।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, घर आंगन। मंगलवार घर आंगन मेल, रविवार फोन इन बात करें गीत सुने। सुनिए मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
3: घर आंगन, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
4: अभी आप सुन रहे हैं नए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नए तराने। अब लीजिए सुनिए कैलाश खेर की आवाज में फिल्म दत्ताज स्टोरी का गीत। गीतकार हैं विक्रम चौधरी और संगीतकार हैं राहुल देवनाथ।

0: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडिया वेव 1260 किलोहर्ट्ज के साथ अब FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर भी।
2: अब लीजिए सुनिए फिल्म एयरलिफ्ट का गीत, अमाल मलिक, अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज में। गीतकार हैं कुमार और संगीतकार हैं अमाल मलिक।

आकाशवाणी के 90 वर्षों के गौरवशाली प्रसारण के जश्न में शामिल होने आइए 23 मई को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट पर। आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब मिलकर करेंगे वॉकथन।

0: चलिए बनाए एक मिसाल अपनी प्यारी संबंधों की। शामिल होइए आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ 23 मई 2026 को।
1: चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में।
0: आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब करेंगे वॉक और साथ चलते चलते ढेर सारी बातें भी 23 मई 2026 को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट से शुरू करेंगे हम सब मिलकर वॉकथन। हमें रहेगा आपका इंतजार, आइएगा जरूर।
2: चलते।

कार्यक्रम नए तराने का ये अंतिम गीत लीजिए, सुनिए अंकित तिवारी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है रॉय, गीतकार हैं अभेंद्र कुमार और संगीत है अंकित तिवारी का।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 11 बजे हैं। हिंदी में समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबूधाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में कल नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ. दग्गुबाती पुरेंद्रेश्वरी को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पैनल में लोकसभा के 18 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। निचले सदन के सदस्यों में हेमा मालिनी, हरसिमरत कौर बादल और इकरा चौधरी शामिल हैं। राज्यसभा से समिति में सुधा मूर्ति, पीटी उषा और स्वाति मालीवाल सहित अन्य महिलाएं शामिल हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास में सिक्किम का योगदान अमूल्य है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का उत्सव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य अपना 50वां स्थापना राज्य मना रहा है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिनभर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता की ईडन गार्डन्स में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया था। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी

0: और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इज़्ज़ुद्दीन और गो सीफेई की जोड़ी से होना है। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिक विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मॉसम द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मॉनसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के तहत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं। पेश है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम में पहले गीत की फरमाइश आई है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाणकर, श्रीमती वैशाली गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर परी। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजभिये। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनना चाहा है रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन ने। तो इनकी फरमाइश पर लीजिए सुनते हैं अलीशा चिनोय, जावेद अली और शंकर महादेवन की आवाज़ में बंटी और बबली फिल्म का ये गीत। बोल हैं जावेद अली के, संगीत निर्देशन है शंकर एहसान लॉय का।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश आई है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक, बेमेतरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से इस गीत को सुनना चाहा है नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। ग्राम पहरा अहिवारा जिला दुर्ग से इस गीत की फरमाइश की है पोषण बंछोड़, चंद्रकिरण प्रीति और छाया बंछोड़ ने। सपना संगीता रोड इंदौर से इस गीत को सुनना चाहा है लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। तो लीजिए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर अमित कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में अनजान का लिखा हुआ यह गीत। फिल्म है अफसाना प्यार का, संगीत निर्देशन है बप्पी लहरी का।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 077774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: कार्यक्रम आपकी पसंद में, लीजिए अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म खुदगर्ज से, मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाज में। शब्द रचना है फारूक कैसर की, संगीत निर्देशन है राजेश रोशन का। सुनना चाहा है रेलवे कॉलोनी बटिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, JS नायक और शुभा नायक ने। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। इसी गीत की फरमाइश आई है ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्र्यंबिका, लीना, अंशुमाला, आशुतोष अंगारे की। रिंगनी छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनना चाहा है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने।

0: आकाशवाणी के 90 वर्षों के गौरवशाली प्रसारण के जश्न में शामिल होने आइए 23 मई को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट पर। आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब मिलकर करेंगे वॉकथन।
1: तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी।
0: चलिए बनाए एक मिसाल अपने प्यारे संबंधों की। शामिल होइए आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ 23 मई 2026 को।
2: चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में।
0: आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब करेंगे वॉक और साथ चलते चलते ढेर सारी बातें भी 23 मई 2026 को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के

0: राम राम हो किशोर भैया।
1: राम राम बिलू भैया।
0: ए दे भाई नगद ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया बिनु भैया, ए दे आगु तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं।
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ये दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में ये जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब ये विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला दे सुन सकते है।
1: हाँ, अभी तो शुरू होगी साहेब।
0: हाँ तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम किसान वाड़ी।
2: मीडियम व्यू पर आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। अगली गीत की फरमाइश आई है चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र सेन की। महादेव घाट अमलेश्वर से इस गीत को सुनना चाहा है डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर। भाटापारा छत्तीसगढ़ दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति। लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी और दतरंगी से भागवत वर्मा। तो लीजिए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म आवारापन का ये गीत मुस्तफ़ा जाहिद की आवाज़ में। लिखा है सईद कादरी ने, संगीत निर्देशन है मुस्तफ़ा जाहिद का।

कार्यक्रम आपकी पसंद के अंत में सुनते हैं फिल्म जमाने को दिखाना है का ये गीत आरडी बर्मन की आवाज़ में। लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत निर्देशन है आरडी बर्मन का। गीत की फरमाइश आई है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले की। छत्तीसगढ़ भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश नेहा और वान्या की। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महराज जहां, ये है हमारे श्रोता आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। छत्रपति संभाजी नगर से इस गीत को सुनना चाहा है राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश ने।

ليلى مجنون، شيرين فرحة، هير رانجها.

Jangan kemarin.

आरडी बर्मन की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे जमाने को दिखाना है फिल्म का गीत। और इसी के साथ ही श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 12:50

आरडी बर्मन की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे जमाने को दिखाना है फिल्म का एक गीत। बोलते मजरूह सुल्तानपुरी के संगीत निर्देशन था आरडी बर्मन का। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनते हैं स्लम डॉग मिलियनर फिल्म का एक गीत एआर रहमान और सुखविंदर सिंह की आवाज़ में। सुनना चाहा है नागपुर से विट्ठल जाधव, अनुसुईया जाधव, मंगेश जाधव, आकाश पप्पू, पवन राजे, औरंगाबाद से मंगेश इंगले, संध्या इंगले और स्वराज विराज ने।

0: स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म के गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी पसंद यही समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:55 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: 11:55 होने को हैं। आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार आप सुनिए।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को बस्तर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कांकेर जिले में माओवादियों द्वारा छिपा कर रखे गए हथियार और गोला बारूद बरामद। और महासमुंद पुलिस ने अपहरण के एक मामले में 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 19 मई को बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री श्री साय ने कल मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बस्तर में इस राष्ट्रीय स्तर की बैठक का आयोजन प्रदेश के लिए गौरव की बात है। राज्यपाल रमन डेका ने कबीरधाम जिले में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को वर्षा जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे भूजल स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी। राज्यपाल ने हर पक्के भवन और प्रधानमंत्री आवास में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने तथा खेतों में डबरी निर्माण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपा कर रखे गए डंप से 50 से अधिक हथियार तथा गोला बारूद बरामद किया है। इसमें SLR 303 राइफल, सिंगल शॉट देसी गन, BGL लॉन्चर, भरमार बंदूक, देशी कट्टा और कुकर बम सहित विभिन्न हथियार शामिल हैं। महासमुंद जिले की सरायपाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहरण के एक मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 14 मई को सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक व्यक्ति का अपहरण कर उसे कार से ओडिशा ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकेबंदी कर वाहन को रोक लिया और अपहृत युवक को सुरक्षित मुक्त कराया। पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने उधारी की रकम वसूलने के लिए युवक का जबरन अपहरण किया था। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कार जब्त कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन संरक्षण की अपील का समर्थन करते हुए नई दिल्ली स्थित अपने आवास से संकल्प भवन तक 3 किलोमीटर साइकिल चलाई। इस अवसर पर श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस और वर्चुअल मीटिंग को फिर शुरू करने का आह्वान अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों के बीच व्यापक राष्ट्रीय हित में है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने कल वर्चुअल माध्यम से मनेन्द्रगढ़ में कुटुंब न्यायालय के नए भवन और जनकपुर में न्यायिक कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। जगदलपुर में कल डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए क्षमता विकास कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यक्रम में बस्तर संभाग के लगभग 180 ग्रामीण डाक सेवकों ने हिस्सा लिया। बालोद जिले की जीवनदायिनी तांदुला नदी के पुनर्जीवन और इको रिवर फ्रंट विकास परियोजना के तहत कल UAV ड्रोन सर्वेक्षण कार्य का शुभारंभ किया गया। बिलासपुर में 7 वर्ष पहले 2019 में हुए विराट अपहरण कांड में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सभी 5 आरोपियों की अपील खारिज कर उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। और आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री मॉडल अब देशभर के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बनकर उभरा है। भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेंद्र भूषण ने राज्य के पंजीयन तथा मुद्रांक विभाग द्वारा किए गए तकनीकी नवाचारों और नागरिक केंद्रित सुधारों की सराहना की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को बस्तर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कांकेर जिले में माओवादियों द्वारा छिपा कर रखे गए हथियार और गोला बारूद बरामद। और महासमुंद पुलिस ने अपहरण के एक मामले में 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा।

0: जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। पेश है मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अलीशा चिनॉय की आवाज़ में इस गीत के साथ। बोल हैं श्याम अनुरागी के, संगीत निर्देशन है बिद्दू का।
2: वाले बाबू मेरा गाना चला तो।

माफ़ कीजिएगा, तकनीकी खराबी के चलते हम आपको ये गीत नहीं सुनवा पा रहे हैं। लीजिए अब सुनते हैं सोनू निगम की आवाज़ में ये गीत। बोल हैं फैज़ अनवर की, संगीत निर्देशन है साजिद वाजिद का।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230, 600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230, 600।
0: अरे वाह, 07774 230 600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: लीजिए, सुनते हैं अलीशा चिनॉय की आवाज में ये गीत। बोल है श्याम अनुरागी के, संगीत निर्देशन है बिद्दू का।

0: आकाशवाणी के 90 वर्षों के गौरवशाली प्रसारण के जश्न में शामिल होने आइए 23 मई को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट पर। आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब मिलकर करेंगे वॉकथन।
1: तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी।
0: चलिए बनाए एक मिसाल अपनी प्यारी संबंधों की। शामिल होइए आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ 23 मई 2026 को।
2: चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में।
0: आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब करेंगे वॉक और साथ चलते चलते ढेर सारी बातें भी 23 मई 2026 को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट से शुरू करेंगे हम सब मिलकर वॉकथन। हमें रहेगा आपका इंतजार, आइएगा जरूर।
3: चलते चलते
4: कार्यक्रम संप्रंग में लीजिए अब सुनते हैं नुसरत फतेह अली खां की आवाज में ये गीत। बोल हैं जावेद अख्तर के, संगीत निर्देशन है उत्तम सिंह का।

कार्यक्रम सबरंग के अंत में लीजिए अब सुनते हैं पावनी पांडे की आवाज में ब्लैकमेल फिल्म का एक गीत। बोल है अमिताभ भट्टाचार्य के, संगीत निर्देशन है अमित त्रिवेदी का।

पावनी पांडे के स्वर में इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सब रंग यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। पेश है कमवालियों का कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे जफर हुसैन खां बदाउनी और साथियों के स्वर में कुछ कवालियाँ। लीजिए सुनते हैं सबसे पहले ये कवाली।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ,

0: आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।

अभी आप सुन रहे थे जफर हुसैन खां बदाउनी और साथियों के स्वर में ये कव्वाली। इसी के साथ ही कव्वालियों का कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1 बजे हैं।

0: हिंदी में समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
2: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
1: सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे। वहां हजारों भारतीय समुदाय के उपस्थित होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स यात्रा का एक मुख्य आकर्षण होगा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड्स पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एक मुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। ये बटालियन साजो सामान और तैनाती के लिए मानक संघीय प्रोटोकॉल का पालन करेगी, उग्रवाद रोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाके डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना कर्मी मकानों के निर्माण में इस्तेमाल हुई सामग्री और उनमें उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित 33 प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। राजस्थान में लगभग 15 लाख परिवारों ने स्वगणना सुविधा के माध्यम से अपनी जानकारी जमा करने का विकल्प चुना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरला, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Excitement is building among the Indian diaspora in the Netherlands as Prime Minister Narendra Modi prepares to address the community this afternoon during his official visit. Thousands of Indian community members
1: हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। कार्यक्रम खेती की बात में लीजिए सुनते हैं नाशपाती की खेती विषय पर सामयिक सुझाव।
2: में शीतोष्ण फल में सेब के बाद नाशपाती का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है। बृहद जलवायु व मृदा अनुकूलता के कारण यह शीतोष्ण के अलावा समशीतोष्ण जलवायु में भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। नाशपाती की खेती छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ क्षेत्र जैसे बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा के पहाड़ी क्षेत्रों में भी वर्षों से हो रही है। बलरामपुर के शंकरगढ़ में कुसमी विकासखंड में इसकी खेती की प्रबल संभावनाएँ हैं। बलरामपुर के चांगरो गांव में 25 वर्षों से नाशपाती की खेती हो रही है। कुसमी के नटवरपुर उद्यान नर्सरी में 10 एकड़ में नाशपाती का बगीचा विकसित किया जा चुका है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के कुसमी एवं शंकरगढ़ विकासखंड की जलवायु नाशपाती की समशीतोष्ण प्रजातियों के लिए काफ़ी उपयुक्त है। जिले के डीपाडी, चांगरो, अयारी, जोकापाट, लहसुनपाट, सामरीपाट, कुसमी, जिगनिया आदि क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता युक्त नाशपाती का उत्पादन किया जा सकता है। विगत कई वर्षों से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय व कृषि विज्ञान केंद्र बलरामपुर द्वारा प्रशिक्षण देकर किसानों को समय पर नाशपाती के पौधों को खाद, उर्वरक प्रबंधन एवं अन्य तकनीकी जानकारी देकर नाशपाती की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नाशपाती की प्रमुख प्रजातियों में मध्यम निम्न पहाड़ी व घाटी क्षेत्रों के लिए पत्थर नख, कैफर, चाइना नाशपाती, गोला लिकोंटे प्रजाति अनुशंसित की गई हैं। नाशपाती में साकुर डाली के रूप में सामान्यतः कैथ व सियरा के पौधे उपयोग में लाए जाते हैं। पंजाब में जंगली नाशपाती के जड़ शकर भी साकुर डाली के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। उत्तर भारत के मैदानी भागों में पत्थर नख प्रजाति कलम भी पौधे परिवर्तन साकुर डाली के रूप में प्रयोग में लाए जा रहे हैं। अच्छी फसल वाले नाशपाती वृक्ष के नए वृद्धि वाले प्रदोह से साकुर डाली तैयार किया जाता है। इन प्ररोहों को वृक्ष से अलग करके इसे 100 हार्मोन से उपचारित किया जाता है और 24 घंटे के लिए नम बालू में रखकर इसे उपचारित किया जाता है। इसके पश्चात इन्हें नर्सरी में रोप दिया जाता है। इसके बाद में बडिंग या ग्राफ्टिंग किया जाता है। नाशपाती के पौधों में सामान्यतः अप्रैल सितंबर के मध्य टी बडिंग या दिसंबर जनवरी में जिह्वा ग्राफ्टिंग किया जाता है। नाशपाती की जलवायु अनुकूलता बृहद है। इसकी खेती 26 डिग्री से 45 डिग्री तापमान पर किया जा सकता है। नाशपाती के अधिकांश प्रजातियों को 1200 घंटे के लगभग 7 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान उसकी चिलिंग आवश्यकता पूरी करने के लिए आवश्यक होती है, जबकि कुछ प्रजातियां जैसे पत्थर नख को मात्र 150 घंटे की चिलिंग तापमान की आवश्यकता होती है। यह प्रजाति छत्तीसगढ़ में अपनाने के लिए काफ़ी उत्तम है। इसके अलावा मध्यम चिलिंग आवश्यकता वाली कुछ अन्य किस्में हैं जिसमें जी कोंटे, कैफर, प्लाइन एप्पल, हुड, गोला प्रजाति भी यहाँ ली जा सकती है। ये प्रजातियाँ ग्रीष्मकाल में उच्च ताप व गर्म हवा को भी सहन कर सकती हैं। नाशपाती का उत्पादन गहरी उचित जल निकासी वाली उपजाऊ मध्यम संरचना वाली तुलनात्मक रूप से अधिक क्ले वाली मृदाओं में अच्छा होता है। यह गीली जमीन के लिए तुलनात्मक रूप से सहनशील है, जबकि यह सूखे की स्थिति को सहन नहीं कर सकती। यह भारी व अधिक जल भराव एवं कम मृदाओं में भी अच्छी तरह हो सकती है। पौधे लगाने के तुरंत बाद पौधों के चारों ओर थाला बना देना चाहिए और पानी देना चाहिए। पौधे के

0: तने के पास मिट्टी ऊंची रखनी चाहिए ताकि तना पानी के संपर्क में ना आ सके। खाद उर्वरक की बात करें तो 10 वर्ष के पौधे में 60 से 100 किलोग्राम गोबर खाद, 700 ग्राम नाइट्रोजन, 350 ग्राम फास्फोरस, 700 ग्राम पोटास प्रति पौधा डालना चाहिए। गोबर खाद, फास्फोरस और पोटास दिसंबर के पहले डालना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा फल लगने के तुरंत बाद देना चाहिए। जिंक और आयरन की कमी होने पर इसकी निर्धारित मात्रा जिंक सल्फेट अप्रैल माह में देना चाहिए। इस समय पौधे लगाने का समय है। किसान भाई इस समय नाशपाती के पौधे लगा सकते हैं ताकि इसका अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे।
1: कार्यक्रम खेती की बात में अभी आप सुन रहे थे नाशपाती की खेती विषय पर सामयिक सुझाव। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:10 हो चुके हैं। प्रस्तुत है शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

0: बहनों, आज वट सावित्री की पूजा है। सुहागन महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए ये व्रत किया जाता है। और हिंदू पौराणिक कथाओं में माता सावित्री के अटूट प्रेम और पतिव्रता धर्म के प्रति समर्पण को समर्पित भी है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है और मान्यता के अनुसार इस वृक्ष में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। जैसे इसकी लंबी उम्र होती है और कभी न खत्म होने वाली शाखाएं होती हैं, उसी की तरह महिलाएं अपने सुहाग की अमरता की प्रार्थना करती हैं। नारी शक्ति और पति पत्नी के अटूट प्रेम को समर्पित इस पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ही स्वीकार कीजिए मधु का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, हम अपने इस क्रम में एक खास विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: बहनों, जैसे जैसे समय बदल रहा है, पूरी दुनिया और समाज में भी बदलाव लगातार देखने को मिल रहा है। और इन्हीं बदलावों में से एक बदलाव यह भी दिखता है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। उन्होंने अपने अधिकारों को पहचाना है और आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हुए न सिर्फ खुद की पहचान बना रही हैं, बल्कि देश का गौरव बनकर सम्मान भी बढ़ा रही हैं। आज वे घर की चार दीवारी से भीतर से बाहर आ गई हैं और आकर के आर्थिक संपन्नता हासिल कर रही हैं। परंतु बहनों, इन सब के बीच एक समस्या ये भी है कि आप अपने कार्यस्थल पर कितने सुरक्षित हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं की सतर्कता और जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनकी शारीरिक सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के साथ ही करियर की प्रगति से सीधे जुड़ी हुई हैं। कार्यस्थल पर अगर ऐसा सम्मानजनक वातावरण न हो जहां आप बिना डर के कार्य कर सकें, तो ये आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है बहनों। इसलिए इसकी दिशा में आपको जागरूक होने और अपने अधिकारों को जानने की ज़रूरत है। कार्यस्थल पर आपको अपने अधिकारों के विषय में बेहद जरूरी है कि आप बोलें, क्योंकि महिलाओं को ऐतिहासिक रूप से कई उद्योगों में भेदभाव और असम्मान व्यवहार का शिकार होना पड़ा है। अपने अधिकारों के लिए बोलने से न केवल महिलाएं व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित होती हैं, बल्कि पूरे समाज को भी लाभ होता है। ये रूढ़िवादिता को तोड़ने में मदद तो करता ही है, बहनों, न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज भी बनाने में मदद करता है। आप जानती हैं कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 के तहत महिलाओं को मानसिक, मौखिक, शारीरिक, ऑनलाइन किसी भी तरह से उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी अधिकार प्राप्त है और सतर्कता से वे अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकती हैं। कई बार महिलाओं को ये आभास हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो कैसा है। आप ये महसूस कर सकती हैं कि उसका व्यवहार आपके प्रति कैसा हो सकता है। कार्यस्थल पर यदि आपको अपने साथ पक्षपात, आक्रामक व्यवहार महसूस हो रहा है, फिर बदमाशी हो रही हो, या तो इसके प्रति आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इनसे पहचान कर आप इनसे बच सकती हैं। आपके कार्यस्थल पर सहकर्मियों का व्यवहार, कंपनी की सुरक्षा नीतियां, जैसे कि CCTV, देर रात तक काम करने पर सुरक्षा जैसे नियम के प्रति आपको जागरूक होना चाहिए। आपको बता दें बहनों कि जब आप जागरूक

देखती हैं तो आप लैंगिक भेदभाव जैसे कि समान वेतन, पदोन्नति में बाधा जैसी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं जो आपके करियर के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए चुप बिल्कुल भी ना रहें। आपको पता होना चाहिए कि हर संस्थान में जहां 10 से अधिक कर्मचारी होते हैं वहां ICC यानी कि आंतरिक शिकायत समिति बनाना अनिवार्य है। यदि आप किसी भी उत्पीड़न की शिकार हो रही हैं तो कार्यस्थल पर 3 महीने के भीतर शिकायत दर्ज करा सकती हैं। तो बहनों, अपने काम और अधिकारों के प्रति हमेशा सतर्क और जागरूक रहें। आप सिर्फ स्त्री नहीं हैं, आप शक्ति का स्वरूप हैं जो किसी भी काम को संभव बना सकती है। तो सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। हम बातें और भी करेंगे लेकिन पहले सुनते हैं ये गीत।

बहनों, फिल्म साजन के घर के इस गीत के साथ ही अब बारी है हमारे अगले क्रम की, जो है हमारा आज का शक्ति अभिव्यक्ति क्रम। सुनते हैं हमारा आज का ये क्रम।

बहनों के शक्ति स्वरूप से आपका परिचय कराते हमारे आज के इस क्रम में आपका स्वागत है। बहनों, कहते हैं कि प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। यदि आप में प्रतिभा है तो तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी वे निखर कर सामने आ ही जाती है। उसके लिए आपका साधन संपन्न होना जरूरी नहीं है, जरूरी है बस एक अवसर की, एक सही दिशा की और सही मार्गदर्शन की, जो आपकी मेहनत को सही मकाम तक पहुंचा सके। बहनों, हमारा आज का ये शक्ति अभिव्यक्ति क्रम तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने हुनर से अपनी पहचान बनाती एक ऐसी स्त्री शक्ति को समर्पित है जिनका नाम है भूरी बाई। जी हाँ बहनों, मध्य प्रदेश के जनजातीय संग्रहालय में कलाकार के पद पर कार्य करने वाली भूरी बाई आज कला और संस्कृति जगत का एक प्रसिद्ध नाम है। उनकी बनाई पेंटिंग्स ने मध्य प्रदेश के संग्रहालय से लेकर अमेरिका तक अपनी छाप छोड़ी है। आपको बता दें बहनों कि कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर सम्मान देवी अहिल्याबाई सम्मान, रानी दुर्गावती सम्मान और ना जाने कितने ही अभिलेखों में उनका नाम दर्ज है। बहनों, भूरीबाई एक भारतीय भील कलाकार हैं। उनका जन्म मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर स्थित पितौल गांव में हुआ था। पितौल मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का एक गांव है। बहनों, वे भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूह भीलों के समुदाय से संबंध रखती हैं। उनके गांव में ज्यादातर सभी लोग एक खास तरह की पिथौरा चित्रकारी करते थे, इसलिए बचपन से ही उनका रिश्ता चित्रकारी से जुड़ गया। बहनों, बता दें कि पिथौरा कला भील आदिवासी समुदाय की कला शैली है। इसे केवल सजावट के लिए नहीं बल्कि देवताओं को प्रसन्न करने, मन्नत पूरी होने पर आभार व्यक्त करने, सुख समृद्धि लाने के लिए अनुष्ठान के रूप में भी बनाया जाता है। मैंने इस पेंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा देवी देवताओं और पूर्वजों के घोड़े होते हैं, जिन्हें जीवंत रंगों और सजावट के साथ दर्शाया जाता है। बहनों, कहा जाता है कि ये पेंटिंग प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है। वैसे तो पारंपरिक रूप से यह चित्रकारी केवल पुरुषों के द्वारा की जाती है, महिलाओं को इसे बनाने की अनुमति नहीं होती। वे चित्रकारी से संबंधित जो तैयारियां होती हैं उसमें केवल मदद करती हैं, क्योंकि मान्यता यह है कि इन पवित्र प्रतीकों और देवताओं की आकृति को बनाना केवल पुरुषों का ही काम है। पर कहते हैं कि हुनर कहाँ किसी इजाजत की मोहताज होती है। भूरीबाई ने इस कला शैली में अपने डिजाइन्स बनाए। उनकी पेंटिंग सिर्फ अलग अलग तरह के घोड़े को ही नहीं बल्कि लोगों की जीवन शैली को भी दर्शाती है। बहनों, भील कला को कुछ लोग भारत की सबसे प्राचीन जनजातीय कला विद्या मानते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया की आदिवासी कला से मिलती जुलती है। विशेष रूप से इसमें रंगों और बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। बहनों, भूरीबाई ने रंगीन चित्रों में आमतौर पर पौराणिक विषय, ग्रामीण दृश्य और मनुष्य और पशु के बीच अंतर संबंध दर्शाए हैं। हालांकि बाद में उनकी रचनाओं में हवाई जहाज, मोबाइल फोन जैसे आधुनिक तत्व भी शामिल किए गए हैं। चित्रकला के अलावा भूरीबाई झोपड़ी बनाने की कला में भी निपुण है, जो उन्होंने अपनी माँ से सीखी थी। उन्होंने भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में भील झोपड़ी निर्माण में काफी योगदान दिया। बहनों, जहाँ वे रहती हैं, उन्होंने अपने जीवन में न जाने कितनी ही मुश्किलों का सामना किया। जहाँ एक तरफ परिवार के लिए दो वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था, वहीं किसी ने एक बार उनके पूरे घर में आग लगा दी थी।

दुर्घटना से जैसे तैसे उनका परिवार बचा। जब भूरी बाई अपने पति के साथ भोपाल आई तब उनका परिवार झुग्गी झोपड़ियों में रहता था और सभी दिहाड़ी मजदूरी करते थे। बाकी लोगों के साथ भूरी बाई ने भी मजदूरी पर जाना शुरू किया। उस समय वहाँ पर भोपाल के भारत भवन का निर्माण कार्य चल रहा था। बहनों, यहीं भूरी बाई हर रोज काम करने आती थी, एक ऐसा काम जिसमें उन्हें प्रतिदिन 6 रुपए मिलते थे। यहीं पर उनकी मुलाकात जगदीश स्वामीनाथन से हुई। उन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें चित्रकारी के लिए प्रोत्साहित किया। भूरीबाई ने अपने समुदाय के कलाकार लाडोबाई के साथ काम करना शुरू किया। इस तरह उन्होंने अपना सफर भील कलाकार के रूप में प्रारंभ किया। बहनों, भूरीबाई अब भोपाल के आदिवासी लोक कला अकादमी में एक कलाकार के तौर पर काम करती हैं। भूरीबाई पहली आदिवासी महिला है बहनों जिन्होंने गांव के घर की दीवारों पर पिथौरा पेंटिंग करने का साहस किया। आपको बता दें बहनों कि अपने चित्रों के लिए कागज और कैनवास का उपयोग करने वाली वह पहली भील कलाकार है। जिन रंगों और ब्रशों को भी उन्हें खुद तैयार करना पड़ता था, उसकी जगह बने बनाए ब्रश और रंगों का प्रयोग करना उनके लिए भी एक खास अनुभव था। लेकिन उन्होंने कैनवास पर अपने हुनर से कलाकृति को कुछ ऐसे जीवंत किया जो देश विदेशों में उनकी पहचान बन गया। 2021 में उन्हें भारत के 4th सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बहनों, उनकी इस मेहनत ने और ईश्वर के दिए एक अवसर ने उन्हें जिस मकाम पर पहुंचाया वो हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो ये सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जो हों, खुद पर विश्वास रखकर कार्य करते जाएं तो सफलता जरूर मिलती है। उनकी मेहनत, उनके जज्बे और उनके हौसले को हमारा सलाम है बहनों। और आज का हमारा शक्ति अभिव्यक्ति क्रम बस यहीं तक। तो बहनों, अभी आप सुन रहे थे हमारा आज का शक्ति अभिव्यक्ति क्रम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब चलिए सुनते हैं ये गीत।

बहनों, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म गैम्बलर का गीत अभी आप सुन रही थी। इस गीत के साथ ही बढ़ते हैं अपने अगले क्रम में, जो है हमारा आज का व्यंजन विधियों का क्रम। बहनों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी बाज़ार में पपीता आ रहा है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पपीता खाने से पाचन शक्ति मजबूत होती है, कब्ज दूर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके साथ ही यह दिल को स्वस्थ रखने, वजन घटाने और त्वचा में प्राकृतिक चमक लाने में भी मदद करता है। तो आज का हमारा ये क्रम बस इसी पर आधारित कुछ व्यंजन विधियों पर है। तो बहनों, हम आपको बताना चाहेंगे, इस क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे पहले पपीते की बर्फी बनाने की विधि। इसके लिए आपको सामग्री लेना है आधा पका हुआ पपीता, 1 टेबल स्पून घी, 2 टेबल स्पून बादाम काजू की कतरन, आधा कप मिल्क पाउडर, आधा टीस्पून इलायची पाउडर, 1/3 कप शक्कर, 2 टीस्पून पिस्ता कतरन आपको लेना है। और साथ ही इसके लिए करना ये है कि पपीते को, जो पका हुआ पपीता है, उसको छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। कुछ टुकड़ों को छोड़कर बाकी को मिक्सी में आपको पीस कर गाढ़ी प्यूरी बना लेना है। अब एक पैन में घी गर्म करके इसमें पपीते की प्यूरी को डालना है, साथ ही कटे हुए पपीते के पीस भी डाल देने हैं और लगातार चलाते रहना है। मध्यम आंच पर इसे लगातार आप तब तक चलाते रहें जब तक इसका पानी सूख न जाए। अब इसमें शक्कर मिलाएं, जब तक शक्कर का पानी सूख न जाए तब तक मध्यम आंच पर इसे चलाकर पकाते रहें। अब इसमें थोड़े से काजू बादाम पिस्ता कतरन मिला लें और लगातार चलाएं। अब इसमें मिल्क पाउडर मिक्स करके तब तक चलाएं जब तक ये मिश्रण जो है वो एक सार होकर पैन के किनारे ना छोड़ने लगे। इस मिश्रण में आप इलायची पाउडर डालें और ग्रीस की हुई एक प्लेट में डालें, ऊपर से समतल करें और बचे हुए ड्राई फ्रूट्स की कतरन डालकर अच्छे से इसे दबा दें। इसे 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर आपको सेट होने देना है और फिर अपने मनपसंद आकार में इसे काट लेना है। तो बहने, इसे ज़रूर बनाकर देखें और अपनी समीक्षा हम तक ज़रूर पहुँचाएँ कि आपको ये कैसे लगी। तो हम बातें और भी करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं ये गीत।

बनो, इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो विधि है वो बनाने के लिए हम लेकर आए हैं कच्चे पपीते का कटलेट। बहनों, इसके लिए आपको सामग्री लेना है कच्चा पपीता, नमक स्वादानुसार, गरम मसाला आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच, ब्रेड क्रम्स लेने हैं आपको, बेसन 2 चम्मच लेने हैं, हरा धनिया जो है उसको बारीक काट करके लेना है आपको, हरी मिर्च लेना है वो भी बारीक काट करके लेना है, धनिया पाउडर लेना है आधा चम्मच और तेल लेना है तलने के लिए। सबसे पहले कच्चे पपीते को छीलकर आपको कद्दूकस कर लेना है। अब इसमें हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक स्वादानुसार डाल करके मिक्स कर लेना है। इसे बांधने के लिए इसमें भुने हुए बेसन को आपको डालना है और इसके बाद पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इस मिश्रण को थोड़ा थोड़ा गोल लेकर के और हाथों से इसे फिर से हथेली से चपटा कर लेना है। अब कढ़ाई में तेल गर्म कर ले, फिर ब्रेड क्रम्स में इन कटलेट को लपेटकर सुनहरा होने तक तल लेना है। इस तरह से तैयार हो जाएगा आपका पपीते का कटलेट। आप इसे केचप के साथ या हरी चटनी के साथ परोस सकती हैं। तो बहनों, हमारा आज का व्यंजन विधियों का क्रम बस यहीं तक है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि मौसमी फल और सब्जियां जो होती हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती हैं और पोषण की दृष्टि से यदि आप देखें तो पपीता काफ़ी अच्छा होता है और हमारे जो खान पान है उसमें पौष्टिक तत्वों का होना बेहद ज़रूरी होता है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें, अपने पोषण का, अपने परिवार के पोषण का खास ख्याल रखें। तो आज का घर आंगन कार्यक्रम बस यहीं तक। इस क्रम से मुझे यानी मधु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:40 हुए हैं। वक्त हो चला है श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम ईमेल की गूंज का। आपके पसंदीदा कार्यक्रम ईमेल की गूंज में आज मैं मृदुल वर्मा आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं।

आज कार्यक्रम ईमेल की गूंज में पहली फरमाइश आई है जलगांव जंक्शन से। दिनेश काले, वंदना काले, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर और आदेश कुमार काले की। ग्राम तारकेश्वरपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से मधुसूदन प्रजापति, सुखमनिया प्रजापति, झिलमिल प्रजापति, दक्ष प्रजापति, कुंती मंगल राम और रिद्धि सिद्धि प्रजापति की। हरियाणा से विकास शेट्टी, नीलिमा शेट्टी, गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से। गुजरात से इस गीत को सुनना चाहा है प्रवीण सोनी, पूजा पायल, कंचन, कुसुम कलावती, जूली और जगदीश जौहरी ने। छत्रपति संभाजी नगर से हमारे श्रोता हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि स्वरूपा, सोहम बोरगांवकर, सदानंद विराज, नीरज सुभाष, सदानंद योगिता, सुवर्णा बोरगांवकर। इसी गीत की फरमाइश की है मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। नेहरू चौक पैठन से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव। जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव, संगीता जाधव। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। शास्त्री नगर बीट शहर से आशा सपकाल, किशन सपकाल, विशाल सपकाल, सोनिया सपकाल और साईराज सपकाल। ग्राम पहरा अहिवारा, जिला दुर्ग से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोर। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से इस गीत की फरमाइश की है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। अकोला से के शरद पाचपोर, श्रीमती शोभा पाचपोर, बेबी वैदेही, विहान बाबू, रश्मि अक्षय और अभिनव पाचपोर। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी। तो आप सभी के फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का ये गीत कार्तिक की आवाज़ में। लिखा है नीलेश मिश्रा ने, संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म दिल मांगे मोर से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में। बोल हैं समीर के, संगीत निर्देशन है प्रीतम का। सुनना चाहा है जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, बेबी जोई, यामिनी तिवारी और उमा तिवारी। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजलि ज्योति प्रहलाद वर्मा। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेभवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता एवं इनके परिवार के सभी सदस्य। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा और साहिल कांगड़ा। रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति कुमार, डिकेश साहू। गिरिडीह झारखंड से इस गीत की फरमाइश की है मोहम्मद यासीन अनजान, सायमा नवास, हसन नवास और शरीफ नवास ने। सावर गांव महाराष्ट्र से इस गीत को सुनना चाहा है रघुनाथ पाटिल नारे ने। लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी। जोड़ा पीपल अंबिकापुर से स्वरूप आनंद सरजल। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। इंदिरा चौक तखतपुर से इस गीत की फरमाइश की है मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा ने।

ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा साहिल विश्वकर्मा एवं समस्त विश्वकर्मा परिवार। तो लीजिए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये गीत।

कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश आई है बाजार रोड मुंगीसापुर से, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सबिश्ता पलक लुबना और यश मंसूरी की। जनकपुर सहारनपुर से जोन रोजी डिस्ट्रिको पर्ल डिकेस्ट्रो विलिस डिकेस्ट्रो की। ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण चंदेश कुमार, चंद्रकला शशिकांता प्रजापति। बलोदा छत्तीसगढ़ से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल की। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा मध्य प्रदेश से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकरलाल गंगराडे, साफिया अरहान खोकर और मोहम्मद हसनैन पवार। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से इस गीत को सुनना चाहा है पीएस नवहानकर, निर्मला नवहानकर, विशाल नवहानकर किन्ने। मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुहरेकर। रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, ग्राम पंचायत धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा, कुमारी क्रिस्टी पटवा। गुवाहाटी असम से हरेन पांड्या, नरेन पांड्या और वीरेन पांड्या। कस्बा बराडा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी और किशोर गुप्ता। तो लीजिए, आप सबकी फरमाइश पर पेश है राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज़ में दबंग 2 फिल्म के गीत बोल हैं समीर के, संगीत निर्देशन है साजिद और वाजिद का।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ईमेल की गूंज अपने रेडियो साथी मृदुल वर्मा के साथ। कार्यक्रम में अगला गीत है उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ में टशन फिल्म से। बोल हैं कौशल मुनीर के, संगीत निर्देशन है प्रीतम का। सुनना चाहा है राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट, कृष्णा केवट, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा, बाबा कुटीर रायगढ़ से इसी गीत की फरमाइश की है शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान ने, बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रंभाड़े, भारती रंभाड़े, जानवी रंभाड़े, वैष्णवी हर्षल रंभाड़े, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से इस गीत को सुनना चाहा है अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जिया उल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे ने, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, ओम प्रकाश सुरलकर, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गजनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हमारे श्रोता साथी हैं अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, अर्जुन गवाणकर टुक टुक। तो लीजिए सुनते हैं आप सभी के फरमाइश पर ये गीत।

श्रोताओं, वक्त हो चला है अब कार्यक्रम के अंतिम गीत का। कुणाल गांजावाले की आवाज में फिल्म है अनकही, बोल हैं सुब्रत सिन्हा के, संगीत निर्देशन है प्रीतम का। गीत की फरमाइश की है ग्राम सोंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश कुमार चंदन। उत्तम नगर दिल्ली से बुधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। दतरंगी से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी, गोस्वामी लक्ष्मणी देवी, गोस्वामी जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। ग्राम लसूड़िया पाटा तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता साथी हैं गोविंद वैष्णव, दिव्या कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र दांगी। गांव नथाना पंजाब से इस गीत की फरमाइश की है हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता ने। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन सा

0: आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 2:15 हुए हैं। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना

0: और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में

0: सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, AI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
4: If you heard me earlier,
3: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
1: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
5: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री GUDC और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के

0: कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेस्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए AI के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जाँच के आदेश दिए। CBSE ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। पेश है गैर फिल्मी गीत गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम का आगाज करेंगे कैलाश खेर के गाए इस गीत के साथ। संगीत निर्देशन है नरेश कामत का, बोल हैं कैलाश खेर के।

0: छैया। आकाशवाणी के 90 वर्षों के गौरवशाली प्रसारण के जश्न में शामिल होने आइए 23 मई को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट पर। आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब मिलकर करेंगे वॉकथन।
1: तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी।
0: चलिए बनाए एक मिसाल अपनी प्यारी संबंधों की। शामिल होइए आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ 23 मई 2026 को।
2: चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में।
0: आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब करेंगे वॉक और साथ चलते चलते ढेर सारी बातें भी 23 मई 2026 को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट से शुरू करेंगे हम सब मिलकर वॉकथन। हमें रहेगा आपका इंतजार, आइएगा जरूर।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीत गजलों का कार्यक्रम गीत गंथा। लीजिए अब सुनते हैं पंकज उदास की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गज़ल, लिखा है मुमताज़ राशिद ने, संगीत निर्देशन है पंकज उदास का।

0: बाकी सब गंगा।
1: पंकज उदास के गए इस गजल के बाद लीजिए अब सुनते हैं सुनीता राव की आवाज़ में ये गीत। संगीतकार हैं लेस्ली लेविस।

0: सुनीता राव की आवाज़ में इस गीत के बाद कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनते हैं वडाली ब्रदर्स की आवाज़ में ये गीत। गीतकार और संगीतकार हैं वडाली ब्रदर्स।
1: तू माने या ना

0: यार तो बगैर जीना क्या है।
1: मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। आइए नजर डालते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा पर।

शाम 5 बजे आप सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या हम आपको सुनवाएंगे शाम 5:05 पर। युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होगा शाम 5:30 पर। शाम 6:05 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण। विषय होगा व्यवहारिकता। संकलन व वाचन स्वर होगा पौलमी हरि का। लोकगीतों के कार्यक्रम गोधुली में शाम 6:20 पर आप सुनिएगा कुछ लोकगीत।

कुछ फिल्मी नगमे हम आपको सुनाएंगे कार्यक्रम माधुरी में शाम 6:30 पर और कार्यक्रम चित्रपट संगीत में रात्रि 9:15 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुन सकेंगे शाम 7:05 पर। ग्रामीण और किसान भाइयों के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 7:20 पर। चर्चा का विषय होगा शांति, सह अस्तित्व और संवाद से वैश्विक स्थिरता का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय शांतिपूर्ण सह अस्तित्व दिवस, राष्ट्रीय डेयरी योजना, दूध उत्पादन से ग्रामीण समृद्धि। चौपाल के अंतर्गत शाम 7:30 पर कार्यक्रम किसानवाड़ी में आप सुनिएगा पशुओं में दूध उत्पादन पर गर्मी का असर व समाधान और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना विषय पर चर्चा। इसके साथ ही आप सुनेंगे कुछ लोकगीत, मंडी भाव, मौसम की जानकारी और आज कर सवाल। रात्रि 8:00 आप सुनिएगा सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश। अखिल भारतीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती आप सुनिएगा रात्रि 9:30 पर। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनिएगा रात्रि 10:00। इसमें आज आप सुनिएगा पंडित कैवल्य कुमार गौरव का ख्याल गायन। इन दोनों कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3:03 हुए हैं। इसी के साथ ही हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। इस दौरान आप हमारे एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हमसे जुड़े रह सकते हैं, जिसमें हम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल का अनुप्रसारण करेंगे। इसके साथ ही शाम 4:58 पर अपने सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: हाथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया अरचोका भेलकक्ष पेंडारी बोदरई शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर रामानुजगंज और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये मिंढारी प्रेमनगर भगवानपुर नवापारा चिनिया महावीरगंज रामपुर कनकपुर कुंदीकला जामदोहर अखोरा बदौली जवा खाड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के उदयपुर सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 19 है। ये लक्ष्मणगढ़ जगन्नाथपुर सायर ससकालो मुड़ापारा सुखरी भंडार सरगा ढोढ़ा गांव बोड़ा झरिया घासीडी घड़गांव बैगहवा बैडाण कंडराजा चोरकी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 35 है। ये नारायणपुर जामचुआ चरईमारा रानी कोम्बो खड़ा माचा कुकुर गांव कुदरा झरिया साजा पानी तीता पाकेर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल धर्मजयगढ़ बाकारुमा कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 136 है। ये गिरसा पोटिया आमगांव रुपुंगा तेजपुर बेहरामार बनहर

0: औरा नारा पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये कलमी टिकरा गिरारी गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा लालडी झुनकी डी कुकरी कादर डंग बोरा कोदवारी खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 5 है। ये बंगूरसिया नवागांव चक्रधरपुर जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभयारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी नवापारा सरायपाली गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी पकरीत ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़ अमलोर ताराजह डडईपानी बुडार सिंहार छिंदौला लूठापारा नारीपानी डूमर घाट कोदोमाली मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम भजन संध्या। इस कार्यक्रम में सुनते हैं ये भक्ति गीत नितिन मुकेश की आवाज़ में।

नितिन मुकेश की आवाज़ में ये भक्ति रचना आप सुन रहे थे। अब सुनते हैं नील कमल फिल्म से ये भजन आशा भोसले की आवाज़ में।

नील कमल फिल्म से ये भजन आशा भोसले की आवाज़ में आप सुन रहे थे। अब सुनते हैं ये भक्ति रचना तृप्ति शाक्य के स्वर में।

इसी भक्ति गीत के साथ भजन संध्या कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, आज के युवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियम और आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन भावनाओं की जिनके बारे में हम अक्सर सोचते तो हैं पर बोलते नहीं। आज का सवाल थोड़ा भारी है लेकिन सच्चा है। क्या अकेलापन एक बीमारी है या फिर जिंदगी की सच्चाई? जरा सोचिए, भीड़ में खड़े होकर भी अगर मन खाली लगे, फ़ोन में हजार कॉन्टैक्ट हो लेकिन बात करने के लिए कोई भी ना हो, तो क्या ये बीमारी है या हमारी ज़िंदगी का नया सच? आज हम इसी सच को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, डॉक्टर कहते हैं अकेलापन इंसान को अंदर से तोड़ देता है। जब कोई बात करने वाला नहीं होता तो दिमाग खुद से बात करने लगता है, ओवरथिंकिंग बढ़ती है, नींद कम होती है, खुशी धीरे धीरे गायब होने लगती है। अकेलापन शरीर को भी बीमार कर देता है, दिल की बीमारी, डिप्रेशन, एंजाइटी। यानी अकेलापन सिर्फ एहसास नहीं, असर भी है। इसलिए कई लोग इसे साइलेंट डिसीज़ भी कहते हैं। लेकिन क्या ये ज़िंदगी की सच्चाई भी है? हर इंसान ज़िंदगी में कभी ना कभी अकेला होता है। जब हम बड़े होते हैं दोस्त कम हो जाते हैं, परिवार व्यस्त हो जाता है और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और एक दिन हमें समझ आता है कि ज़िंदगी की सबसे लंबी यात्रा हमें खुद के साथ ही तय करनी होती है। सच ये है कि अकेलापन हमें खुद से मिलाता है। यही वो समय होता है जब इंसान अपने सपनों से मिलता है।

लड़ता है, अपने डर से लड़ता है और खुद को समझता है। तो सवाल यह आता है मन में कि क्या अकेलापन दुश्मन है या जिंदगी का शिक्षक। अगर अकेलापन हमें रुलाए तो वो दर्द है, लेकिन अगर वही अकेलापन हमें मजबूत बनाए तो वो हमारी ताकत है। यही अकेलापन किसी को कलाकार बना देता है, किसी को लेखक, किसी को सफल इंसान। क्योंकि जब दुनिया साथ नहीं देती तब इंसान खुद का साथ देना सीख

अकेलापन किसी को कलाकार बना देता है, किसी को लेखक, किसी को सफल इंसान। क्योंकि जब दुनिया साथ नहीं देती, तब इंसान खुद का साथ देना सीख जाता है। और सच कहें तो जो खुद का साथ निभाना सीख गया, उसे ज़िंदगी कभी अकेला नहीं छोड़ती। दोस्तों, एक बहुत बड़ा फ़र्क है अकेला होने और अकेलापन महसूस करने में। अकेला होना परिस्थिति है, अकेला महसूस करना मन की स्थिति है, और मन की स्थिति बदली जा सकती है। जब इंसान खुद से दोस्ती कर लेता है तो खामोशी भी साथी बन जाती है, फिर अकेलापन डर नहीं लगता, सुकून लगता है। क्योंकि कभी कभी हम सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन कोई हमारे साथ नहीं होता। आज की दुनिया में इंसान पहले से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, लेकिन पहले से ज़्यादा अकेला भी है। पहले लोग शाम को छत पर मिलते थे, अब लोग ऑनलाइन दिखते हैं। पहले बातें दिल से होती थी, अब बातें टाइप होकर भेजी जाती हैं, और धीरे धीरे बातें कम होने लगती हैं और खामोशी बढ़ने लगती है। और यही खामोशी अकेलापन की शुरुआत है। तो आखिरी जवाब क्या है? अकेलापन बीमारी भी है और ज़िंदगी की सच्चाई भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। अगर आप इससे भागते हैं तो ये आपको कमज़ोर करेगा। अगर आप इसे अपनाते हैं तो यही आपको मजबूत बनाएगा। लेकिन यही अकेलापन एक सच्चाई भी है, क्योंकि ज़िंदगी की सबसे लंबी बातें हम खुद से करते हैं, सबसे मुश्किल फ़ैसले हम अकेले ही लेते हैं, और सबसे बड़ी लड़ाइयाँ भीड़ नहीं, इंसान खुद के साथ लड़ता है। और सच तो ये है कि अकेलापन हमें रोकने नहीं आता, हमें तैयार करने आता है, इसी उम्मीद के साथ कि आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बने। दोस्तों, आज की चर्चा बस यहीं तक। अब आइए सुनते हैं गीत जिसे हमने लिया है फिल्म तमाशा से, जिसमें आवाज़ें हैं अलका और अरिजीत सिंह की, गीतकार हैं इरशाद कामिल, और संगीत से सजाया है ए आर रहमान ने।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्रम एक ही फिल्म से में।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो कार्यक्रम एक ही फिल्म से में, और आज का फिल्मी सेगमेंट डेडिकेट है बॉलीवुड की एक सुपर फन रोमांटिक कॉमेडी को, फिल्म मुझसे शादी करोगी। हंसी, कंफ्यूजन और फुल एंटरटेनमेंट, सब कुछ एक ही फिल्म में। 2004 में रिलीज हुई यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल थी और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और अब शुरू करते हैं इस फिल्मी सफ़र को एक सुपरहिट गाने के साथ। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये एनर्जेटिक टाइटल ट्रैक।

दोस्तों, फिल्म में समीर का रोल निभाया है बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये रोल पहले गोविंदा को ऑफर हुआ था, लेकिन डेट मैच नहीं हुई और सलमान खान ने अपने स्टाइल से कैरेक्टर को मेमोरेबल बना दिया। फिल्म की ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी की वजह से सलमान खान की एंग्री यंग लवर स्टाइल ऑडियंस को बहुत पसंद आया। और अब वक्त हो गया है फिल्म के सबसे पॉपुलर पार्टी सॉन्ग का, तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक और गीत।

एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका क्रम एक ही फिल्म से में। अब बात करते हैं इस फिल्म के सबसे इंटरटेनिंग कैरेक्टर सनी की, जिसे प्ले किया है अक्षय कुमार ने। दोस्तों सनी का कैरेक्टर ओरिजिनली इतना फनी लिखा ही नहीं गया था, लेकिन अक्षय कुमार की मेहनत ने इस रोल को आइकॉनिक बना दिया। इसी फिल्म के लिए उन्हें कई अवार्ड शो में बेस्ट कॉमेडियन कैटेगरी में नॉमिनेशन भी मिला, और प्रियंका के लिए यह फिल्म उनके करियर के लिए बिग हिट बनी। और अब आइए दोस्तों सुनते हैं इस फिल्म का एक और सुपरहिट गीत।

इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कॉमेडी के किंग डेविड धवन ने और म्यूजिक दिया है साजिद वाजिद ने। इस फिल्म के गाने उस साल के सबसे ज़्यादा बजने वाले बॉलीवुड सॉन्ग में शामिल रहे। तो दोस्तों, अब प्रोग्राम के एंड पर सुनते हैं फिल्म का एक और सुपरहिट गीत जो आप सभी का मूड फ्रेश कर देगा।

आज हम बात कर रहे थे क्रम एक ही फिल्म से में फिल्म मुझसे शादी करोगी की। दोस्तों इसी के साथ क्रम एक ही फिल्म से में बस यहीं तक। दोस्तों वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का आज की यूवाणी से, तो इजाज़त दीजिए मुझे यानी आपकी दोस्त प्रियम को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवावाणी, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं समाचार, हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के 3रे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्ट्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार

0: स्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्र तक पूरी पहुंच थी। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने पर मजबूर विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। विचार बिंदु कार्यक्रम के पुनः प्रसारण में आइए सुनते हैं व्यवहारिकता विषय पर पौलोमी हरि का आलेख।
2: मनुष्य के जीवन में ज्ञान, बुद्धि और अनुभव का जितना महत्व है, उतना ही महत्व व्यवहारिकता का भी है। केवल पुस्तकीय ज्ञान जीवन को सफल नहीं बना सकता, बल्कि उस ज्ञान को सही समय और सही परिस्थिति में उपयोग करने की कला ही व्यवहारिकता कहलाती है। व्यवहारिकता व्यक्ति को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को समझने और उनसे उचित ढंग से निपटने की क्षमता प्रदान करती है। यह गुण मनुष्य को केवल समझदार ही नहीं बल्कि सफल और प्रिय भी बनाता है। व्यवहारिकता का अर्थ है परिस्थिति के अनुसार सोचने, समझने और कार्य करने की क्षमता। जीवन में अनेक बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां केवल भावनाओं या आदर्शों से काम नहीं चलता, वहां व्यावहारिक सोच की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक भावुक होकर निर्णय लेता है तो वह कई बार स्वयं को कठिनाइयों में डाल सकता है। वहीं एक व्यावहारिक व्यक्ति भावनाओं और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाकर चलता है। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। यह केवल सिद्धांतों की बातें करने वाला व्यक्ति पीछे रह जाता है, जबकि व्यावहारिक सोच रखने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है। नौकरी, व्यापार, शिक्षा, राजनीति या सामाजिक जीवन, हर क्षेत्र में व्यावहारिकता की आवश्यकता होती है। एक विद्यार्थी यदि केवल किताबें पढ़े लेकिन जीवन की वास्तविकताओं को ना समझे तो वह अपने ज्ञान का उचित उपयोग नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार एक व्यापारी को केवल ईमानदारी ही नहीं बल्कि ग्राहकों की आवश्यकता और बाजार की स्थिति को समझने की व्यावहारिक बुद्धि भी होनी चाहिए। व्यावहारिकता का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपने सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों को ही त्याग दे। सच्ची व्यावहारिकता वही है जिसमें आदर्श और वास्तविकता का संतुलन बना रहे। यदि कोई व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए व्यावहारिक बनने का प्रयास करे तो वह चतुर तो कहलाएगा परंतु सम्मानित नहीं होगा। इसलिए व्यावहारिकता के साथ संवेदनशीलता और नैतिकता भी होनी चाहिए। परिवार और समाज में व्यावहारिकता का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझते हुए परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करता है वह सबका प्रिय बन जाता है। कई बार रिश्तों को बचाने के लिए कठोर शब्दों के स्थान पर मधुर व्यवहार की आवश्यकता होती है। एक व्यावहारिक व्यक्ति जानता है कि कब क्या बोलना चाहिए और किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना उचित होगा,

0: यही गुण उसे समाज में सम्मान दिलाता है। व्यावहारिकता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति को समस्याओं से घबराने नहीं देता। व्यावहारिक व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर समाधान खोजने का प्रयास करता है। वह केवल कल्पनाओं में नहीं जीता बल्कि वास्तविकता को भी स्वीकार कर आगे बढ़ता है। ऐसे लोग जीवन में असफलताओं से टूटते नहीं बल्कि उनसे सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। आज के समय में युवा पीढ़ी के लिए व्यावहारिकता अत्यंत आवश्यक है। केवल बड़े सपने देखना पर्याप्त नहीं है बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए योजना, धैर्य और व्यावहारिक दृष्टिकोण भी चाहिए। यदि व्यक्ति को अपने लक्ष्य के साथ साथ परिस्थितियों का सही आकलन हो तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अंततः कहा जा सकता है कि व्यावहारिकता जीवन को संतुलित और सफल बनाने का महत्वपूर्ण गुण है। यह मनुष्य को वास्तविकता से जोड़ती है और उसे हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। आदर्शों के साथ व्यावहारिकता का मेल ही जीवन को सुंदर और सार्थक बनाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में व्यावहारिकता को अपनाना चाहिए ताकि वह स्वयं भी सुखी रहे और समाज के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सके।
1: अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। विषय था व्यावहारिकता। आलेख और वाचन स्वर पौलोमी हरि का था। आकाशवाणी और मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:10 हुए हैं। प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग स्मिता शर्मा के जय जोहार। अब आप सुनो आज के प्रमुख समाचार। वित्त विभाग हा शासकीय खर्चा में मितव्ययिता और वित्तीय अनुशासन निश्चित करे के उद्देश्य ले निर्देश जारी करे है। केंद्रीय गृह मंत्री काली ले 3 के दौरा में छत्तीसगढ़ आवत हैं। ये दौरान उमन हा मध्य क्षेत्रीय परिषद के 26वां बैठका के अध्यक्षता करें। और प्रदेश के जनजातीय गांव मन में अवैया 18-25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाहि। अब समाचार विस्तार ले। वित्त विभाग हा शासकीय खर्चा में अमित व्ययता और वित्तीय अनुशासन निश्चित करे के उद्देश्य ले निर्देश जारी करे है। एकर अनुसार सबो विभाग संभागीय आयुक्त कलेक्टर और विभागाध्यक्ष मनला सरकारी संसाधन के बने उपयोग और गैर जरूरी खर्चा ऊपर नियंत्रण राखे बर कहे गए है। वित्त विभाग के सचिव डॉक्टर रोहित यादव डहार ले जारी ये निर्देश ला तत्काल प्रभाव ले लागू कर देंगे है। ये निर्देश अवैया 30 सितंबर तक प्रभावी रही। निर्देश के अनुसार मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, निगम मंडल और आयोग के पदाधिकारी मन हा अपन काफिला मा सिर्फ जरूरी गाड़ी मन के ही उपयोग कर सकी। एकर अलावा सबो सरकारी गाड़ी मन ला इलेक्ट्रिक गाड़ी मा बदले के निर्देश दे गए है। पेट्रोल और डीजल में होवैया खर्चा ला कमती करे बर और एक एक दिशा में जाने वाला अधिकारी मन बर वाहन पुलिंग व्यवस्था लागू करे बर कहे गए है। उन्हें जरूरी काम के अलावा राज्य सरकार के खर्चा में शासकीय सेवक मन के विदेश यात्रा ऊपर पूरा रोक लगे रही। जरूरी होए मा मुख्यमंत्री के मंजूरी लेबर पड़ी। वर्चुअल और ऑनलाइन बैठका ला ज्यादा बढ़ावा दे जाही। उन्हें शासकीय भवन मा ऊर्जा की बर्बादी ला रोके बर जरूरी उपाय करे जाही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काली ले 19 मई तक छत्तीसगढ़ के 3 दौरा में आवत हैं। यह दौरान उमन हा 19 मई के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद के 26वां बैठका के अध्यक्षता करहीं। बैठका में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संग्रह, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होहीं। बैठका के तैयारी के बारे में मुख्यमंत्री श्री साय काली मंत्रालय में उच्च स्तरीय और समीक्षा बैठका करें और अधिकारी मन ले जरूरी निर्देश दें। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरा के बारे में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा हा पत्रकार मनला बताएं कि डायल 112 आपातकालीन सेवा के विस्तार करे जावत थे। एकर तहत केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह 18 मई के रायपुर में 400 नवा गाड़ी के शुरुआत करी। ये दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राजला एक नवा फॉरेंसिक लैब और जांच बर

0: 35 ठन सर्व सुविधा युक्त वाहन के सौगात घलो देही। श्री शर्मा हा बतन की बस्तर के नेतानार सुरक्षा केंद्र हा पहली ऐसन जगह है जिला जन सुविधा केंद्र के रूप में बदले जावत थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपन बस्तर प्रवास के दौरान ये केंद्र के उद्घाटन करही। ये केंद्र में अस्पताल, स्कूल, बैंक और आंगनबाड़ी जैसन जरूरी सुविधा दे जाही। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हा आज जगदलपुर में कार्यक्रम स्थल में जाके तैयारी के जायजा लीन और अधिकारी मनला जरूरी निर्देश दीन। सुशासन तिहार के तहत आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जांजगीर चांपा जिला के कोसला गांव पहुंची नौ चौपाल लगाइन। ए दौरान उमन हा लोगन ले सीधे चर्चा करीन और सरकार के आने आने योजना में हुए काम के जानकारी लीन। उमन हा ग्रामीण मन के समस्या सुनी नौ अधिकारी मनला उखर निपटारा करे के निर्देश दीन। ए मौका में मुख्यमंत्री हा कहिन कि सुशासन तिहार के उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना और योजना मन के फायदा आखिरी मनखे तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री आज कोरबा जिला के लेमरू गांव घलो पहुंची नौ प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही उनके नवा बने आवास के उद्घाटन करीन। ये दौरान उमनहा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हितग्राही मनला अंशदान के राशि के चेक घलो दिन। राज्य सरकार हा ग्रामीण महिला मनला ऊर्जा के क्षेत्र में सशक्त बनाए बर बछर 2026 ले 2031 तक के अवधि बर द्वीपती योजना ला मंजूरी दे दे हैं। ए योजना के तहत गांव मन में सोलर दीदी तैयार करे जाही जौन मनला सौर ऊर्जा के प्रणाली के स्थापना, संचालन और रख रखाव के प्रशिक्षण दे जाही। ए माइलोगिन मनहा सोलर मिल, कोल्ड स्टोरेज और सिंचाई जैसन ऊर्जा सुविधा के संचालन करही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मैं आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमारे फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़ो बाचे समाचार कोती। प्रदेश के जनजातीय गांव तक सरकारी योजना के फायदा पहुंचाए बर अवैया 18 ले 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाए जाही। ये अभियान प्रदेश के 8,000 ले ज्यादा गांव मन में चलही। आदिम जाति विकास विभाग के ये अभियान में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ले जुड़े गांव मनला शामिल करेगी है। रायपुर जिला ला छोड़ के प्रदेश के सबो जिला में स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पोषण और पेयजल योजना के फायदा पात्र लोगन तक पहुंचाए जाही। अधिकारी मन हा गांव गांव जाके जन सुनवाई करही और आदि सेवा केंद्र में मामला के निपटारा होही। ये दौरान सिकल सेल और टीबी जांच बर स्वास्थ्य शिविर घलो लगाए जाही। IPS अधिकारी अरुण देव गौतम ला छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक बनाए गए है। गृह विभाग के प्रमुख सचिव निहारिका सिंहा ये संबंध में आदेश जारी कर दिन है। राज्य सरकार हा करीब 1.5 साल पहले ओमनला प्रभारी DGP के जिम्मेदारी दे रही। IPS अरुण देव गौतम ला संयुक्त राष्ट्र पदक के अलावा सराहनीय सेवा बर भारतीय पुलिस पदक और विशिष्ट सेवा बर राष्ट्रपति पुलिस पदक ले सम्मानित करे जा चुके हैं। ओमनहा छत्तीसगढ़ कैडर के 1992 बैच के IPS अधिकारी हावे। राज्य शासन दहारले स्पष्ट करेगे है कि प्रदेश में ईंधन के पर्याप्त स्टॉक हवे और पेट्रोल डीजल के वितरण में सरकार दहारले सरलग निगरानी राखे जावत है। यही बीच रायपुर कलेक्टर हा पेट्रोल के ब्लैक मार्केटिंग ला रोके बर एक ठन हेल्पलाइन नंबर जारी करे हैं। उन्हें शक्ति जिला में कलेक्टर हा पेट्रोल डीजल के बिक्री के बारे में सख्त आदेश जारी करे हैं। अब पेट्रोल और डीजल के बिक्री सिर्फ संबंधित वाहन में ही करे जाही। कलेक्टर के आदेश ला नहीं माने में पेट्रोल पंप संचालक मन ऊपर कार्रवाई करे के चेतावनी देगी हवे। रायपुर में सफाई व्यवस्था देखैया कंपनी के कर्मचारी मन के आंदोलन आज तीसरा दिन घलो जारी रहिस। हड़ताली कर्मचारी मन हा आज दलदल सिवनी में उग्र प्रदर्शन करिन। ये दौरान पुलिस के जवान और हड़ताली कर्मचारी मन के बीच झूमा झटकी घलो होइस। कंपनी के आरोप है कि नगर निगम

0: डहरले करीब 78 करोड़ रुपया के भुगतान नहीं करे गए हे। ये हड़ताल में कचरा गाड़ी चलैया चालक मन घलो शामिल हैं, जौन मन हा वेतन बढ़ाए के और सही बेरा में भुगतान करे के मांग ला लेके प्रदर्शन करत हैं। ये कर्मचारी मन के हड़ताल में जाएले शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के व्यवस्था में घलो बाधा पड़े है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर डहरले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संझा 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ये कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी के सबो केंद्र रिले करही। ए बखत के अंक में खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला के संबंध में जानकारी दे जाही। अब पेश है मौसम के हाल। प्रदेश में तेज गर्मी के संगे संग आंधी और हल्का वर्षा के दौर शुरू हो गए है। मौसम विभाग के अनुसार अवैया कुछ एक दिन तक प्रदेश में धूप और छांव की स्थिति रही है। अवैया 24 घंटा के दौरान एक दो जगह में हल्का वर्षा होए के या गरज चमक के संग छींटा पड़े के संभावना है। वहीं कुछ एक जगह में अंधड़ चले के और आकाशीय बिजली गिरे के आसार है। यह बीच मानसून आज अंडमान सागर निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण पूर्वी बंगाल के खाड़ी में प्रवेश कर चुके हैं। एकर 26 मई तक केरल पहुंचे के उम्मीद है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। वित्त विभाग हा शासकीय खर्चा में मितव्ययिता और वित्तीय अनुशासन निश्चित करे के उद्देश्य ले निर्देश जारी करे है। केंद्रीय गृह मंत्री काली ले 3 दिन के दौरा में छत्तीसगढ़ आवत हैं। ये दौरान उमनहा मध्य क्षेत्रीय परिषद के 26वां बैठका के अध्यक्षता करहीं और प्रदेश के जनजातीय गांव मन में अवैया 18-25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाही। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम गोधूली। कार्यक्रम के शुरुआत में सुनिए हीरा चंद्र पटेल और साथियों के गाए कुछ भोजपुरी लोक गीत। कार्यक्रम के शुरुआत में सुनते हैं इनसे ये खेमता गीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम गोधूली। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए पेश है चंद फिल्मी नगमे फिल्म संगीत के कार्यक्रम माधुरी में। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में बॉबी फिल्म से गीत। आनंद बख्शी की रचना है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

बॉबी फिल्म से गीत अभी आप शैलेंद्र की आवाज़ में सुन रहे थे। अगला गीत अब सुनते हैं पहचान फिल्म से, आवाज़ें हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर की। गीत लिखा है नीरज ने, संगीत शंकर जयकिशन का है।

पहचान फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं मजबूर फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में। आनंद बख्शी की रचना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:45 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
7: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
7: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
7: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
5: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य शासन ने सरकारी खर्चों में कटौती के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा पर लगा प्रतिबंध। मंत्रियों के काफिलों की गाड़ियों में की जाएगी कमी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से 3 दिन के छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। जगदलपुर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के साथ ही अनेक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रदेश के जनजाति गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 18 से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाएगा। और राजधानी रायपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की

0: वजह से सफाई व्यवस्था हुई प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। वित्त विभाग ने शासकीय खर्चों में मितव्ययता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों तथा विभाग अध्यक्षों को सरकारी संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव द्वारा जारी इन निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ये निर्देश आगामी 30 सितम्बर तक प्रभावी रहेंगे। निर्देशों के अनुसार मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, निगम, मंडल और आयोगों के पदाधिकारी के काफिले में केवल जरूरी वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा सभी सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वाहन पूलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर राज्य शासन के खर्च पर शासकीय सेवकों की विदेश यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक होने पर मुख्यमंत्री की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। भौतिक बैठकों के स्थान पर वर्चुअल और ऑनलाइन बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं शासकीय भवनों में ऊर्जा की बर्बादी रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से 19 मई तक छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे 19 मई को बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। बैठक की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री श्री साय ने कल मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि डायल 112 आपातकालीन सेवा का विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत केंद्रीय मंत्री श्री शाह 18 मई को रायपुर में 400 नए वाहनों का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राज्य को एक नई फॉरेंसिक लैब और जांच के लिए 33 सर्व सुविधा युक्त वाहनों की सौगात भी देंगे।
1: 112 की सुविधा थी वो अब तक 16 जिलों में लागू थी और इसको पूरे प्रदेश में लागू किया जाना था। वो पूरे प्रदेश में 18 की सुबह प्रारंभ हो जाएगा। 400 गाड़ियां पूरे प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर पहुंचेंगी। हमारे ही पुलिस लाइन से इसको माननीय अमित शाह जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के घर कमलों से प्रारंभ कर दिया जाएगा।
0: श्री शर्मा ने बताया कि बस्तर का नेतानार सुरक्षा केंद्र पहला ऐसा सुरक्षा शिविर होगा जिसे जन सुविधा केंद्र के रूप में बदला जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने बस्तर प्रवास के दौरान इस केंद्र का उद्घाटन करेंगे।
1: हमारे जो सुरक्षा के कैंप हैं, उन कैंपों को अब सुविधा के केंद्रों में बदल दिया जाए। नेतानार वो पहला स्थान है जहां केंद्रीय गृह मंत्री जी स्वयं उपस्थित होकर के सुरक्षा के कैंप को सुविधा के केंद्र में बदलने जा रहे हैं। हमारे सुरक्षा के कैंप जितने हैं वो सारे सुरक्षा के कैंप आने वाले समय में पंचायत के भवन, स्कूल के भवन, आंगनबाड़ी के भवन, चिकित्सालय हो सकते हैं।
0: उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह के बस्तर प्रवास को लेकर आज जगदलपुर में कार्यक्रम स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। ईंधन की वितरण व्यवस्था पर प्रशासन लगातार निगरानी रख रहा है। इस बीच रायपुर कलेक्टर ने पेट्रोल की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वहीं सक्ती जिले में कलेक्टर ने डिब्बा और बोतलों में पेट्रोल डीजल की बिक्री पर रोक लगा दी है। सुशासन तिहार के तहत आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जांजगीर चांपा जिले के कोसला गांव पहुंचे और चौपाल लगाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोसला गांव के महतारी सदन और हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण की घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।
2: सुशासन तिहार का उद्देश्य यही है कि पूरी सरकार लोगों के बीच में जा रही है। हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों के बीच में जा रहे हैं और क्लस्टर बनाकर इस तरह से समाधान शिविर का भी आयोजन हो रहा है और उसमें जनता की जो समस्याएं हैं उसको आवेदन पत्र के रूप में ले रहे हैं और जो भी तत्काल में समाधान हो सकता है तत्काल समाधान कर रहे हैं। बाकी को एक महीना के अंदर में समाधान करेंगे और इससे बहुत लाभ भी हो रहा है।
0: मुख्यमंत्री आज कोरबा जिले के लेमरू गांव भी पहुंचे और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही के नवनिर्मित आवास का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हितग्राहियों को अंशदान की राशि का चेक भी प्रदान किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आगामी 18 से

25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान प्रदेश के 8000 से अधिक गांवों में संचालित होगा। आदिम जाति विकास विभाग के इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़े गांवों को शामिल किया गया है। रायपुर जिले को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में स्वास्थ्य शिक्षा सामाजिक सुरक्षा पोषण और पेयजल योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अधिकारी गांवों में जन सुनवाई करेंगे और आदि सेवा केंद्रों में शिकायतों का निराकरण होगा। इस दौरान सिकल सेल और टीबी जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे। राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को ऊर्जा क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2026 से 2031 तक की अवधि के लिए द्वीप्ती योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत गांवों में सोलर दीदी तैयार की जाएंगी, जिन्हें सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये महिलाएं सोलर मिल कोल्ड स्टोरेज और सिंचाई जैसी ऊर्जा सुविधाओं का संचालन करेंगी। योजना में क्लस्टर लेवल फेडरेशन को महिला ऊर्जा सहकारी समितियों के रूप में विकसित किया जाएगा। महासमुंद और बस्तर के कुछ समूह पहले ही विक्रेता के रूप में पंजीकृत हो चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बताया है। रायपुर में सफाई व्यवस्था संभाल रही कंपनी के कर्मचारियों का आंदोलन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। हड़ताली कर्मचारियों ने आज दलदल सीवनी में उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के जवानों और हड़ताली कर्मचारियों के बीच झूमाझटकी भी हुई। कंपनी का आरोप है कि नगर निगम द्वारा करीब 78 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया है। इस हड़ताल में कचरा गाड़ी चलाने वाले चालक भी शामिल हैं, जो वेतन बढ़ाने और समय पर भुगतान करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था बाधित हुई है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले की विशेष अदालत ने वाड्रफ नगर के विकासखंड शिक्षा अधिकारी को रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उन पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। ये फैसला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सुनाया गया है। आरोपी को एंटी करप्शन ब्यूरो की अंबिकापुर शाखा ने 12,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने के आसार हैं। इस बीच मानसून आज अंडमान सागर, निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर चुका है। इसके 26 मई तक केरल पहुंचने की उम्मीद है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमन डेका ने कबीरधाम प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में आम का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से अधिक पौधरोपण करने और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की। आईपीएस अधिकारी अरुण देव गौतम को छत्तीसगढ़ का पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। गृह विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने करीब 1.5 साल पहले उन्हें प्रभारी डीजीपी की जिम्मेदारी दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने जांजगीर चांपा जिले के बमनीडीह नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए रमेश कुमार डटसेना और सूरजपुर जिले की शिवनंदनपुर नगर पंचायत के लिए रितेश जायसवाल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और राजनांदगांव जिले के माड़ीतराई गांव में प्रशासन ने छापामार कार्रवाई कर करीब 2,300 बोरी खाद जब्त किया है। अधिकारियों ने खाद गोदाम को सील कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य शासन ने सरकारी खर्चों में कटौती के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा पर लगा प्रतिबंध। मंत्रियों के काफिलों की गाड़ियों में की जाएगी कमी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से 3 दिन के छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। जगदलपुर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के साथ ही अनेक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रदेश के जनजाति गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 18 से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाएगा। और राजधानी रायपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से सफाई व्यवस्था हुई प्रभावित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं, ये वक्त होता है श्रोताओं कार्यक्रम विवरण का। तो आइए एक नज़र डालते हैं कल दिन भर के कार्यक्रम और आज की सभा के शेष कार्यक्रमों पर। सबसे पहले एक नज़र डालिए आज के शेष कार्यक्रमों पर। आज रात 9:30 पर हम अखिल भारतीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आकाशवाणी दिल्ली से ही रात 10 बजे हम रिले करेंगे संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में पंडित कैवल्य कुमार का ख्याल गायन। हमारे केंद्र से अब से बस कुछ देर बाद आप सुनेंगे चंद गजलें चित्रपट रजनीगंधा कार्यक्रम के अंतर्गत। रात 8 बजे सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश हम पेश करेंगे। 7:20 पर ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल में सामयिक चर्चा में आप सुनिएगा अंतर्राष्ट्रीय शांतिपूर्ण सह अस्तित्व दिवस पर शांति सह अस्तित्व और संवाद से वैश्विक स्थिरता का निर्माण विषय पर चर्चा। 7:30 पर किसानवाणी में आज का विषय है पशुओं में दूध उत्पादन पर गर्मी का असर व समाधान विषय पर। साथ ही सुनेंगे प्रधान धन धान्य कृषि योजना पर चर्चा और लोक संगीत मंडी भाव मौसम की जानकारी। ये तो थे हमारे सांध्यकालीन सभा के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर डालते हैं कल दिन भर के कार्यक्रमों पर।

कल रात 9:30 पर आप सुनेंगे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10 आप सुनिएगा अखिल भारतीय रविवासरीय सभा में विवेक सुनार से बांसुरी वादन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। हमारे केंद्र से कल सुबह 7:10 पर भारतीय प्रसारण की महत्वपूर्ण उपलब्धि के 90 वर्ष के उपलक्ष्य पर विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी में आकाशवाणी के पूर्व कार्यक्रम अधिशासी श्री समीर शुक्ल से दीपक हटवार की भेंटवार्ता आप सुनेंगे। शाम 6:05 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम जिले की चिट्ठी और शाम 6:30 पर विधिक सहायता पर केंद्रित कार्यक्रम कानून की बात में आप सुनिएगा जेलों में निरुद्ध विचाराधीन एवं दंडित बंदियों के विधिक अधिकार विषय पर असिस्टेंट लीगल एवं डिफेंस काउंसिल रायगढ़ के अधिवक्ता श्री सौरभ शेंद्रे से की गई बातचीत और ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। हमारे केंद्र से सुबह 6:35 पर रामचरितमानस का गायन आप सुनेगा सुरेश वडकर से। कुछ लोक गीत आप सुनेंगे गुंजे जंगल कार्यक्रम में सुबह 7 और गोधूली कार्यक्रम में 6:20 पर। सुबह 7:30 पर जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्मी नगमे आप सुनिएगा कार्यक्रम नमस्कार

सरगुजा के तहत। लोक कथा श्रृंखला किस्सा कहने के अंतर्गत सुबह 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे सरगुजिया कहानी, अनबूझ कहानी। संकलन एवं लेखन होगा श्री राम प्यारे रसिक का, संयोजक होंगे नागेंद्र दुबे और प्रस्तुति होगी शोभनाथ साहू की। सुबह 8:45 पर सामुदायिक गीत के प्रशिक्षण पाठ में असमिया गीत का प्रशिक्षण आप सुनिएगा। हर रोज की तरह बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन का वक्त रहेगा सुबह 9:00। कुछ और फिल्म संगीत हम आपकी नज़र करेंगे 10:00 कार्यक्रम नए तराने में। फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी पसंद के तहत 11:05 पर और 1:40 पर ईमेल की गूंज कार्यक्रम के अंतर्गत। रात 8:00 सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश के अंतर्गत। दोपहर 12:00 मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग हम पेश करेंगे। दिन में 1:10 पर बहनों के कार्यक्रम घर आंगन में बहनें सुनेंगी उच्च रक्तचाप दिवस पर बातचीत। विश्व दूर संचार दिवस और सूचना संचार दिवस पर भी करेंगी चर्चा और होगा क्रम फोन इन फिल्म संगीत का, बात करें गीत सुने। 2:30 पर गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा हम लेकर आएंगे और 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण होगा। 5:30 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी और 7:20 पर ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण किया जाएगा। ये तो थे कल दिन भर के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। लीजिए सुनिए चंद गजलें सुगम संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा के अंतर्गत।

अहमद फैज़ की ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में। अब सुनते हैं बशीर बद्र की ये रचना चंदन दास की आवाज़ में।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।

मेहदी हसन की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गज़ल, और इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं, लीजिए सुनिए ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल।

0: किसानवाड़ी सुनैया हमर जम्मो किसान भाई उनकर घर कर लोग उनकर संगता गोटा गांव घर कर बहुत बहुत स्वागत और धर्म भैया कर राम राम
1: और बिरजू भैया के भी राम राम। और किसान भाई उम्मीद है कि भाई रोरे मन बढ़िया हो, लेकिन धरु भैया मैं देखता हूँ कि भाई गर्रा घाटा और पानी और देखा था कि बड़ा परेशान कर रहा था।
0: हाँ अब ठीक ना कहब कि दोपहर हो ही और जब हम लग किसान भाई मन से मुलाकात कर बेरा हुई वो घनी तो चलते छबे रोज कर बात होगी से ओकर कारण जो है कटिक गर्मी से राहत भी भेटायल
1: भेटायल। लेकिन जो किसान भाई मन के जो फसल मान लीजिए खलिहान में है या फिर जो कह ली कि जो सब्जी उब्जी लगाई है तो ओके नुकसान पहुंच सकत है, लेकिन किसान भाई मन मौसम कर हाल ला जरूर जाने। और देखिए हमन रेडियो से बता भी रहता कि भाई मौसम के का हाल रही, तो मौसम के हिसाब से चलना जरूरी है और मौसम के हिसाब से पहले से भी तैयारी करना बड़ा जरूरी है। कहें कि अब गर्मी का मौसम है और ऐसे में देखिए कम दबाव का क्षेत्र बन जाते, एक कस में मौसम कभी भी बदल सकत है। तो भाई प्रकृति तो अपन नियत रूप से और रोज चलत रही, लेकिन हमला भी वो सावधानी बरतना जरूरी है।
0: बिल्कुल भाई का है मौसम अपन हिसाब कर आही जाही ओ में तो हमार बस नहीं चल सके, बाकी का है कि हमला जो सावधानी रखना चाहिए खेती पाती कर विषय में। प्रकृति कभी भी अपन रंग जो है अभी देखब ना कि जो है असों में तो कहता हूँ कि जल्दी मानसून हर आही देखा थी रोज कर जो है बदक के आ जाता है और अभी तो जो उतले चले ना अनुमान निकोबार ले केरला आते हुए वो ये समय लगत है मुके कि भाए कहम ना 10 जून कथे ना ओकर ले पहले ही लमर ले
1: कि हां तो लगत है कि भाई डेली डेली पानी देता है रोजे रोज नहीं।
0: हाँ।
1: तो कस में तो लगत है कि भाई भाए लमरी, लेकिन भाई अब देखी कब आता है, जब आई जाए तब कबो, लेकिन पहले से तैयारी रखना बड़ा जरूरी है। और धरो भैया देखिए भाई हमन गोट बात करते हैं तो कोनो दिन विशेष दिन रहते तो कर हमन चर्चा भी करथन
0: जरूर, जरूर।
1: और देखिए आज कर जो विशेष दिन है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांतिपूर्ण सह अस्तित्व दिवस। तो कहकर मतलब यह है कि भाई दुनिया में या कहली गांवे कर बात कह ली या पड़ोसी बनकर बात कह ली या घरेज कर बात कह ली नहीं, कोई भी काम बनते भाई एक दूसरे कर सहयोग से,
0: बहुत बढ़िया बात कहें,
1: बातचीत से। मान ली भाई घरे में कुछ हो जाते अनबन नहीं, तो भाई देखिए अब बातचीत बंद कर देवो तो हर मसला हर तो नहीं सुलझे, लेकिन जब बातचीत होत रही ना तो भाई देखी तोहर का समस्या है तोहके का तकलीफ है भाई मुके का समस्या है मुके का तकलीफ है,
0: ठीक
1: है। ये बात जी जब होल तो समस्या तुरते निपट जाते, लेकिन देखिए मन में तनिक रह के कि नहीं नी गोठियाओं

0: और नहीं मिले जाऊं है ना, न अपने समस्या ले नहीं बताऊं। मैं गांव कर बात करत हूं, चाहे आपस तो मतलब दोस्त मन के भी बात करत हूं, तो देखिए ये तरह के जो है बात जो है दूरी पैदा करते हैं, जब दूरी पैदा करते हैं तो कई तरह के समस्या उत्पन्न होते हैं।
1: समस्या है लौकर में घटे घटा हुए, कहीं घटा है, कभी नफा नहीं,
0: नहीं न, नफा कबू नहीं।
1: हाँ, ये कहा है कि 16 मई जो आज है ना पूरा दुनिया भर में मनाल जाए, एकर यही जो रौरे बताते हैं ना, एकर उद्देश्य ही ये हवे कि जो विभिन्न जो है ना अलग अलग देश मन का जो है संस्कृति और धर्म कर लोगों के बीच में आपसी समझ रहे, सद्भाव रहे, शांति रहे और एक दूसरे का सहयोग रहे।
0: बिल्कुल, और शांति रही तबे जो है मन आगू बढ़बो, काबर की अशांति में देखी मन हर भटक जाते नहीं।
1: बिल्कुल,
0: और देखिए मन में आशंका भी रहते, मन में डर भी आ जाते और कई तरह कर बात आ जाते, तो ओकर से बढ़िया है कि भाई दुनिया के साथ मिल के और शांति के साथ विकास करी, काबर की भाई विकास खातिर सह अस्तित्व और संवाद बड़ा जरूरी है।
1: बिल्कुल, अस्तित्व तो कर बात आइसना कि तो भाई हमन ला अस्तित्व तो अपन बनाए रखना है, तो आपसी सामंजस्य और शांतिपूर्ण जो सद्भावना कर बात है ना, इला तो ध्यान रखना जरूरी हवे। वैश्विक एकता कर हमन बात करती, ये भी जरूरी हवे।
0: वसुधैव कुटुंबकम कर,
1: एकदम बढ़िया कहन कि सब मतभेद ला भुलाए के ना शांति और एकजुटता कर हमन ला प्रयास करना चाहिए, और का है कि यही जो है हमारा संयुक्त राष्ट्र कर भी पहल हवे। फिर एकर में का है कि अहिंसा ला भी बढ़ावा मिलन।
0: बिल्कुल,
1: तो ध्यान करें भाई, अंतर्राष्ट्रीय शांतिपूर्ण सह अस्तित्व दिवस का महत्व ही है, तभी रही हमर देश। तो देखिए भाई, विभिन्न कहम ना कि जाति धर्म के लोग रहते हैं और एकता के साथ रहते हैं, अपन जो है शांति भाईचारा के साथ रहते हैं, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय शांतिपूर्ण सह अस्तित्व दिवस कर जो है ना बात हमर भारत देश कर तो कह कि एकदम उदाहरण हवे।
0: बिल्कुल, और देखिए शांति रही तो विकास कर, देखी नदी बधी नदी जो है बही, और देखी और जब जब नदी बही तो हमने भी बात कहा था कि भाई दूध और घी करते नदी बहते कबो कबो बात हमन कहथन, तो कहकर मत मोर मतलब है कि भाई देखिए विकास खातिर जरूरी है कि भाई शांति हो, लेकिन जब शांति काल में जो हमारे किसान भाई हैं उमन दूध कर धारा बहाय देते नहीं।
1: बिल्कुल, तो भाई राष्ट्रीय डेयरी योजना भी एकरे खातिर बनल है कि हमन के जो है ना एक दूध कर उत्पादन बढ़ाना हवे, पशु मन कर नस्ल ला सुधारना है, और हमर ग्रामीण क्षेत्र में किसान मन ला स्वरोजगार मिले और जो है आर्थिक रूप से सशक्त बने, खेती के अलावा जो है यू व्यवसाय से जुड़े रहें तो काहे अपन आयला जो है ना दुगुना तिगुना बढ़ा सकता है।
0: बिल्कुल, और ये देखिए जो राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम है धरुम भी है, तो भाई देखिए जैसे बताएन भी कि जो दूध उत्पादन है गुणवत्ता में सुधार करे पर खातिर ने वो चलाल गई से, और एकर अलावा जो प्रसंस्करण कर जो संसाधन है ओके भी ब्लॉक स्तर तक गांव स्तर तक ले जाए करे में बात आ है ये योजना में, कि जो हमारे किसान भाई जो गाँव में दुग्ध उत्पादन करत हैं, एक तो मन के कह ली कि भाई जो दूसर चीज बनाता है दूध से ओकर कीमत बढ़े, एकर अलावा दूध जो है ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहे, और जो है एकर से का होई कि भाई किसान मन के तो आय बढ़बे कर ही, साथ में जो वो जो संगठन है मान ली कि भाई कोई भी संगठन है, चाहे स्व सहायता समूह है, चाहे मान ली कई तरह का दुग्ध उत्पादन समूह है, तो का होते कि भाई ईमन के सशक्त करे खातिर जरूरी है कि भाई जो कली जो जमीन पर जो संसाधन है ओके होना बड़ा जरूरी है। अब जैसे दूध प्रसंस्करण कर यंत्र कर बात शीतक यंत्र कर बात करी,
1: बिल्कुल
0: देखा जहाँ संग्रहण करत हैं।
1: बिरजू भैया, राष्ट्रीय जो है ये हमारे डेयरी विकास कार्यक्रम कर जो है ना एकर उद्देश्य है कि जो है दूध कर क्षेत्र में या पशुपालन कर क्षेत्र में ग्रामीण मल्ला बढ़ाना, मतलब पशुपालक ला बढ़ाना और जानकारी देना, और संगे संगे देखी कि जैसे नस्ल कर सुधार कर बात आएल, तो उन्नत नस्ल कर जो है ना दुधारू पशु जब हमन ला भेटायल तो देखब कि अब जो पुराना हमार जो गरु रही ना या भैंस मन रही ना ओमन ओते दूध उत्पादन नहीं दे सके, जो जो अभी उन्नत नस्ल कर जो आता है ना भैंस मन है गरु मन हमें, तो ए बार जो है इनके जानकारी भी भेटवाना किसान भाई मल्ला, और संगे संगे का है कि समय समय पर ना इनकर जो है बलाय के इनके जो है प्रशिक्षित भी करते हैं कि भाई एकर माध्यम से जो है रौरे मन जानकारी ली और आगे बढ़ी, वित्तीय सहायता भी भेटाएल

0: कि पैसा ढेबुआ कर, जैसे डेयरी फार्म अगर जैसे खोलत ही ना तो उनके जो है लोन भी भेटाएल जिला हम ऋण कथी और ओकर में छूट भी देते हैं।
1: देखिए डेयरी फार्म खोले खातिर लोन कर व्यवस्था है ये है, और देखिए ये जो है पशुपालन और संरचना विकास निधि से जो है बैंक से सस्ता लोन भेटा थे। तो किसान भाई जो भी डेयरी व्यवसाय खोलना चाहते हैं या कोई भी युवा है डेयरी व्यवसाय खोलना चाहते हैं तो जो है विभाग से संपर्क कर सकते हैं और लोन लेके, बड़ा सस्ता लोन है, दूसर कस नहीं आए हैं,
0: हाँ
1: तो अपन जो है डेयरी खोल सकते हैं, ऊपर पर आवेदन कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, देखब ना हमारे यहाँ का जो महिला वर्ग है ना उनके जो है ज़्यादा जो है छूट भी प्रावधान हवे, तो आगे आएँ। और भाई पशुपालक तो है ये, हमें जो नवा नवा पशुपालन करना चाहते हैं ओमन भी एकर माध्यम से आगे आएँ। बिरजू भैया, बेरा हर कहता है कि किसान वाणी कति चलल जाए,
1: तो चलल जाए।

0: एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे
1: कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: किसानवाड़ी सुनैया हमारे जम्मू किसान भाई उनकर घर कर लोग उनकर संगता गोटा गांव घर कर बहुत बहुत स्वागत करत थी धर्मू भैया और बिरजू भैया।
3: हाँ राम राम, स्वागत है धर्मू भैया राउर का भी और जो हमारे किसान भाई सुनता है उनकर भी स्वागत है। धर्म भैया देखिए आजकल जो हमारे किसानवाड़ी कार्यक्रम है इसमें देखिए हम पशु मन में जो दुग्ध उत्पादन है उकर बारे में बातचीत करबो और प्रधानमंत्री धन धान्य योजना है उकर बारे में भी बात करबो और हमर कुछ कहले कि किसान से नकदी फसल के अंतर्गत जो गुट बात होते ओला सुनवाबो और साथ में किसान भाई मन कर जोग लिखी भी हुई और मौसम के जानकारी और मंडी भाव तो होबेच करी
2: संगे संगीत संगीत तो होबेच करी।
3: हाँ तो देखिए मैं कहते रहें कि भाई ये कार्यक्रम के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं हर क्षेत्र में आगे बढ़ें चाहे वो डेयरी कर बात हो चाहे फसल उत्पादन के बात हो। तो मैं कहता हूँ कि देखिए अभी हम कुछ याद भी रहे धरूम भैया राउर से कि देखिए अभी जो गर्मी का मौसम चलता है नहीं ये गर्मी का मौसम में देखिए जैसे हवन प्रभावित हुआ था ना उसने कह ली कि भाई पशु मन भी प्रभावित होते हैं।
2: बिल्कुल भाई,
3: अब जब प्रभावित होते हैं तो देख ली जो हमन के कार्य क्षमता पे असर पड़ते
2: हाँ।
3: उसने उमन के दुग्ध उत्पादन पे असर पड़ते हैं।
2: बिल्कुल,
3: तो कहकर मौसम मतलब है कि मौसम जो है आदमी की कार्य क्षमता या पशु के दुग्ध उत्पादन या कार्य क्षमता पे असर डालते हैं।
2: बिल्कुल ठीक कहें, देखिए ना कि गर्मी में देखिए तापमान जैसे जैसे बढ़ेल ना तो हमने को कथी हीट स्ट्रेस
3: तनाव
2: ओकर कारण जो है ना पशु कर जो है भूख कम हो जाए और शरीर में पानी कर कमी हो जाए तो जैसे कहें ना कि दूध उत्पादन में भी कमी होल सीधा असर पड़े लोकर और दूध कर मात्रा में ना 10-40% तक कमी देखल गई से। तो देखिए गर्मी कर प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा पड़ेल हमला ध्यान करना पड़ी कि शरीर कर तापमान जो है ना पशु के झीन बढ़ पाए ओकर जो है पाचन क्षमता ला भी हमला प्रभावित होल तो ओके भी हमला जो है संतुलित मात्रा में भोजन दे के हमला ओकर से निजात पाना है छुटकारा पाना है।
3: और एक अलावा धरू भैया देखिए अभी जैसे हम गर्मी का मौसम है तो पशु के जो रहे कर जगह है ओकर ऊपर भी ध्यान देकर जरूरत है।
2: एकदम एकदम,
3: कहे कि भाई देखिए जैसे गर्मी हमन सहत हन उसने भाई यदि उमन के गर्मी लगी तो बीमार भी पड़ सकते हैं और जो दूध उत्पादन के मन बात करते हैं वो कम हो सकते हैं। तो बड़ा जरूरी है कि गाय या भैंस के जो दुग्ध उत्पादन कराते हैं कि ऐसा जगह रखें जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी न लगे। और देखिए जैसे यदि खुला है तो भाई अभी मान ली कि भी बोरा वोरा टांग दें गर्मी में तनियों में पानी उन्हें छिड़क दें और चारों तरफ से जो है बंद रखें ताकि लू से बचाव हो सके।
2: बिल्कुल,
3: और एक जैसे मान लीजिए गांव में या हमारे जो किसान भाई हैं यदि पशु के चराना भी जरूरी है अभी तो एकदम सुबह जो है 5 बजे खोल दें और 8-9 बजे तक घर पहुँचा दें या फिर सेकेंड दूसरा टाइम जो बोलते हैं 4-5 बजे फिर खोल लें और फिर जो है 5-6 बजे तक 7 बजे तक फिर घरे पहुंचा दें। तो कहकर मतलब धूप से बचाना बड़ा जरूरी है।
2: बिल्कुल,
3: और धूप से बचाव के साथ साथ देखिए स्वच्छ पानी भी बड़ा जरूरी है कि भाई देखिए गर्मी में तनिक पानी का कमी हो जाते और पानी का कमी शरीर में होगी तब तो देख ली समस्या हो जाते। और यदि हमारे आसपास डबरी ओबरी में देखिए पानी

0: अगर कमी हो जाए तो उतना साफ पानी नहीं भेटाए तो ओकर से भी जो दूध उत्पादन पे असर पड़ते हैं। तो बड़ा जरूरी है कि जो हमारे पशु हैं उनके साफ पानी कर व्यवस्था करल जाए ताकि उनके कोई रोग भी न लगे और जो है गर्मी में उनका जो तापमान है ठीक बनल रहे।
1: पानी हर ठंडा भी होना चाहिए और ये ध्यान करें कि जो पानी जो बर्तन जिला नाद कथी ना रखते हैं तो वह हर छाया में रहे, प्रत्यक्ष रूप से गर्मी जो है मत पड़े। और अगर व्यवस्था है तो पशु उल्ला जो है दो तीन बार कम से कम का है दिन में फव्वारा मारें, पानी डालें, नहुआएं उला, है ना?
0: बिल्कुल।

0: जो है मत पड़े। और अगर व्यवस्था है तो पशु बुल्ला जो है दो तीन बार कम से कम का है दिन में फव्वारा मारे, पानी डाले, नहुआएं वाला है ना,
1: बिल्कुल।
0: और अगर और सुविधा है तो हवा पर का है कि बड़खा पंखा या कर व्यवस्था कर दें ताकि जो बढ़िया पशु मुल्ला ठंडा रहे,
1: तापमान ठीक रहे।
0: बिल्कुल संतुलित आहार देखी उप जरूरी हवे। पशु मुल्ला रात के या सुबह सुबह जो है ना ठंडा और मतलब पौष्टिक आहार देना है, ओकर में दाना और हरा चारा दोनों चीज रहे ताकि आसानी से पच सके। और चारा में जो है ना नमक के संगे संगे हमारा मिनरल मिक्सचर भी मिलाना चाहिए। ये समय गर्मी कर जो है छुटकारा पाए पर। एक बार और देखब कि भैंस मल्ला देखी कि एक रंग के कारण कैया रंग रहे तो ढेर गर्मी लागे लो मल्ला, तो ला कहे कि तालाब अगर है आसपास वैसे तालाब तो रहबे करेल, तो कहे तालाब या फिर पानी कर बड़ा टंकी रहे तो मैं बढ़िया भीतर ढुक के नहाए अच्छा लोटे
1: तो भैंस मल्ला छोड़ दो। तो कहकर मतलब है कि गर्मी में जो खान पान के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है, जहाँ रहते हैं पशु मन वहाँ के भी ध्यान रखना जरूरी है। और देखिए यदि कोई अभी मान ली कि भाई कोनो लक्षण दिखत है कि अभी गर्मी कर मौसम में मान ली कि पशु खात नहीं है या फिर दूध कम कर दे से, तो देखिए एक तुरंत ध्यान देना पड़ी।
0: हाँ,
1: खबर कि भाई ऐसे में राहुल कर जो दुग्ध उत्पादन है या फिर जो रोरे जहाँ भी दूध देहत हन वहाँ पे राहुल कर व्यवसाय पे असर पड़ सकत है, तो बड़ा जरूरी है कि लगातार या सतत जो है दुग्ध उत्पादन सही बने रहे। तो बड़ा बढ़िया बताएं कि देखिए जो चारा प्रबंधन या जो भोजन प्रबंधन है ओके करना बड़ा जरूरी है। अभी गर्मी के मौसम है तो बड़ा जरूरी है कि मन के हरा चारा पशु मल्ला देहल जाए। और हरा चारा से क्या होता है कि जो मनकर खाना रहते कली भूसा वूसा तो बड़ा स्वादिष्ट बन जाते और पचाए में बड़ा सहायता करते। एक साथ साथ जो प्रोटीन विटामिन हरा चारा से मिलते रहते। और अभी जो किसान भाई हैं मान ली कि भाई अभी थोड़ा पानी की कमी हो जाते, फिर भी जो किसान भाई मन के पास सिंचाई कर सुविधा है तो भाई जो हरा चारा है तो जैसे लोबिया हो गई या फिर और जो घास है तो ओके लगाए, क्योंकि बार बार या फिर मकई भी लगा देते हैं तो ओके एक दो बार कटाई कर सकते हैं। तो एक से क्या है कि हरा चारा जो है किसान भाई मल्ला भेटात रही और पशु स्वस्थ रही, पशु स्वस्थ रही तो दुग्ध उत्पादन पे ज़्यादा असर नहीं पड़े।
0: ठीक कहें तो और देखिए कि टीकाकरण कर भी हमला ध्यान करना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: गर्मी में न का है कि पशु मन में कई तरह कर बीमारी फैले कर आशंका रहल, जैसे गलघोटू है गिस खुरपा का मुँहपा का एक खतरा रहल।
1: बिल्कुल
0: तो का है कि आसपास कर देखें ढोर अस्पताल रहल तो उनकर से संपर्क करें। हर वैसे तो कहा कि गावन गनिया जो है व्यवस्था करल गई से उनके बुलाए सकत हैं और सलाह लेके उचित समय पर टीकाकरण करवाएं।
1: बिल्कुल साल में दो बार टीकाकरण जरूर करवा दें तो इस एक जगह रही कि पशु जो है भाई मतलब स्वस्थ रही। और एक साथ तो मैं भी ये भी सलाह दूँ धरूँ भैया कि जो देखिए पशु बीमा भी होते हैं।
0: हाँ, हाँ।
1: तो जो दुग्ध उत्पादन वाला जो पशु है भैंस है या चाहे भाई कोई भी नस्ल के गाय है तो अगर पशु बीमा करवाए से क्या होता है कि थोड़ा सा सुरक्षित हो जाते हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहें वैसे। और देखब कि माखी मच्छर मन से भी बचाव जरूरी है भाई। पशुशाला में जहाँ रखत हैं कोठार में वहाँ कम से कम फिनाइल कर छिड़काव कर दें ताकि कहे कि मक्खी मच्छर से बचाव है। वैसे नीम कर पत्ती कर धुआं भी कर सकते हैं ऊपर से मक्खी मच्छर नहीं आए। तो बिरजू भैया मैं कहते रहे कि एक अठन गीत हो जाए सुघर अकन गीत होकर बात तो
1: और गुड बात करबो।
0: हाँ तो गाता है
1: लक्ष्मण मस्तूरिया। तो किसान भाई देखिए अभी गीत ला तो सुनबो लेकिन मैं कहते रहन कि गीत से पहले थोड़ा सा हमन गुठिया लेथन काम कर बात ला। और मैं कहते रहें कि अभी हम दूध उत्पादन के गुट बात तो करते रहें। अब थोड़ा सा एक ठो योजना है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, एक बारे में भी थोड़ा सा गुट बात कर लेथन। और देखिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो है जो केंद्र सरकार द्वारा शुरू करल गई से और एक लक्ष्य है कि भाई देश कर सबसे पिछड़ल 100 जो कह ली कि भाई जिला हैं उमन कर खेती कर स्थिति में क्रांतिकारी सुधार लाए बर ये जिला मन के चयन करल गई थे।
0: हाँ बिरजू भैया
1: हाँ।
0: देखिए कि गीत कला तो बाद में सुन लेबो बाकी रौरे गोठियाए रहना हमारे किसान भाई से सतवंत सिंह जी से
1: अच्छा नकदी फसल कर बारी है। हाँ। तो अच्छा ठीक है, पहले यही लसुन लेथन। तो देखिए नकदी फसल में स्वतंत्र सिंह हमारे किसान

0: हैं, तो उनकर से गोट बात हुई थी, तो आइए गोट बात ल सुनल जाए।
1: लगे तो
2: किसान भाई आज हमन गोट बात करत हन एक गोट प्रगतिशील किसान से, और बढ़िया मिर्चा की खेती करत हैं, और मिर्चा कर खेती से कितना फायदा उठाते हैं और कैसे कैसे खेती में किसान फायदा उठा सकते हैं एक बारे में जानकारी ले। तो सबसे पहले अपन नाम बताइए।
3: सतवंत कुमार सिंह।
2: कौन गांव?
3: ग्राम त्रैनी पोस्ट लरीमा जिला बलरामपुर।
2: तो सतवंत जी अभी का खेती करे हैं?
3: अभी तो मिर्चा लगाए हैं।
2: अच्छा।
3: कुछ टमाटर लगाए हैं और बरबट्टी अपने।
2: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पानी का क्या सुविधा है?
3: पानी का सुविधा अपने पास एक बांध है, उसी से सिंचाई करते हैं।
2: बढ़िया बढ़िया। तो जैसे मिर्चा ला कब लगा रहे हैं?
3: इसका गाछी हम लोग फरवरी में किए थे सर। और इसका लगाया हम लोग अप्रैल शुरुआत से ही लगाना चालू कर दिया।
2: मैंने खेत में डाले।
3: खेत में।
2: तो खेत की तैयारी कैसे कर लेते हैं पहले से?
3: पहले से ही उसको 2-3-4 बार जोत लेते हैं। अगर इसके बाद में पगार खिंचवाते हैं।
2: अच्छा।
3: लगाने के लिए
2: मेड़ मतलब बनवाते हैं?
3: मेड़ बनवाते हैं।
2: अच्छा। तो कितना कितना दूरी में लगाते हैं?
3: एक एक फीट में।
2: और मेड़ से मेड़ की दूरी?
3: वही 2 फीट।
2: 2 फीट 3 फीट ऐसे नहीं?
3: हाँ, 2 फीट।
2: अच्छा। तो अभी तो सिंचाई की बहुत जरूरत पड़त हो, कितना दिन में करथन
3: सिंचाई? तो नहीं जगते तक डेली सिंचाई करना पड़ता है।
2: गर्मी बहुत है?
3: हाँ, गर्मी बहुत है।
2: तो राहुल मिर्चा कितना बड़ा बड़ा मतलब कितना दिन के हो गए इसे?
3: अब फल फूल लगने वाला है।
2: अच्छा, कब तक निकल जाए फल?
3: ये जून में निकलना चालू हो जाएगा पूरा।
2: जून में? अच्छा। तो आधा एकड़ में लगाए हैं?
3: हाँ, आधा एकड़ में लगाए हैं।
2: तो ये पतला वाला मिर्चा है कि मोटा वाला?
3: ये पतला वाला है।
2: तो पतला का सोच के लगाए?
3: पतला ये सोच के लगाए हैं कि उसका थोड़ा सा रेट ज्यादा रहता है।
2: अच्छा, रेट? अच्छा, रेट ज्यादा मिलेगा। बढ़िया बढ़िया। तो
3: पतला का?
2: तो ये पहला बार लगाए हैं कि पहले भी लगाते रहे?
3: पहले से लगाते आ रहे हैं।
2: अच्छा,
3: 3-4 साल हो गया।
2: अच्छा, तो अब तो पूरा जान गए हो कि काका रोग लगे।
3: हाँ।
2: तो अभी काका रोग ज्यादा परेशान करते हैं?
3: अभी छोटा में उसका पौधा को मकरा मुड़ देता है,
2: पत्ती कुकड़ा जाता है।
3: पत्ती कुकड़ा जाता है और उसमें मकरा जैसे जैसे पत्ता नहीं, पेड़ के जो जस्ट ऊपर में जाता है उसमें मकरा मोड़ लेता है सर, एक मकड़ी।
2: अच्छा, मकड़ी वाला रोग लग जाता है?
3: हाँ, उसके बाद वो पत्ता ना सुकड़ने लगता है और अच्छा। कीट उसी में पैदा हो जाता है और छोटा छोटा माहू सब उड़ता है।
2: तो ये रोग ज्यादा परेशान करे?
3: ज्यादा परेशान
2: मतलब। और फफूंद नाशक दवा भी डाला तो?
3: हाँ, फफूंद नाशक की दवा भी डालते।
2: तो सतन जी जैसे जब थरहा करथन तो बीज उपचार करथन, तो नर्सरी करे से पहले बीज के उपचारित करथन की?
3: हाँ, पहले तो खरीद के लाते हैं बाजार से, उसको थोड़ा सा धूप दिखा के।
2: धूप दिखा देते हैं लेकिन? हाँ। और रासायनिक दवा से उपचारित नहीं करथन?
3: नहीं।
2: अच्छा। और जैसे किसान भाई मन क्या करते हैं कि भाई जब मान ली कि नर्सरी जब तैयार हो गई, सो के खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं, ले जाते हैं, तब ओकर जड़ ला भी रासायनिक दवा में डुबाते हैं कि उसमें कोई रोग ना लगे?
3: हाँ, डुबाते हैं।
2: तो एक करे से थोड़ा सा रोग से बचाव हो जाते हैं?
3: हाँ, जड़ में बचाव हो जाते
2: हैं। अच्छा अच्छा। तो गोबर खातु भी डालती है खाली बस रासायनिक खातु?
3: इसमें अभी तो खाली पूरा रासायनिक खाद ही डालते हैं।
2: अब गोबर खातु का है नहीं डालती?
3: जिसके पास रहता है वो डाल लेते हैं और नहीं रहता है वो कहाँ से डालेंगे।
2: बढ़िया।
3: तो साथ साथ में डालने से अच्छा रहता है कि खेत का बंजर नहीं होता है उसको।

0: टिकाव रहता है खेत का मिट्टी।
1: तो स्वतंत्र जी जैसे बताते हैं कि जैसे अभी तो राउर के गांव के आसपास बहुत जन मिर्चा की खेती करत हैं, रासायनिक दवा मारत हैं आंखला मूंद के, नहीं तो उनकर तो भाई असर हमर मिट्टी पे, हमर स्वास्थ्य पे, हमर पर्यावरण पे पड़ेल। तो जो जैविक दवा है ओकर तरफ किसान भाई ओकर तैयारी काहे नहीं करते हैं?
0: सब रासायनिक ही दवाई का उपयोग कर रहे हैं सर। अपना जैविक खाद बनाने की कोई नहीं ले रहे।
1: जैविक दवा तो बड़ा उपयोगी है, जैसे कि भाई नीम के फल के, नीम के पताई के, नीम के तेल के, या फिर और भी जो जैसे नीमास्त्र हो गई, ब्रह्मास्त्र हो गई, बीजामृत हो गई, ये सब दवा तो उपयोग कर सकते हैं।
0: कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रशिक्षण नहीं मिलने से ना।
1: अच्छा, प्रशिक्षण जरूरी है।
0: हाँ, प्रशिक्षण जरूरी है। किसान के जागृत करना है, जगाना है कि किस टाइप से अपन स्वयं ही करते हैं।
1: अच्छा तो चलिए बताइए, ठीक है अभी मतलब ये मैं पूछता हूँ कि पिछले साल लाभ कमाए रहे हैं कुछ?
0: पिछले साल उतना लाभ नहीं कमा रहे हैं, रेट क्यों मेरे
1: ये साल
0: क्या
1: रेट
0: कर।
1: कैसा है? अच्छा
0: अभी तक तो फल फूल चालू होते, अभी पता
1: अब
0: नहीं
1: वो टाइम
0: करेगा।
1: का रही है वो हिसाब से चली नहीं।
0: हाँ, जिस समय फल फूल हो जाए सब पता चले।
1: तो जैसे जो राउर कर जो मिर्चा है ओके खरीदे पर व्यापारी मन खुद आते हैं कि राउर मन फोन करते हैं?
0: व्यापारी मनो खुद आ जाते हैं चेला सब।
1: मन फोन कर देते हैं।
0: और खुद भी फोन करते
1: ठीक।
0: चाहे कि रेट अपन खोजे पर तो खुद ढूंढना पड़े, कहाँ
1: तो
0: ज्यादा मिली वही आदमी तो देना चाहे।
1: हाँ, तो मिर्चा कब तक तोड़ान हो ही राउर कर? आखिरी तोड़ान
0: जुलाई
1: कब, कौन महीना तक जाए? अगस्त
0: अगस्त तक
1: तक। तो क्या तोड़ान हो जाए लगभग?
0: 3-4।
1: 3-4 तोड़ान। तो आधा एकड़ में मान ली लगाई मिर्चा, तो एक तोड़ान में कितना मिर्चा निकला होई?
0: आधा एकड़ में बढ़िया फल फूल रहते तो 25-20 बोरा निकल जाते।
1: 25 बोरा माने क्विंटल में यदि पूछल जाए तो?
0: माने कि 25-30-35 तक पहुंच जाते हैं आधा एकड़ में।
1: पूरा
0: हम माने कि एक तोड़ान में
1: 30-35 क्विंटल?
0: नहीं, बोरा में माने कि 30-40 के भर्ती रखे ना।
1: अच्छा, 30 के मान ली भर्ती रहते हैं, तो मैंने 10 क्विंटल मान ले सका था ना मन, एक तोड़ान में 10 क्विंटल निकल जाते हैं। बढ़िया बढ़िया। तो ये तो मिर्चा की बात हो गई, और का लगाया ही टमाटर की लगाए के तैयारी करा था?
0: टमाटर लगाए हैं, फल फूल चालू होता है।
1: तो टमाटर के फल निकलत है? अभी
0: नहीं, अभी शुरुआत है।
1: शुरुआत है। तो ठीक है सतवन जी, राउत से गुड बात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
3: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
1: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
2: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
3: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
2: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
3: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
2: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: हाँ तो बिरजू भैया देखिए, रौरे गुठियार हैं बड़ा बढ़िया सतवंत सिंह जी से, और बढ़िया प्रगतिशील कृषक हमें, बढ़िया खेती पाती करता है, लाभ लेता है, और संगे सके संदेश ला भी सुनें। देखिए एक योजना हुए प्रधानमंत्री जी कर, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना।
5: धन धान्य कृषि योजना।
4: हाँ
5: तो देखिए जो योजना है बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है, और सरकार का प्रयास है कि जो देश का सबसे पिछड़ल जिला है उमन के आगू लाना है, और योजना का जो मुख्य उद्देश्य है भाई कि कम पैदावार वाला क्षेत्र में फसल के जो है उत्पादन राष्ट्रीय उत्पादन के औसत तक पहुंचाना है। दूसरा है कि भाई फसल विविधीकरण माने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी बोलते हैं, तो भाई किसान के जो धान और गेहूँ उगाते हैं उसके अलावा दलहन तिलहन और अन्य जो फसल आए ओके उत्पादन पर भी जोर दिया जाता है। इसके अलावा सिंचाई और भंडारण खातिर भी किसान मन के ब्लॉक स्तर पे जैसे भंडारण गोदाम और कोल्ड स्टोरेज कर व्यवस्था करे कर में योजना आ है।
4: बहुत बहुत देखिए बढ़िया योजना हवे हमार जो है किसान भाई मन पर, उत्पादन तो बढ़ भेज करी। देखिए जो कम पैदावार वाला क्षेत्र जो रोरे कहें ना कि जहाँ पैदावार कम होता है वो तो उनके जो है ना हमर जो है राष्ट्रीय औसत तक उनकर उत्पादन ला बढ़ाना हवे, और एकर में कैसे कैसे करना हवे का है उनके जो है बताल जाही कि कैसे कैसे करें। और एक चीज़ तो मैं कहूँ कि सबले पहले तो राउर मन तो ये बिल्कुल अपन जो है माटी कर जो परीक्षण नहीं कराए हुई ना उमन करा ले,
5: सही समय है।
4: बिल्कुल बिल्कुल देखब ना कि जोमन माटी कर परीक्षण जो भैया नहीं कराए रहते ना उमन के साथ समस्या आए कि असो तो काबर होइस नहीं, असो तो घट्टा खाए गए, तो कभी कभी किस्मत से बढ़िया पाए जाते हैं। बाकी का है कि बिना जानकारी के राउरमन के माटी में कौन सा पोषक तत्व कर बेसी हवे कौन कर कमी हवे ओकर हिसाब कर खेती करत ही तो हमेशा जो है उत्पादन में कमी बेसी होते च रही। हाँ तो ध्यान करें भाई अपन करवा लें, पीएच मान का हो, जैसे हमारे वैज्ञानिक आते हैं तो पीएच मान के बारे में बताते हैं, तो हमन फिर उनकर से बोलती कि बताई पीएच मान का हो, तो वही मन कहते हैं कि जो माटी का परीक्षण कराए रही हूँ मन जानी कि पीएच मान का हो और उनकर माटी का पीएच मान कितना हवे
5: और उपचार कैसे हुई।
4: बिल्कुल बिल्कुल तो भाई अपन ध्यान करें और जो है ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कर लाभ लें। बिरजू भैया बेरा हुए चली से देखी मंडी भाव कर मौसम कर बताए कर बाकी जोग लिखी कर चिट्ठी हवे एक ठन मोर हाथे तो लिखो या हमें नवा पारा ले सुकुल राम बुधेसर सोनकलिया शुभकरण चंद्रिका रामजिला सहालो और उनकर संगता हरे
5: का लिखता है।
4: देखिए लिखता है कि अभी हमन प्याज लगाना चाहते हैं खरीफ में, तो प्याज लगाए
5: मन तैयारी करना चाहता है
4: तैयारी करना चाहता है। तो देखिए तैयारी बर तो कहा है सबले पहले तो कहा है कि उन्नत किस्म का चुनाव करें।
5: बिल्कुल
4: है ना, उन्नत किस्म में कुछ किस्म हमें एग्री फाउंड डार्क रेड कथी भीमा रेड कथी भीमा है सुपर भीमा सुभरा भीमा श्वेता ये सब किस्म हमें जो कि उन्नत किस्म हमें कोई भी अपना के रोरेमन जो है खेती कर सका थी। और जैसे रोरेमन तो जानती कि प्याज कर खेती तो लगभग हमारे यहाँ बहुत बढ़िया हवे जमीन एकर पर आसानी से हो जाए और जल निकास कर देखी बढ़िया प्रबंध होना चाहिए। कहे कि अभी खरीफ कर समय जो है ना पानी माढ़े हाँ माढ़े के नहीं चाहिए समय हवे। देखिए उचित समय जो है खरीफ में यही है जून और जुलाई कर बीच में जो है लगा सका थी और बीजोपचार कर ली नर्सरी में बीज आज बुने से पहले बीज कर उपचार कर ली थायरम दवाई से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज कर हिसाब से एक है फफूंद नाशक हवे।
5: अच्छा
4: हाँ तो एकर से उपचार करके लगाएं और भाई निंदाई गुड़ाई करें और पंक्ति से पंक्ति जो है ना लाइन कर दूरी जो है ना 15 सेंटीमीटर करीब रखें और पौधा से पौधा कर दूरी जो है 10 सेंटीमीटर रखें। खाद कर मात्रा कर बात कहूँ तो नत्रजन स्फुर पोटास जो है 80 प्रति हेक्टर के हिसाब से मतलब 2.5 एकड़ कर हिसाब से लगेल। पहले लगाइए और उसके बाद कोई भी समस्या

0: आता है तो हलो किसान मारी तो हमार होते चढ़ल वैज्ञानिक आते चढ़ते हैं बढ़िया खेती करी अपन आयला दुगना तिगुना करी।
1: तो लेकिन धरुम भैया
0: तो इनके चिट्ठी लिखे पर बहुत बहुत धन्यवाद कर देती।
1: तो मैं मंडी भाव ला बता देता।
0: बिल्कुल बिल्कुल बताइए।
1: देखिए आजकल जो मंडी भाव रही उसमें मकई रही 2400 रुपये प्रति क्विंटल, धान सामान रही 2371 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूँ रही 2430 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों रही 6000 रुपये प्रति क्विंटल।
0: और देखिए कि आज कर तापमान कर बात करी तो अधिकतम रही 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रही 26 डिग्री सेल्सियस, और कायल कर बारे में अनुमान है अधिकतम रही 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रही 27 डिग्री सेल्सियस। तो बिरजू भैया मैं तो कहूँ कि इतना बेरा है कि सुघर अरकन एक ठन गीत हो जाए, गाता है लक्ष्मण मस्तूरिया उनकर संगता है।

हाँ तो बिरजू भैया देखिए ये गीत ल सुनेन और आज कर सवाल पूछे कर बेरा हवे। आज कर सवाल हवे कि प्याज कर उन्नत किस्म कर नाव लिख कर रौरेमल्ला भेजना है एक हफ्ता के अंदर, जिनकर चिट्ठी आई और सही जवाब रहे उनकर नाव ल हमन अगले कार्यक्रम में शनिचर दिन जरूर शामिल करब। तो बिरजू भैया बेरा हर कहता है कि आज कर हमार किसानवाड़ी अतरेज।

0: भारत सरकार।
1: हाँ तो बिरजू भैया देखी चौपाल ने भी विदा लेकर बेरा हो चली सना। जरूर कहब किसान भाई मल्ला कि मौसम के अनुसार भाई देखें घर्रा घाटा चलाता है, अपन खेती पाती कर ध्यान रखें और बढ़िया सुगर अकन खेती करें और अपन आयला दुगना तिगना करें। तो
2: मेरा साथ अब समय होगी से चले
1: विदा लेकर समय होगी से कहल जाए राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। वक्त है सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश का। ये कार्यक्रम है श्रोताओं के फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का। तो चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर और सुनते हैं इस कार्यक्रम में पहला गीत दिल फिल्म से अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की आवाज़ों में। और इस गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका मन्नत गुरकीरत गुरशब्द सिंह राहुल जलाना मराठावाड़ से सैयद यूनुस सैयद नुमान तनवीर मसरत सैयद निज़ामुद्दीन धोतर जोड़ा आस्टी से दशरथ सागुते अनुष्का सागुते मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन फातिमा सोगारा टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगन दीप थांदी तृप्ता कुमार थांदी डॉक्टर प्रियंका थांदी डॉक्टर प्रशांत थांदी डॉक्टर प्रियम थांदी बेबी वामिका वाणी थांदी जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। आप सभी ने इस गीत को पसंद किया है। तो सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत दिल फिल्म से।

दिल फिल्म से गीत आप सुन रहे थे आप अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की आवाजों में। इस कार्यक्रम में आप सब जुड़े हैं पूनम उपाध्याय के साथ। श्रोताओं आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, सुनते हैं अगला गीत राजा हिंदुस्तानी फिल्म से उदित नारायण की आवाज़ में। समीर की रचना है, संगीत नदीम श्रवण का है और इस गीत को सुनना चाहा है ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा, ऐश्वर्या पैकरा, मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद, अजरा तबस्सुम, मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, अल्पना, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी, नंदिनी कुमारी ने। सुनते हैं आप सभी के पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आप सुन रहे थे राजा हिंदुस्तानी फिल्म से गीत उदित नारायण की आवाज़ में। अब सुनते हैं इंदिवर की रचना आशा भोसले मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में मुद्दत फिल्म से। संगीत भप्पी लहरी का है और इस गीत के लिए हमें आप सभी की फरमाइश मिली है बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग अंजू नारंग मोहित नारंग तानिया नारंग ने फरमाइश की है। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया नमन ढिंगिया अपार ढिंगिया ने भी फरमाइश भेजी है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से फरमाइश मिली है डीटी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज साहिल बजाज बिट्टा बजाज का। तो सुनिए आप के पसंद का कार्यक्रम का ये अगला गीत।

बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे की ओर और अब सुनते हैं गीत बेटा फिल्म से अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की आवाजों में। एक बार फिर है समीर की रचना, संगीत आनंद मिलिंद का है और इस गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निभवानी, संगीता आकाश, आयुष आयुषी, सागर यशी, हनी पूजा और सीता का। अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी वर्मा, राहुल गोपी वर्मा का। चापा छत्तीसगढ़ से दिनेश नामदेव और गीता नामदेव का। बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू का। चरडोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी माया साहू ने भी फरमाइश की है। सुनते हैं आपके पसंद का कार्यक्रम का ये अगला गीत।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की आवाज़ों में। अब सुनते हैं अगला गीत अनुराधा पौडवाल जसपिंदर नरूला की आवाज़ों में दाग द फायर फिल्म से। समीर के बोल संगीत राजेश रोशन का है और इस गीत को पसंद किया है सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े सुमार साय मेर साय शिव भगत हेमंत कुमार राम खिलावन से पैकरा ने। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजी है ग्राम बोछा पोस्ट सोनगरा तहसील प्रतापपुर सूरजपुर से शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार पिंकी स्वर्णकार आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार ने। परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई महेश संघई प्रगेश संघई प्रीतेश संघई ग्राम पंचायत सिर कोतंगा महादेव पारा पोस्ट लहपटरा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से योगेश कुमार राजवाड़े श्याम राजवाड़े परमान राजवाड़े लल्लू बल्लू घनु अमित कुमार अभिजीत गोविंद तरुण सकल राम प्रियांशु राजकुमारी नेहा नायरा समायरा खुशी सौम्या उमेश्वरी मुन्नीबाई सोनामती माया राजवाड़े और सिमरन राजवाड़े ने। ग्राम कुंज नगर पोस्ट जयनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेमलता देवांगन अमीर तांजे महिमा देवांगन शेया देवांगन। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़के एक बार फिर से सुनिए संतोष खड़से और विनोद खड़से। शिव मंदिर हकीकतपुर मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार पिंकी स्वर्णकार आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। तो सुनते हैं आप सभी श्रोताओं के पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं अलका याग्निक जशपिंदर नरूला के स्वरों में द हीरो फिल्म से गीत। जावेद अख्तर के बोल हैं, संगीत है उत्तम सिंह का, और इस गीत को पसंद किया है जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान ने। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मनी वर्मा, पारस मनी वर्मा, पुष्पेंद्र मनी वर्मा, नोखेलाल वर्मा, ग्राम पोस्ट केतका जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से संजय सिंधराम, टेकराम सिंधराम, विवेक कुमार, उमेश कुमार, अर्जुन सिंह टेकाम, अरविंद सिंह टेकाम और सिंधराम। जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, डेर पाटन गुजरात से धीरज बी रवारी, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त, चेतन नाहटा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, सोनगरा प्रतापपुर सूरजपुर से खगेश कुमार राजवाड़े, बिलाई गढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिम्पल बाबू, प्रियांश, भाव्या देवांगन, ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान, ग्राम पोस्ट केतका जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से अरविंद सिंह टेकाम एवं सिंधराम। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग तिलर, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, आप सभी ने पसंद किया है कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म है द हीरो।

0: कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश इसी गीत के साथ अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात के 8:45 हुए हैं। समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी दिल्ली से करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से

0: समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्र पत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते

0: में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था।

0: अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। इस समय रात के 9:15 हुए हैं। लीजिए पेश है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।

कुर्बानी फिल्म का गीत आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आप सुन रहे थे। अब सुनते हैं लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी का गाया ये गीत फिल्म दो रास्ते से। आनंद बख्शी की बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

और कार्यक्रम के अंत में अब सुनते हैं आशा भोसले, किशोर कुमार, शैलेंद्र की आवाज़ों में लावा फिल्म से गीत। आनंद बख्शी की रचना, संगीत आर डी बर्मन का है।

0: इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात के 9:30 हुए हैं। अखिल भारतीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी है।

0: आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइलेंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: तारंगा तेरी याद में।
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। क्योंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जी.डी. माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकुड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाई चाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 एम वी रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म एवी मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। क्योंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं तो अब यहाँ जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म एस एम श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: खबर है।
1: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी।

0: आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था। इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी। फिल्म दो कलियां एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
1: चल चल चल मेरे साथी ओ मेरे हाथी।
0: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी। दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: चूंकि जिक्र के एस सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली, आई लव यू।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजू का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता की अभिनय वाली फिल्म फर्ज।

फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाईच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के लिए।

0: सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राजखोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी।

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
2: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को, जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं और आगे बहुत सी जनरेशन ने इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक, मेरे पास माँ है।
3: मेरे पास माँ है।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटनीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
4: तू न रोना के तू है

मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख सहती हैं।

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपनी बेटी से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: पर माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मौत चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है। तो तुम्हें मुझे छोड़ के जा रहे हो?
2: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत। तो अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है। नए सिरे से

2018 में आई बधाई हो। इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक।

0: में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है, वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमी पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
0: फिल्म ABCD 2।

0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
1: मेरे पास माँ है,
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: संगीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।

0: ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश। दर आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
1: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं, क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो LB लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
0: ओहो,
1: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों, कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नैन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नैन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता। मैंने मेरे हाथ में किधर है
0: जी।
1: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

0: मैंने खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा, और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला रहा हूं, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे, मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी

ट्यून कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन, इतना बड़ा मुखड़ा मुझे पता नहीं कैसे क्यों या कैसे याद हो जाता था दादा के साथ, मालूम नहीं।

0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। स्मृति शेष। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। पंडित कैवल्य कुमार गुरव सुप्रसिद्ध संगीत तज्ञ पंडित संगमेश्वर गुरव के सुपुत्र हैं। उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत 15 वर्ष की आयु में मराठी नाट्य संगीत से किया। इसके उपरांत उन्होंने ख्याल गायकी के ओर रुख किया और अपने पिता एवं गुरु

0: पंडित संगमेश्वर गुरु के मार्गदर्शन तथा वर्षों की कठिन एवं निरंतर साधना के माध्यम से किराना घराने की परंपरा को आत्मसात किया। उनकी संगीत साधना केवल एक घराने तक सीमित नहीं रही, उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा कर विभिन्न घरानों की शैली, तकनीक और भावधारा का गहन अध्ययन किया तथा उसे अपने गायन में सफलतापूर्वक समाहित किया। उनकी इसी विशिष्ट साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें 32 वर्ष की आयु में भारत सरकार द्वारा टॉप ग्रेड कलाकार का सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीकॉम, संगीत में बीए तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड से संगीत में एमए स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त किया है और आपको कर्नाटक सरकार का राज्य पुरस्कार, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी राष्ट्रीय सम्मान ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप देश और विदेश में कई प्रमुख मंचों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित कैवल्य कुमार गुरव। पंडित कैवल्य कुमार गुरव इज अ रिनाउंड म्यूजिशियन एंड डिसाइपल ऑफ पंडित संगमेश्वर गुरव। ही स्टार्टेड हिज म्यूजिकल जर्नी एट द एज ऑफ 15 विद मराठी नाट्य संगीत। After that, he turned towards khayal singing and through the guidance of his father and guru, Pandit Sangameshwar Gurav, absorbed the traditions of Kirana Gharana through rigorous practice and dedication. His musical practice was not limited to just one gharana. He travelled across India, deeply studying the styles, techniques and emotional expressions of various gharanas and successfully incorporated them into his singing. As a result of this exceptional dedication, he was honored with the title of Top Grade Artist by the Government of India at the age of just 32. Pandit Kaivalya Kumar Gurav has performed his music not only across India but also in many countries around the world. He has been awarded an honorary doctorate by Sorbonne University, Paris of France. Dr. Kaivalya Kumar Gurav has been honored with more than 200 awards worldwide.
0: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित जडेश होगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे हैं। पंडित कैवल्य कुमार गुरु अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग दुर्गा से कर रहे हैं। इसमें 3 रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल, रस कानारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पिया से। उसके बाद द्रुत 3 ताल, चतुर सुगर। आइए सुनते हैं राग दुर्गा।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित जडेश हुगार एंड ऑन द हारमोनियम बाय डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी। पंडित कैवल्य कुमार गुरव बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विथ राग दुर्गा, रूपक ताल, रस कान्हारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पियासे, द्रुत 3 ताल, चतुर सुगर।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग दुर्गा। पंडित कैवल्य कुमार गौरव जी अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग आभोगी। इसमें दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।
1: दैट वॉज राग दुर्गा। नाउ यू विल लिसन टू राग अभोगी। रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित जडेश हुगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया गया।
1: दैट वॉज राग अभोगी। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक इन विच यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित कैवल्य कुमार गुरव। He was accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hugar and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. This program was recorded earlier in the studios of Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है। और विकसित भारत

0: की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि ये सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता CBI की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान CBI ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। CBI ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएँ होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
0: 21वीं सदी का